0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाए, तेरे सिवा शान बता हम कहां जाए।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाना।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे।
2: और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी।
1: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक
0: 120 से अधिक वर्षों का विश्वास, विकास की नई पहचान।
1: EKCC पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पाना हुआ और भी आसान। खेती की हर जरूरत का भरोसेमंद समाधान।
0: बीज, खाद, सिंचाई और फसल की तैयारी, हर कदम पर आपका अपना बैंक।
1: आसान प्रक्रिया, समय पर ऋण, किसान की

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: के निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: एग्रीकल्चर एंड डिजिटल सर्विसेज।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
3: इस संभावित समझौते से हॉर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हॉर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
4: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
2: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता।
5: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से PM मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा, पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
2: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास।

स्वागत अभिनंदन, वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं एक और नई सुबह में, एक और ब्यूटीफुल मॉर्निंग में आरजे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आज की सुबह बहुत

प्यारी है, आज का दिन बहुत प्यारा है और आज के दिन की मैं आप सभी को देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज दिन की बात करें तो आज हमारा बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, गुरुवार का। हाँ जी, आज थर्सडे की सुबह है। तारीख की बात करें तो आज 5 अगस्त नहीं है, आज 6 अगस्त है। आनंद जी, बिल्कुल मैं अभी वो पुराने वाली तारीख से बाहर नहीं आया हूँ, लेकिन खैर 6 अगस्त की सुबह, बहुत प्यारा सा दिन, बहुत ही खूबसूरत सी तारीख। आप सभी का स्वागत है आज की सुबह में। अब से लेकर 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ करेंगे आपसे ढेर सारी बातचीत होगी, मौज मस्ती, फन एंड बहुत सारे गाने और साथ ही साथ तमाम सारी जानकारियां। श्रोताओं, बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है कि जैसा खाया अन्न वैसा पाया मन, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब आपके विचार सुंदर होते हैं, कब होते हैं आपके विचार सुंदर, जब आप अच्छी चीज़ें अपने मन के अंदर डालते हो। जब आपके विचार अच्छे होते हैं ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होती हैं ना। तो इसीलिए अगर आप अच्छा अन्न खाएंगे तो आपका मन अच्छा होगा, अगर आपका सर्कल अच्छा होगा तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपका ऑरा बढ़ेगा। अगर आपके आसपास के लोग अच्छे होंगे तो आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, है ना। तो अपने आसपास का जो सर्कल है, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनका भी ज़रा खास ख्याल रखिए। मतलब वो किस सोच के साथ जो है आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपकी सोच के साथ उनकी सोच मैच करती है तो बहुत अच्छी बात है। वाइब मैच करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन सोच को भी थोड़ा थोड़ा मिलाना बहुत ज़रूरी है ना। अगर अच्छे लोग आपके साथ हैं ना, तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी में सफलता ज़रूर हासिल कर लेंगे, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही आपका मार्गदर्शन करते हैं। चलिए श्रोताओं, बातचीत तो होती रहेगी और ऐसी प्यारी प्यारी बातें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। 8:24 का समय हो गया है और 6 अगस्त की सुबह जुड़ चुके हैं आप रेडियो वाला आनंद के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ आज की मॉर्निंग 9837896896 के माध्यम से। हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। फिलहाल एक ब्यूटीफुल गाने से करते हैं आज के शो की शुरुआत। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

श्रोताओं, वेलकम बैक एक बार फिर से आपका। हमारे साथ ढेर सारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं हमें जुल्फी भाई, लिखते हैं आनंद जी सुप्रभात, आपका स्वागत है। मौसम बहुत औसम है, आपके गाने सुन के तो और भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। आपका स्वागत करते हैं आज ही के इस प्रोग्राम में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये तारीख साहब जुड़ चुके हैं मेरे साथ मुरादाबाद से, और ये हमारे पास बसंत बिहार से मैसेज पहुंचता है आज की सुबह। हाय गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। मुरादाबाद की सारी खबरें आपके रेडियो से मिल जाती हैं, बहुत ही आनंद आता है आनंद जी आपका प्रोग्राम सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और बिना किसी देरी के हम बताते हैं आपको आज के दिन के बारे में। क्या स्पेशल है आज का दिन, क्यों खास है, इसके विषय पे अभी हम बात करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस आप ऐसे ही हमारे साथ ट्यून इन रहिए। ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं, आपके मैसेज आपके नाम के साथ थोड़ी सी देर में शामिल करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। चलिए श्रोताओं, आज के दिन के बारे में जो है खास चर्चा कर लेते हैं। क्यों खास है आज का दिन, क्यों महत्वपूर्ण है? हर दिन की तारीख अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही स्पेशल होती है, और आज क्या खास है, आज का दिन क्यों स्पेशल बन रहा है? श्रोताओं, 6 अगस्त सन 1914 में आज के दिन ऑस्ट्रिया द्वारा रूस के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा जो है वो श्रोताओं आज के दिन की गई थी। एंड आपको बता दें, भारत व ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक समझौते हुए थे सन 2001 में आज के दिन। और आपको बताते चलें, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह जी का जन्म हुआ था आज के दिन 1959 में, श्रोताओं 6 अगस्त को ही। एजी कृपाल सिंह जो भारतीय क्रिकेटर हैं, उनका जन्म हुआ था आज के दिन सन 1933 को। और आपको बताते चलें, विश्व स्तनपान सप्ताह जो है मनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और खास दिवस आज मनाया जाता है। ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

श्रोताओं, अभी लौट कर आएंगे तो बात करेंगे मुरादाबाद शहर के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली पता लगती हैं मेरे चैनल पर। रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। विक्की सागर जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे हमारे साथी मनोज पाल जी, ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। और शायद इन्होंने एक फ़ोटो भी मेरे पास शेयर की है, ये कहीं निकल रहे हैं। इनकी फ़ोटो देख के तो ऐसे ही लग रहा है। चलिए, आप जहाँ भी जा रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। आप पहुँचिए, आप जिस भी रोड पर जा रहे हैं, आप जिस भी रूट पे जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे ही निकल जाइए। और बाकी अगर श्रोताओं आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें संदेश पहुंचा सकते हैं, हमारे मैसेज के जरिए जो है हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आज की सुबह हमें इंतजार रहेगा, फिलहाल एक खूबसूरत गीत। इस गीत के बाद कुछ एड ब्रेक होंगे, फिर हमारी पुनः एंट्री होगी कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, अभी जब मैं लौट कर आऊंगा तो आपको एक खास सवाल भी बताने वाला हूं, जो सवाल आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू कर देगा मेरे दोस्त। फिलहाल बहुत ही प्यारा ट्रैक सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत ट्रैक सोनू निगम एंड जसपिंदर नरूला की आवाज में गाना। चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

मुस्कान फिल्म का गाना सोनू निगम अनुराधा पौडवाल जी की आवाजों में भी आप एंजॉय कर रहे थे इस गाने को। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। 8:58 हो गए स्टेशन क्लॉक में। आज 6 अगस्त की सुबह आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आरजी आनंद को प्रोग्राम है बिंदास मौन।

आती हैं ऐसी बहुत सारी टिप्स भी मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। कुछ बॉलीवुड की भी ऐसी टिप्स होंगी जो हेल्थ से रिलेटेड जो सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी वो चीज़ फॉलो करके अपने आप को फिट एंड फाइन बनाएं।

0: और हमारे पास ट्रैफिक अपडेट है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें आपको पहुंचानी है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। चलिए बात करते हैं पहले आपके मैसेजेस की, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुछ और खास खबरों की, क्या स्पेशल चल रहा है उस पर एक नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल आपके मैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, आप कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हैं? नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है। गुड मॉर्निंग प्रतीक, मैसेज मेरे पास पहुंचा है। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं सर? ये ललिता कश्यप नवीन नगर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। एक मैसेज हमारे पास आ रहा है प्रेम साह का। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग आपको भी। ये संदेश मेरे पास पहुंचा है। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हालचाल हैं आपके? वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हेलो हाय, कैसे हालचाल हैं? ये हमारे साथ आकांक्षा सैनी जुड़ चुकी हैं बस्तूर से। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। मैसेज मेरे पास पहुंचा है मुरादाबाद यूपी से रणवीर जेठालाल जी का। लिखते हैं, एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी मित्रों को गुरुवार की सुबह जय श्री राम जी। आपको भी जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हालचाल हैं? बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं मेरे साथ। और एक मैसेज हमारे पास पहुंच रहा है, ये लखनऊ से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, गोमती नगर से। गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हालचाल है आनंद जी? मेरा नाम कुसुम है। गुड मॉर्निंग। एक अर्चना जी का मैसेज मेरे पास पहुंचा है लखनऊ से ही, और एक बाराबंकी से भी हमारे पास संदेश पहुंच रहा है आज की सुबह। इसके अलावा हमारे पास सहारनपुर से मैसेज पहुंचा है आज की मॉर्निंग, एंड एक और बिहारी से हमारे साथी हैं, इनका नाम है अमरजीत पाल। ये मुझे मैसेज करते हैं मुजफ्फरनगर से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। अलग अलग शहरों से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बात करें मुरादाबाद की तो हनुमान मूर्ति से हमारे पास संदेश पहुंचा है। हमारे पास सूर्यनगर से मैसेज आया है यहाँ पर। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? माय नेम इज पल्लवी, आई एम फ्रॉम लाइन पार। गुड मॉर्निंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे साथ शालू जी जुड़ चुकी हैं। हाय, कैसे हैं आप आनंद जी? हम लोग आपका प्रोग्राम डेली सुनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लेकर आते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। मंडी चौक से शालू जी जुड़ रही हैं मेरे साथ आज की सुबह। शिखा मानसरोवर से जुड़ चुकी हैं आज की मॉर्निंग। तो देखिए, आपके संदेश लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे, ये सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा, ये नेम गेम जो है वो लगातार कंटिन्यू करेंगे अभी जरा सी देर में। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चुका है 9:01।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ, मेरी कसम
1: मिस कर दिया तो रीलोड। बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
4: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
8: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
9: लेकिन सोनिया
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
9: नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
10: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

थर्सडे की सुबह सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुरुवार की मॉर्निंग है, 6 अगस्त की तारीख। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से। वेलकम बैक है पूरे खुले दिल के साथ, स्वागत अभिनंदन।

मेरी गाची कैसे हाल चाल चरणों में समर्पित होते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको कहना चाहते हैं स्टेशन क्लॉक में 9:03 हो रहे हैं यार। हाँ जी, तो आज की सुबह मेरे पास लेटेस्ट बहुत सारी खबरें हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है, लेकिन उससे पहले मेरा आज का एक सवाल भी होगा। पर उससे पहले थोड़ी सी काम की बातें कर लेते हैं, क्या चल रहा है हमारे आसपास सराउंडिंग, ये जाना बहुत जरूरी। तो भैया आपको बताते हैं, प्लास्टिक वाले नोटों का इंतजार अब खत्म हुआ। RBI ने बताया कि भैया इसकी लॉन्चिंग कब होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं अभी क्या क्या किया जाएगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया देखिए, RBI ने बताया कि अभी जो है ये जो नोट्स हैं ये सिर्फ एक ट्रायल बेस पे मार्केट में आएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल वाले जो भी नोट ये चल रहे हैं ये भी लगातार चलते रहेंगे, लेकिन जो दूसरे नोट आएंगे वो अभी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये कब से इस्तेमाल कर सकेंगे ये मैं आपको बता दूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप नए साल से यानी 2027 में ये जो प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं इनका आप यूज़ कर पाएंगे। हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है यानी कि RBI ने इन्फॉर्मेशन दी है कि भैया देखिए, अगर सब कुछ बहुत बढ़िया रहा और ये नोट एकदम परफेक्ट रहे तो आने वाले नए साल में इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये एक अच्छी चीज़ है यार, एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है। लेकिन अभी ट्रायल पर जो है 10 और 20 रुपए के नोट ही लाने की बात की जा रही है, बाकी तो देखते हैं न्यू ईयर पे अगर ये सही रहा तो इसको फिर डेफिनेटली चलाया जाएगा। आपको बता दें, बढ़ती उम्र में यात्रा का खर्चा रोकने की जो है जिम्मेदारी अब ले ली है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाँ जी, बुजुर्ग महिलाओं के लिए अब परेशानी नहीं बनेगा सफर। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोडवेज में जो रोडवेज बसेज हैं उसमें निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया जा रहा है। जो जिले की वरिष्ठ महिलाएं हैं उनमें खुशी की लहर है और महिलाओं ने इसे सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से बिल्कुल जोड़ दिया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सरकार का एक नया बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है और जिसका हर कोई वेलकम कर रहा है। सरकार की फैसले के तहत पात्र महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान किराया नहीं देना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा लाभ उठाने की और लाभ मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। चलिए, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया चीज। चलिए श्रोताओं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी आप तक पहुंचाऊंगा। ट्रैफिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, आपको पता है ना, सोमवार जैसे ही आएगा उसको लेकर फ्राइडे से तैयारी हो जाती है, लेकिन आज 6 तारीख से ही जो है बहुत सारी चीज़ों में चेंज होंगे। दोपहर के 2 बजे से कौन कौन से डाइवर्जन किए जाएंगे, रूट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ट्रैफिक कहाँ कहाँ पर है ये तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन बाकी ये जो अभी सावन में जो डाइवर्जन हो रहा है इसको लेकर एक खास जानकारी मेरे पास है जो आपके साथ में साझा करूंगा अभी जरा सी देर में इसी स्टेशन पर। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। यार बातें बहुत सारी होगी, कुछ गाने हो जाएं। आने वाला गाना What a song, सर आप भी गा दो। हाय हाय, जरा सी देर में बेहतरीन गाना आप तक पहुंचेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए ऐसे ही FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पे। अपने दिल के हालचाल बता दो यार, इंतजार कर रहा हूं मैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। फटाफट से व्हाट्सएप करो, लौट कर आता हूं एक अमेजिंग कड़क सवाल के साथ।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

भाई मैं ये कह रहा था, अगर आप कहीं पे निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे, आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं स्लो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, या कहीं पे ट्रैफिक नहीं भी है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो भी आप मुझे अपडेट दे सकते हैं मैसेज या कॉल करके। नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896। आनंद के साथ सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग।

बुर्ज खलीफा दिलाने की बात कर रहे हैं भाई साहब। लक्ष्मी बॉम्ब से अभी आपने सुना, बहुत ही खूबसूरत गाना। भाई देखो, बुर्ज खलीफे की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन दे सकता हूँ, जिसे यू नो सुनकर आपके चेहरे पे स्माइल आ सकती है एंड आपको बहुत मजा भी आ सकता है। आज की सुबह अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया तो डेफिनेटली आपको मजा आ ही जाएगा ब्रो। चलो अब आपको काम पे लगाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको बताया ना, बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे तो शायद हमारा समय जो है वो कम पड़ जाएगा, है ना। एग्जैक्टली मतलब हर चीज पे जो है कुछ ना कुछ बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि आप मुझे खाने पीने के ऊपर कुछ गानों के नाम लिख के बताओ और कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो क्या आप मुझे बता दो कि अगर मैं बात करूँ 5-6-7 कुछ ऐसे गाने बताओ जिसमें खाने पीने का जिक्र होता है, तो क्या आप दिमाग लगा के बता पाओगे मुझे? जैसे एक तो मैं ही दे देता हूँ आपको हिंट, चॉकलेट आइसक्रीम ना ना ना ना ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनमें खाने पीने की बात हुई है। हमारे बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें खाने पीने का जिक्र हुआ है, और आज की सुबह मैं आपसे यही पूछने वाला हूं। आपके दिमाग की ना थोड़ी सी बत्ती गुण मीटर चालू करता हूं, आप दिमाग से कितने सुनते हैं गाने, कितने ध्यान से सुनते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है शो मॉर्निंग मैगजीन, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। आप मुझे व्हाट्सएप करके जरा बताइएगा कुछ ऐसे गानों के नाम बताओ जिसमें खाने पीने का जिक्र होता है। आप मुझे 5 या 6 या फिर ज्यादा से ज्यादा गाने के नाम बताओ, देखते कौन बता पाएगा ज्यादा नाम, या कौन बताएगा 5-6-7 जो भी क्वांटिटी आपको लगता है कि आप दे सकते हो उनको, गानों के नाम बता सकते हो। वो ऐसे गाने लिख के पहुंचाओ जिसमें खाने पीने का जिक्र होता हो, देखते हैं कितने लोगों ने गानों को ध्यान से सुना। ठीक है, आप बिल्कुल काम करो, आप 5 गाने बताओ जिसमें खाने पीने का जिक्र होता है, मतलब उसमें खाने पीने की बात होनी चाहिए भाई। चाचा की चाय हो ना हो, कोई भी चाय हो, कोई भी खाने पीने की बात हो, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो 9837896896 पर। देखते हैं आप कितने क्रिएटिविटी के साथ अपने आंसर्स को मुझ तक पहुंचाते हो। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ी देर में मैं आऊंगा तो फिर यहां पर बताऊंगा आपको किस किसने मेरे को एकदम फैंटास्टिक वाले आंसर्स दिए हैं, है ना। हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का, लेडी एंड जेंटलमैन 9837896896 पर। अभी जरा बात कर लेते हैं कुछ खास चीजों के बारे में एंड उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी बताने वाला हूँ। पहले मैं एक बॉलीवुड की खबर आपको बता दूं, रामायण का रिसेंटली जो है ट्रेलर आउट हुआ था, अभी ये 27 को हुआ था टीजर आउट, शायद 27 को हुआ था एग्जैक्टली। सो उसमें क्या था ना कि मतलब 27 को हुआ है, उसके आसपास ही हुआ है, शायद अभी रिसेंटली हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा डेट। एंड ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लॉन्च आउट हुआ था 4:15 पर एग्जैक्टली। सो बहुत ही अच्छा इसका ट्रेलर, इतने सारे व्यूज़ और इतनी सारी लाइक्स इस पर आ गए, लोगों को बहुत पसंद आया ये ट्रेलर रामायण का एंड बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। रणवीर कपूर, यश एंड साई पल्लवी स्टारिंग है इसमें एंड साथ में रवि दुबे है, बहुत ही अच्छा। इसका पार्ट वन का जो ट्रेलर है वो रिलीज हुआ, अब इसकी डेट भी जो है निकल के आ गई है, बताया जा रहा है कि ये 6 नवंबर 2026 यानी 2026 6 नवंबर को ये फिल्म जो है दिवाली से 2 दिन पहले इसको रिलीज किया जाएगा, दुनिया भर के सिनेमाघरों में जो है इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, जिसमें स्टारिंग बाय रणवीर कपूर भगवान राम के रोल में आपको दिखाई देने वाले हैं। यश जी जो है वो रावण की भूमिका निभा रहे हैं, साई पल्लवी एग्जैक्टली दिस वेरी सिंपलिसिटी लेडी जो इतनी प्यारी लग रही थी, यू नो ब्यूटीफुल उनको दिखाया है इसमें सीता के रोल में। अगर आपने नहीं देखा है ये ट्रेलर तो डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड चेक आउट रामायण का ट्रेलर, बहुत ही अच्छा है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी रिव्यू किया था इस पर। खैर ये मूवी जो है रामायण का इसका पार्ट वन जो है वो आएगा 6 नवंबर 2026 दिवाली से 2 दिन पहले इसको रिलीज किया जाएगा अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। अभी मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में एक अपडेट देने वाला हूँ, इसके अलावा मुरादाबाद से जुड़ी 2 बेहतरीन खबरें आपको बताने वाला हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, तो बहुत कुछ है, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। UPI से अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगेगा क्या, इस पर आज हम पूरी बातें करने वाले हैं जरा सी देर में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचेंगी हौले हौले से स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप मुझे 5 ऐसे गाने बताओ फटाफट से, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 5 ऐसे गाने जिसमें खाने पीने का जिक्र होता हो, ऐसे गाने आप मुझे बता सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी, ये भी गाना है ना, इसमें भी आइसक्रीम खाने की बात कर रही है, आइसक्रीम चॉकलेट्स, ये ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में गाने जिसमें खाने पीने का जिक्र होता है। एंड मैंने कल कुछ गाने लिखे भी थे क्योंकि अभी मेरा एक शो आ रहा है जिसमें मुझे प्लानिंग करनी है, तो बट मैं ये आइडिया कि क्यों ना अपने लिसनर से पूछा जाए उनको कितना दिमाग उनके दिमाग में कितने सारे से गाने हैं, कितने सारे उनके जहन में ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें खाने पीने की बात होती है, वो तो लिस्टनर हमारे बता ही सकते हैं ना।
आप मुझे डेफिनेटली बताओ मैसेज करके 9837896896 पे, हमें इंतजार रहेगा आपके आने मैसेजेस का, जो आप अभी मैसेज करोगे, आपके आने वाले वॉइस मैसेजेस का, आपके आने वाले टेक्स्ट मैसेजेस का मुझे इंतजार है। एंड फिलहाल मैं अभी प्ले कर रहा हूँ वो गाना जो थोड़ी देर में आप तक पहुँचेगा।

0: सर आप भी गाओ यार, आप भी गाओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाय हाय
1: दिल्ली शहर दी मैं भी जट लुधियाने दा।
0: जरा सी देर में बेहतरीन गाना आप तक पहुंचेगा। अगर आप इस गाने पे मेरी स्टोरी देखना चाहते हो तो प्लीज चेक आउट करो, मेरा इंस्टा हैंडल रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, रेडियो वाला आनंद के नाम से इंस्टाग्राम पे जाओ और फटाफट से देख लो यार।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
9: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
10: अरे आनंद इज बैक।

0: क्या गाना था यार, स्टूडेंट ऑफ डे टू से गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया गाना है, इसको सुन के मेरे को मजा आ गया है। वेलकम बैक है वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आनंद को, गुड मॉर्निंग है जी। आपने ट्यून इन किया है 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:27 हो गए, 9:27 हो रहे हैं, आज गुरुवार की सुबह है जी। हमारे प्यारे बंधुओं से हमारी गुजारिश है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो जरा आराम से चलाएं यार, और सीट बेल्ट लगा लें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, टू व्हीलर वाहन अगर आप चला रहे हैं तो भैया हेलमेट लगा के चलाइए, बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आज के मौसम की बात करें तो डेफिनेटली मैं आपको ये बताने वाला हूँ मौसम का हाल क्या कह रहा है, ज़रूर हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूँ, मुरादाबाद जिले में राशन वितरण जो है वो कल से शुरू हो गया है, 5 अगस्त से जो है, अभी 18 अगस्त तक चलने वाला है राशन वितरण। जी हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि जिन लोगों को राशन वगैरह मिलता है वो जाके बिल्कुल ले सकते हैं। कल 5 अगस्त इसकी शुरुआत हो गई है, 18 अगस्त तक जो है चलेगा। एंड अब जो है 7 अगस्त हो गई है ITI में प्रवेश की तारीख, जिले की कांच रोड स्थित ITI में प्रवेश की जो अंतिम तिथि थी वो 4 अगस्त थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी है। तो इच्छुक स्टूडेंट जो है वो डेफिनेटली वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब 7 अगस्त लास्ट तारीख कर दी गई है श्रोताओं, तो ये तो देखिए बात हो गई है मुरादाबाद की, उन कुछ बातों की जो मुझे लगा आप तक डेफिनेटली पहुंचनी चाहिए वो मैं आप तक पहुंचा ही दूंगा, और भी ऐसी बहुत सारी अपडेट हैं जो आप तक धीरे धीरे पहुंचाता रहूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। एक बार खबरें आप तक सारी पहुंचेंगी, आप उस बात की तो बिल्कुल टेंशन ना लो, आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगी जो एक्चुअली आप चाहते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचनी चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं इसी स्टेशन के माध्यम से। एंड अभी बता दें, भारत में मुफ्त UPI पेमेंट सिस्टम को एक झटका लग सकता है, सरकार ने जो है थोड़ा सा चेंजेस के बारे में बताया कि भैया देखिए बताया जा रहा है, मतलब अभी एक इन्फॉर्मेशन तो पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कुछ सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि UPI ट्रांजेक्शन पर जो है अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। हाँ जी, यानी कि जल्द ही 2000 से ज्यादा की UPI ट्रांजेक्शन पर फीस लग सकती है। वैसे पहले भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, एंड अगर होता है तो देख लेंगे यार, फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ खास नहीं बताया जा रहा है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक नया कमाल का फीचर आया है, ऐसा बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ने ग्रुप चैट्स और आसान बनाने के लिए जो है कुछ नए फीचर्स को रोल आउट किया है। एंड अब मैं आपको बता दूं, जैसे ऑल मेंशन की मदद के साथ ही एक साथ सभी ग्रुप्स मेंबर्स को आप टैग कर सकेंगे, एंड इसके अलावा जैसे ज़रूरी मैसेज कोई मिस ना हो, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन पोल्स, कोई वोटिंग वगैरह, कोई डेट्स, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप में अब अवेलेबल मिलेंगे। यानी कि फीचर व्हाट्सएप जो है अब लेकर आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो लोग करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो एक्टिव रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन है ये। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो फीचर है वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलने वाला है अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद अगर जैसे इसका क्रेज बढ़ेगा वैसे वैसे ये सब तक जो है पहुंचेगा। और एक खास खबर ये है कि भैया मुरादाबाद के स्कूलों के पास गुटखा सिगरेट बेचने पर प्रशासन का जो है अब जोर ज़्यादा हो गया है। यानी कि मुरादाबाद के स्कूल्स के 500 मीटर के दायरे में अगर कोई भी दुकानदार नशीले पदार्थ रखता है या फिर तंबाकू जैसी चीज़ें रखता है अपने दुकान पर, अपनी शॉप पर, तो उसके ऊपर जो है भैया कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि अधिकारियों ने कहा है कि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, एंड अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो भैया आगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो स्कूलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में जो दुकानें हैं उन पर खास नज़र रखी जाएगी कि कोई भी तंबाकू या नशीले पदार्थ वो लोग ना रख सकें। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, आई लाइक इट यार, ये एक बढ़िया और बेहतरीन चीज़ है। चलिए अभी डाइवर्जन की बात करेंगे जब लौट कर आएंगे तो, और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये भी कहा था आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा अपने हिसाब से, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा 5 ऐसे गाने बताओ जिसमें खाने पीने का जिक्र होता है, अगर आप मुझे बता सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुँच गए हैं अभी, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे गाने लिख के बताए ना, मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन बहुत ही बढ़िया और सॉलिड मैसेज आप कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अभी आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे बेहतरीन गाने डेफिनेटली आप तक इसी स्टेशन पर पहुंचाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा था पाजी ज़रा आपको ये तो बता दूं कि आप सुन क्या रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। स्टेशन का नाम बताओ यार।
1: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM.
0: वेरी नाइस. आने वाला गाना

आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और दिल से कहिए भैया जियो बिंदास, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब भी पहुंचा सकते हो। भाई अगर पहुंचा दोगे तो हमें भी खुशी होगी। 9837896896 पे 5 गाने तो यार बहुत इजीली आप लिख ही सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। खाने पीने के इतने सारे गाने आ गए हैं आज तो यार, आजकल तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ यार। एक अमेजिंग ट्रैक सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन मुझे घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है 9:33 हो गए, यानी कि एक छोटे से एड ब्रेक का टाइम है। जल्दी से ये शॉर्ट एड ब्रेक, उसके बाद बढ़िया से गाना। अगर

0: सच में यार गाना बहुत ही कमाल का था। अभी आपने एंजॉय किया श्रेया घोषाल की आवाज़ में। श्रेया घोषाल की यार आवाज़ बहुत प्यारी, मतलब बहुत ही अच्छा गाती है, मतलब लीजेंड है यार ये वॉइस, इतनी प्यारी है इनकी, सुन के मजा आ जाता है। और आज की सुबह ये प्यारा सा गाना अभी आपने सुन लिया, हमारी अधूरी कहानी का बहुत ही प्यारी फिल्म, बहुत ही कमाल का गाना। श्रेया घोषाल जी ने इसको गाया बड़ी खूबसूरती के साथ। ये गुरुवार की सुबह अगली आवाज़ आप सुन रहे हैं आनंद की। हाँ जी, मैंने कहा कि हालचाल, बहुत सारे मैसेज आ गए यार आप लोगों के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ऐसे ऐसे गानों के नाम बताए ना, सुन के मेरे को हंसी भी आ रही है, इनको पढ़ के मतलब मेरे को मज़ा भी आ रहा है यार। वेल अल्टीमेटली अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। सच में यार बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आप करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप जहाँ भी होते हैं ना, आप मैसेज पहुँचा ही देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं यार हम सुबह सुबह मिलके, मैं और आप। ढेर सारा माहौल जो है यहाँ पर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल ज़रा सुनते हैं इनकी आवाज़।
1: ताजुब न कीजिएगा अगर कोई दुश्मन आपकी खैरियत पूछने आ जाए, ताजुब न कीजिएगा अगर कोई दुश्मन आपकी खैरियत पूछने आ जाए। ये वो दौर है जहां हर मुलाकात में मकसद छुपी होती है। तो प्रभा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं आपका दोस्त कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और आप सुना है FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, धन्यवाद।
0: क्या बात है जी, बड़े काम की बात करते हैं और बड़ी एकदम फटाफट से बोल के ना काम की बात निकल भी जाते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है यार। मैं मतलब मेरे को लगा कि हाँ सॉलिड है, मतलब काम की बात करते हैं उसके बाद अपनी बात को वहीं पे फिनिश कर देते हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका वॉइस नोट, थैंक यू वेरी मच अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आज के दिन के बारे में तो बहुत सारी बातें आपको पता लगी रही हैं। एंड आज बॉलीवुड के एक धाकड़ सिंगर का बर्थडे होता है, उनके फादर बहुत ही लेजेंड सिंगर हैं बॉलीवुड में, एंड वो भी अच्छे खासे सिंगर हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड बताया चाल उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़ होस्ट किए हैं, बहुत सारे यू नो बॉलीवुड में गाने भी दिए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर के तौर पर भी काम किया है मूवीज़ में, हमने उनको देखा है। तो कौन है ये कमाल के आर्टिस्ट जिनका आज हम बर्थडे भी मनाते हैं, और ये सिंगर भी हैं और ये चाइल्ड एक्टर तो रह ही चुके हैं, और आजकल तो खैर दिखते भी हैं, और उनका एक गाना भी प्ले करूंगा अभी मैं यहाँ पे, तो शायद आप समझ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो मैं आपको थोड़ी देर में लौट कर आऊँगा तो समझा दूंगा यार, आप टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे गाने लिखकर पहुंचाए हैं। ज़रा आपके मैसेज को फटाफट शामिल कर लेता हूं। मैंने आपसे कहा था ना पांच ऐसे गाने बताऊं जिसमें गाने बीने का जिक्र होता हो। आकांक्षा मेरे साथ जुड़ी है, आकांक्षा सैनी ने मुझे पांच गाने लिखे हैं, चॉकलेट आइसक्रीम, मेरी सहेलियां नंबर वन, नंबर टू किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, ठीक है। एंड इन्होंने तीसरा गाना लिखा है, ये खाने पीने में तो वैसे शामिल नहीं हो सकता है। एंड ये गाना मैंने कहा था ऐसे गाने बताओ जिसमें खाने पीने का जिक्र होता है, मतलब जिसमें खाने की बात हो रही है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दो गाने बिल्कुल आपके एकदम सॉलिड हैं, मैं इनको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी तीन गाने आपके रूल से बाहर हो गए मैम। मौसम बहुत औसम है, थोड़ी थोड़ी हवाएं भी चल रही हैं। हाय गुड मॉर्निंग, आप कैसे हाल चाल है? आज इनका बर्थडे होता है, बिल्कुल जी आपने सही कहा। ये ललिता कश्यप जी ने देखिए कितना अच्छा लिखा है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, वेरी नाइस। नंबर टू जलेबी भाई, वाह वाह वाह। नंबर थ्री इन्होंने लिखा है, मैं तो रास्ते से जा रहा था पानी पूरी खा रहा था, वेरी गुड। एंड आइसक्रीम लाइम जूस, मेरी सहेलियाँ चॉकलेट ट्रॉफी वगैरह वगैरह। नंबर फोर, नंबर फाइव पे इन्होंने लिखा है, खाई के पान बनारस वाला, ओ माय गॉड, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक्चुअली ये पांच गाने बिल्कुल मैं शामिल कर सकता हूँ क्योंकि इसमें खाने पीने का प्रॉपर जिक्र हो रहा है मैडम, ये तो आपने सही बढ़िया गाने लिख के बता दिए, थैंक यू वेरी मच। सच में ये बहुत सही थे। एक मैसेज और आया था, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग जी, बस मुझे तो दो ही गाने समझ में आते हैं, एक तो खाई के पान बनारस वाला और एक दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। किसी ने मैसेज किया है, मम्मी ने मेरी चाय पे बुलाया, अब किसको बुलाया ये आपने पूरा नहीं बताया है, आप गाना बता रही हैं या कुछ कह रही हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। 9:45 हो रहे हैं, कुछ एड ब्रेक का टाइम है, उसके बाद एक अच्छा गाना बजेगा आपके रेडियो पर, एंड उसके बाद जब ये गाना खत्म हो जाएगा फिर मैं वापस आता हूँ एक कड़क सवाल लेकर, ठीक है। एक और बड़ी प्यारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप तक जल्दी से पहुंचानी है, तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो लगातार आप तक पहुंचती रहती है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आनंद के साथ जब आप जुड़ते हैं तो काम की बातें भी होती हैं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको यूज में भी आई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ एड ब्रेक आएंगे, जरा सी देर में फिर अच्छा सा गाना भी आएगा। आए हाय तेरा रंग गुलाबी, आए हाय मर के तेरी आंखें काफी नॉस्टैल्जिया फीलिंग दे रहा है गाना। जरा सी देर में गाना आपके रेडियो पे आएगा, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: कहा मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय
2: बिंदास मॉर्निंग, सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलान,
5: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और दिल से कहिए जियो बिंदास।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: चलिए भाई साहब, अब जरा काम की बात करते हैं। आप लोग मैसेज अच्छी कर रहे हैं। अभी मेरा एक कड़क क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब आपने मेरे को पहुंचाना है मैसेज करके, ठीक है। ये डायलॉग प्ले कर रहा हूँ आज की मॉर्निंग, बहुत ही प्यारा डायलॉग है। ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है ये आपको मुझे मैसेज करके बताना
1: है। Love doesn't just mean,
0: ठीक है, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, बहुत ही अच्छा डायलॉग है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है डायलॉग कौन सी फिल्म का है।
1: Love doesn't just mean expressing love. Love is love even without saying anything. It is love. Love is also sacrifice.
0: आपको समझ में आ रहा है या फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको सुनवाऊं? अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसको चेंज करके भी सुना देंगे। अगर आप ये वॉइस पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
1: Love is love even without saying anything. It is love. Love is also sacrifice. Love is also being silent for each other. Love doesn't just mean receiving love.
0: क्या आप समझ पा रहे हैं डायलॉग कौन सी फिल्म का है? बहुत सिंपल डायलॉग है, बहुत प्यारा डायलॉग है।
1: Love doesn't just mean expressing love.
0: बहुत खूबसूरत डायलॉग है। अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर जाकर और मुझे बता सकते हैं कि अभी जो आप डायलॉग सुन रहे हैं वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है। अगर आप पहचान गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैसेज करिए मुझे 9837896896 पर और व्हाट्सएप करके मुझे आप बताइए। यहाँ पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 9837896896 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे अपना सही जवाब बता सकते हैं। 9837896896 पर जो भी आपने डायलॉग सुना है वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है। अगर आपको पता चल चुका है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पे। इंतजार रहेगा मैं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9837896896 पे आप जरूर मैसेज करिएगा मुझे, ठीक है जी।
1: Love is for someone else's happiness.
0: ठीक है, इंतजार है हमें आपके मैसेजेस का। 9837896896 पर जल्दी से व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। फिलहाल मैं एक अच्छा से गाना प्ले करता हूँ, उसके बाद जल्दी से वापस आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। वक्त हो गया है 9:53। आप ही आनंद के साथ सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: जिम्मेदारी
1: तेरी मेरी कहानी।
0: अरिजीत सिंह की आवाज गब्बर इज बैक से सुन रहे थे आप। पलक मुच्छल दे रही थी साथ। क्या बात है, बंद

0: जगह बनाई है हमारी पूरी इंटायर फैमिली की ओर से, पूरे एफएम इंटायर फैमिली की ओर से वही हैप्पी बर्थडे की इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनका आज बर्थडे होता है। इनके यहाँ पे कुछ गाने प्ले करके इनको विश करते हैं, आज इनका बर्थडे है यार।
1: और रास्ते पर वो सड़क में
0: इसकी आवाजें,
1: कभी तुम मिलोगे कहीं पे हमको यकीन,
0: ये गाना इनका बड़ा प्यारा है यार।
1: समझ की चाल देखो,
0: वेरी पॉपुलर नंबर,
1: आंखों की मचाल।
0: एक और प्ले करता हूँ यार।
1: तेरा नाम मेरी, मेरी
0: Yes, I am talking about आदित्य नारायण, उदित नारायण जी के बेटे हैं। आज इनका बर्थडे होता है तो हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से आदित्य नारायण जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही कमाल के सिंगर हैं, बचपन में बहुत सारा फिल्मों में इन्होंने काम किया है।
1: चाहता कितना तुमको
0: यार, कमाल का लड़का है, डैशिंग है, और मतलब एक कम एज में ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं है, बहुत कुछ बढ़िया कर लिया है। आई नो अपने पापा की तरह तो बहुत बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन आदित्य नारायण ने भी कमाल करके रखा यार। होस्ट बहुत अच्छे करते हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज में हम आदित्य नारायण को देखते हैं, और गाने भी अच्छे खासे बनाता है यार लड़का, नो डाउट। तो हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से वेरी हैप्पी बर्थडे आदित्य नारायण जी को। अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे मनाते हैं आदित्य नारायण जी के साथ, क्या बात है यार। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया इनको जन्मदिन की। और फिलहाल स्टेशन की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। आज मैंने आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा है, मैंने कहा है जरा मुझे बताओ ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है।
2: यार ये प्यार का मतलब सिर्फ प्यार का इजहार करना नहीं होता, प्यार बिना कुछ कहे भी प्यार ही है, प्यार कुर्बानी भी है, प्यार एक दूसरे के लिए चुप रहना भी है। प्यार का मतलब सिर्फ प्यार को पाना नहीं, प्यार किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी मिटाना भी।
0: कौन सी फिल्म का डायलॉग है? बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अगर आप समझ गए हैं ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ, अपना सही जवाब और अपने शहर के नाम के साथ जरूर लिखिएगा। आप कहाँ से हैं, विच सिटी, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। फिलहाल अभी आपको बताना जरूरी है मेरे लिए क्या, सुबह के 10:01 हो गए यार।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: चलिए पाजी एड ब्रेक हो गए हैं अब खत्म, और यहाँ पर टाइम आपको बता देता हूँ 10:02 हो गए हैं। थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो बात करेंगे आज के हमारे लकी सुपरस्टार के बारे में, कौन है आज हमारे शो के विनर। आने वाला गाना थोड़ा सा आपको फ्लैश बैक में ले जाएगा, गिप्पी ग्रेवाल। कुछ याद आया इस गाने से? बहुत सारी पुरानी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। कुछ ऐसे गाने लेकर आता हूँ जो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया वाली फील आपको दें। ये है गुरुवार की सुबह, यस आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। सुनते जाइए, आई विल बी राइट बैक।

0: बहुत बढ़िया गाना गिप्पी गिरेवाल की आवाज में भी आपने एंजॉय किया। आप सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, 10:06 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। 6 अगस्त की सुबह है, ये थर्सडे मॉर्निंग है। एक लेडीज खबर आपको फटाफट से बता देता हूँ, ट्रैफिक अपडेट है और ये खबर आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो सभी श्रोताओं के लिए, सभी लिस्टर्स के लिए ट्रैफिक की जरूरी अपडेट है। भैया, कांवड़ यात्रा को देखते हुए आज 6 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक मुरादाबाद शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। हाँ जी, एग्जैक्टली, आपको बता दें दिल्ली, रामपुर, बिजनौर और बरेली की ओर जाने वाले भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। अगर आप जो है इस सफर पर निकल रहे हैं तो भैया अपना रूट जरूर चेक कर लें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का जरूर पालन करें। आप सुरक्षित रहें, सावधानी से चलें और कांवड़ यात्रियों का भी पूरा सहयोग करें। ऐसी ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसी मोर डिटेल्स के लिए प्लीज सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 10:07 हो रहे हैं जी। आपको बता दें ऐसी और ट्रैफिक की कड़क अपडेट आपको जाननी है तो हमारा इंस्टा हैंडल चेक कीजिए, वहां पर SP सिटी सुभाष गंगवार जी ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा ऑफिशियल हैंडल आपको मिलेगा FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। आप प्लीज जाइए, चेक आउट कीजिए, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड है वो सब कुछ जो है SP सिटी सुभाष गंगवार जी ने साझा की है हमारे साथ। हाँ जी, तो SP ट्रैफिक सर ने पूरी जानकारी जो है हमें बताई है और मैंने कई बार रेडियो पे भी चलाई है, बट अभी आज से जो है रूट डायवर्जन हो रहा है दोपहर को 2 बजे से। ये कड़क और लेटेस्ट अपडेट आप तक मुझे बतानी थी। गड्ढे लेके निकल तो रहे हो लेकिन अपना रूट चेक कर लेना बॉस, कभी गड़बड़ हो जाए। सीट बेल्ट लगा ली, रस्ते भी लगानी होती है। चलो, आने वाला गाना आदित्य साहब का बर्थडे, उन्हीं की आवाज में गाना। आय हाय, मैं अभी लौट कर आता हूँ, जल्दी से बताता हूँ कौन है मेरे आज के शो का लकी वाला सुपरस्टार। ये डायलॉग कौन सी फिल्म का था मैंने आपसे पूछा था।
1: प्यार, प्यार का मतलब सिर्फ प्यार का इजहार करना नहीं होता, प्यार बिना कुछ कहे भी प्यार ही है, प्यार कुर्बानी भी है, प्यार एक दूसरे के लिए चुप रहना भी। प्यार का मतलब सिर्फ प्यार को पाना नहीं, प्यार किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी मिटाना भी।
0: इमीडिएटली मैसेज कर दूं, लास्ट ऑप्शन है आपके पास, ये कौन से फिल्म का डायलॉग है। ऑप्शन ए मोहब्बतें या ऑप्शन बी मुझसे दोस्ती करोगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ। 9837896896 में इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: भाई साहब 10:14 हो गए, मेरा जाने का टाइम हो गया है फिलहाल।
1: लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली।
0: हाँ जी, कैसे हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है ना? जिंदगी में बढ़िया चलना चाहिए। देखो यार, अप डाउन तो लाइफ होती रहती है, अप्स एंड डाउन सबकी जिंदगी में आते हैं ना, तो इनसे ज्यादा परेशान नहीं होना है। हम इंसान है, एआई नहीं है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। हालांकि एआई ने भी बहुत ज्यादा इतिहास रच दिया, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन उसको भी इंसान नहीं बना है, ये मत भूलिएगा। इसीलिए जिंदगी में ज्यादा टेंशन लेने का ना कोई फायदा है नहीं, जो आज है ना उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अपने लकी कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मैम आप? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
2: हेलो
0: जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नाम बताएं।
2: गुड मॉर्निंग
0: जी, क्या नाम है आपका मैम?
2: मेरा नाम रेनू सैनी है।
0: रेनू सैनी जी मेरे साथ जुड़ी है, क्या बात है। रेनू जी कहाँ से जुड़ी हैं आप?
2: लाइन पार कुंदनपुर से।
0: लाइन पार कुंदनपुर से, अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या करती हैं रेनू जी आप?
2: कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूं।
0: अरे वाह, आपकी आवाज से तो लग रहा था अभी आप बड़ी छोटी हैं, लेकिन आप तो कह रही हैं आपकी शादी भी हो गई है।
2: जी
0: अच्छा, और बताइए, सब बढ़िया चल रहा है?
2: जी सब कुछ ठीक,
0: बहुत बढ़िया। अच्छा रेनू जी, मैंने जो भी डायलॉग प्ले किया था वो कौन सी फिल्म का था?
2: जी वो डायलॉग मुझसे दोस्ती करोगे मूवी का है।
0: अरे वाह, वेरी नाइस। वो पिक्चर देखी है आपने?
2: जी हाँ, कई बार देखी है।
0: अच्छा, कौन से हीरो हीरोइन है उसमें, जरा ये बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत ही अच्छा लगा रेनू जी, आप रेडियो कब से सुन रही हैं और कितने ध्यान से सुनती हैं, जरा ये भी बताओ मुझे।
2: जी मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं।
0: अरे वाह, मजा आता है आपको रेडियो सुनने में?
2: जी हाँ, मॉर्निंग में बजाते थे, वो चलता रहता है।
0: अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप तो बिल्कुल करीब में रहती हैं, जब भी कभी समय मिले जरूर हमारे ऑफिस आइए मिलने के लिए। ओके रेनू जी, कुछ कहना चाहती हैं? बहुत लोग आपको सुन रहे हैं जाते जाते।
2: हाँ, मैं बस कहूंगी सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और कुछ एक काम ऐसा करें जिससे दिल को सुकून और खुशी मिले।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज, बहुत बढ़िया। आपके दिल को भी सुकून मिला, आज आपको रेडियो पे लाइव लिया गया है, आपकी आवाज पूरे शहर में जा रही है।
2: जी हाँ,
0: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अपना ख्याल रखिए रेनू जी, कांग्रेचुलेशन, बाय बाय। बाय बाय।

चलिए गाइस, फिलहाल मैं जाता हूँ, मेरा टाइम हो गया जाने का, क्योंकि अभी बैकअप में बहुत सारे इंटरव्यूज करने हैं, उसके बाद बाहर जाना है, बहुत सारा काम है, सिर्फ रेडियो पे शो ही नहीं होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आगे देख सकते हैं, रेडियो वाला आनंद के नाम से इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ मैं खिलाड़ी। चलिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, बाय बाय, कल मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले आपके जल्दी से नाम ले लेता हूँ यार। ये मुजफ्फरनगर से मेरे साथ जुड़े थे सुभाष सैनी साहब, दर्पण भैया सही जवाब के साथ जुड़े थे, गौरव टिलर नवीन नगर से जुड़ रहे थे मेरे साथ, एंड ये मेरे पास सोनू जी जुड़ रहे थे सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से, कश्मीर से मेराजुद्दीन जुड़े थे, रिजवान खान साहब ग्राम बीजना से मेरे साथ जुड़े थे राइट आंसर के साथ, गुड मॉर्निंग मेरे पास सही जवाब के साथ पहुंच रहा था राहुल सक्सेना का, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से डॉक्टर सैयद शारिक अली इरशाद हुसैन अंसारी साहब जुड़े, एंड हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से। इसके अलावा हाई गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, डीके अरोड़ा चंदन नगर से जुड़े हैं मेरे साथ आज की सुबह, ये आकांक्षा सैनी मेरे साथ जुड़ी थी आज की सुबह, ललिता कश्यप जी जुड़ चुकी हैं, गीता कश्यप, लक्ष्मी एंड संतोष भाभी जुड़ चुके हैं, राजा कश्यप जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, कल्याणपुर से दुर्गेश जी, रिहाना जुड़ चुकी हैं मेरे साथ रानी नागल से, गुड मॉर्निंग पहुंच रहा है मेरे पास यहाँ पर, हाय कैसे हालचाल है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको यार, वेरी गुड मॉर्निंग, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं नजर आ रहा है। एक और मैसेज आया था मेरे पास सहारनपुर से, मेरे रेगुलर लिसनर हैं जोन रोजी पलविली हमेशा मेरे साथ जुड़ते हैं, कुलदीप गुप्ता औधौली बाराबंकी से जुड़े थे, अजय सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं बुद्धि बिहार से आज की सुबह, विक्की सागर जी, रणवीर सिंह जी, एंड ये बबलू जी मुंबई महाराष्ट्र से, और भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं साथियों, जितने भी लोग जुड़े उन सभी का दिल से थैंक यू। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलूंगा आपको कल सुबह सवेरे। मेरे पास मुस्कान का मैसेज पहुंचा था आज की सुबह, 5 गाने उन्होंने बताया जिसमें खाने का जिक्र होता है, एंड इसके अलावा खुशी मंझोला से जुड़ चुकी थी, हाय गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है, हेलो हाय नमस्ते माय नेम इज अनुराग, गुड मॉर्निंग अनुराग। चलिए गाइस, हैव अ लवली डे, एंजॉय योर डे, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, मिलता हूँ कल, बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। लेकिन दोस्तों, थर्सडे मॉर्निंग है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग है और आज का मौसम भी जैसे कह रहा हो स्लो डाउन बैटर एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। बाहर बादल छाए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और मौसम में भी एक ब्यूटीफुल फ्रेशनेस सी घुल गई है कि दोस्तों कभी कभी ना लाइफ में भी ऐसे ही बादल आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्लाउड ऑलवेज मूव ऑन। इसलिए अगर आज दिल में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और इसी खूबसूरत मॉर्निंग को फील कीजिए, क्योंकि हर सुबह एक न्यू बिगनिंग है और एक नई उम्मीद भी है और खुद से कहने का एक छोटा सा मौका भी है, आज मैं खुश रहूंगी, पॉजिटिव रहूंगी, या फिर खुश रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा और जो मेरे पास है उसके लिए ग्रेटफुल एंड रहूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एवरीवन, जो हमारे पास है ना, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पास है, ना जाने कितने लोग उसकी तमन्ना कर रहे हैं। सो स्माइल प्लीज एवरीवन, क्योंकि आपकी स्माइल भी किसी के दिन को खूबसूरत बना सकती है, ब्यूटीफुल बना सकती है। तो मुस्कुराना मत भूलिएगा और जब खुशी के साथ आप होते हैं तो सिंपल सी बात है, खुश तो होते ही हैं आप, नो डाउट। चलिए अभी करते हैं अपने शो की शुरुआत एक शानदार गाना और आपको भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है एवरीवन। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ हमारा ऑफिशियल नंबर जिस पर आपको अपना मैसेज पहुँचाना है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस ब्यूटीफुल नंबर पर ना आपको मैसेज करना है, चाहे आप टेक्स्ट मैसेज करें या व्हाट्सएप करें या वॉइस नोट पहुँचाएं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि थोड़ी सी तो आपकी भी चलनी चाहिए ना, थोड़ी नहीं पूरी आपकी चलती है भाई, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो क्या गम है। और चलिए गुलाबी शरारा सुबह सुबह थोड़ा सा अपने श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और एवरीवन, वक्त हुआ है अभी 10:32 और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना, गुलाबी शरारा, इंदर आर्या जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़। तो मैंने कहा चलिए हमारी जो फीमेल्स हैं वो शॉपिंग की बड़ी शौकीन होती हैं, और सावन का पावन महीना है, सावन में शॉपिंग तो होती ही है। और दोस्तों आपको एक अपडेट भी हम यहाँ पर दे देते हैं, एंड सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में हरिद्वार की हर की पौड़ी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इन दिनों बड़ी संख्या में शिव भक्त हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा जल भर रहे हैं और फिर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ अपनी कांवड़ यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ गूंजते मंत्रोच्चार, भगवान के रंग में रंगी कांवड़िए और गंगा किनारे का ये भक्ति में माहौल, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हरिद्वार शिवमय हो गया है। तो आप भी जहाँ हैं बस वहीं से बोल दीजिएगा हर हर महादेव। दोस्तों आस्था जब दिल से निकलती है तो रास्ते अपने आप महादेव तक पहुँच ही जाते हैं। और यहाँ पर हमारे श्रोताओं के भी बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं, तो चलिए उनको भी जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। आज की सुबह हमारे प्यारे प्यारे जो लिसनर्स हैं वो क्या पहुँचाते हैं, उनके दिल की बात भी जान लेते हैं। और अभी हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं मधुबनी बिहार से, मोहम्मद शाबिर परवाना जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं, कहते हैं खुशी जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर, हम एफएम मुरादाबाद सुनते हैं, अच्छा लगता है, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहां पर आया है सहारनपुर से सैयद मंसूर जी का, साथ में शाइना हसन है और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नेपाल नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी का, कुशल शाह जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग आपको भी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये सिरगांव छत्तीसगढ़ से अपना मैसेज पहुँचाते हैं, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी का मैसेज हमारे पास आया है आज की सुबह, और ये कहते हैं कि हम एफएम मुरादाबाद रेगुलर सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी जी का मैसेज हमारे पास आता है और ये कहते हैं आपको हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान जी, साथ में साइना नवाज हैं और ये कहते हैं आरजी खुशी जी को हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर। और भी तमाम मैसेज हमारे पास आ रहे हैं आज की सुबह, एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है खुशी जी को जय श्री राम, गौरव टेलर जी नवीन नगर मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं आज की मॉर्निंग, कहते हैं कि आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है मैम, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये कहते हैं कि खुशी जी हमें एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। गौरव जी आप मुझे बताइएगा कि ये ट्रैक जो आप सुनते हैं बार बार, इसका रीज़न क्या है, बताइए बताइए। और इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत सा थॉट भी हमारे साथ शेयर किया आज की सुबह कि उलझनों से भरे इस दुनिया में खुशहाल भरी जिंदगी बिताना किसी कामयाबी से कम नहीं है। एग्जैक्टली राइट सर, आजकल मतलब लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, परेशानियाँ ना हो, लेकिन परेशानी में भी खुश रहना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सुख में तो सब लोग खुश रहते ही हैं, खुशी में तो सब लोग खुश रहते हैं, लेकिन जो गम में खुश रहता है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए कहती हूँ दोस्तों कि देखिए थोड़ा सा ना टेंशन को दूर कीजिए और मुस्कुराइए, जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आधी जो चिंता है ना, जो फिक्र है वो दूर हो जाती है। और चिंता करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, चिंता करने से तो परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती हैं, तो चिंता ना करने से
बेटर है कि आप चिंतन करो प्रभु का, और जब ईश्वर का चिंतन करते हैं तो माइंड भी अच्छा होता है और आपकी परेशानी का हल भी आपको मिल जाता है। तो चलो सुनते हैं शानदार से गाना, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। आपको भी मुझ तक मैसेज पहुंचाना है ना, तो जल्दी से पहुंचाइए, फिर इतना क्यों सोच रहे हैं आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और सुनते हैं ये गाना, लौट कर आती हूँ मैं अभी।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और हम भी चले आए अपने रेडियो के माइक के पास, आप भी अपने रेडियो के थोड़ा सा करीब आ जाइएगा। और दोस्तों, ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना, इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी इरशाद हुसैन अंसारी जी ने, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से। और साथ में इनके दोस्त भी हैं, शहीद शारिक अली जी, महाराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। एंड आई होप सर आपने ये गाना एंजॉय किया होगा। उसके अलावा हमारे पास और मैसेज भी आए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गेश सैनी जी का, कल्याणपुर मुरादाबाद से। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रजा हुसैन जी का, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं गोविंदपुर खुर्द से। कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है पीतर जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सदीकी जी का, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है उमर शंकर जी का, और ये मैसेज हमें रुद्रपुर से पहुंचाते हैं। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, जिला मुरादाबाद बस्तौर से ये आकांक्षा सैनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं आकांक्षा, आप बताइएगा आप कैसे हैं। और दोस्तों, मुरादाबाद मौसम अपडेट भी हम आपको बता देते हैं। एंड मुरादाबाद के मौसम की अगर बात करें तो आज आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ साथ बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मुरादाबाद में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम काफ़ी ठंडा व सुहाना बना हुआ है। लगातार बारिश के कारण शहर के कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है, इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान रहिए। खासकर दोपहिया वाहन चलाने वाले श्रोताओं, पानी भरी सड़कों और फिसलन वाले रास्ते पर जल्दबाजी ना करें। और अगर बारिश के दौरान गरज चमक या तेज हवाएं चलें तो खुले स्थान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। तो मुरादाबाद वालों, मौसम का मिजाज आज थोड़ा रेनिंग है, लेकिन आप सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। छाता साथ रखिए, सफ़र में सावधानी बरतिए। और मौसम से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 के पर। और दोस्तों, छोटी सी सावधानी भी, आपने अभी टेम्परेचर की अगर बात करें तो मुरादाबाद का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है और येलो ऑरेंज अलर्ट दोनों का उल्लेख किया गया है। लेकिन मुझे मैं आपको बता देती हूँ कि एवरीवन, बारिश का देखिए मानसून चल रहा है, सावन का महीना है, और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। बाकी सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने मैसेज भी पहुंचाते रहिए। और हम एक सवाल भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्या कुछ है वो सब आपको पता लगेगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आज की मॉर्निंग, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। आप कहीं मचाइए, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुशी के साथ मुस्कुराते रहिए। और ये शानदार से गाना आप सभी के लिए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

बिल्कुल दोस्तों, किसी को चाहना कोई खता नहीं है और मैं भी चाहती हूँ। किसको पता है आपको? गोलगप्पों को। हाँ जी, पानी पूरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअली मैं कभी मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ या फिर कभी ऐसे ही घूमने के लिए हम जाते हैं एंड मुझे सबसे पहले कुछ नजर नहीं आता है सिवाय पानी के स्टॉल के अलावा। जब मैं देखती हूँ कि पानी पूरी का स्टॉल सामने लगा हुआ है तो मैं फटाफट से पहले वहीं जाती हूँ। मम्मी कहती है, अच्छा कर ली तुमने शॉपिंग? हाँ, जो खाने के लिए जा रहे हो। मैंने कहा, नहीं मम्मी, पहले मैं खाऊंगी उसके बाद शॉपिंग करूंगी। तो मुझे कहीं भी अगर पानी पूरी का स्टॉल नजर आता है कहीं भी, तो मैं पहले पानी पूरी खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और आज का मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है, चटपटा सा। देखिए दोस्तों, पानी पूरी का नाम सुनते ही ना, गोलगप्पों का नाम सुनते ही ना, बहुत सारे श्रोताओं के मुंह में तो पानी भी आ गया होगा। हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं के चेहरे पर ना स्माइल भी आ गई होगी। वैसे गोलगप्पे की शौकीन तो हमारे घर में कई लोग होंगे, है ना? लेकिन आपके घर का असली गोलगप्पा चैंपियन कौन है? कौन है जो कहता है बस एक प्लेट और फिर गोलगप्पे वाले भैया से कहते हैं, भैया थोड़ा पानी तीखा रखना, थोड़ा सा और तीखा, एंड बताएगा आपके घर में सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खाता है? जल्दी से बताएगा, आपकी मम्मा, पापा, ब्रदर, सिस्टर या फिर आप खुद? फटाफट से अपना मैसेज पहुंचाएगा नंबर 9837896896। कौन है आपके घर का गोलगप्पा चैंपियन जो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खा सकता है या फिर खाता है? फटाफट से व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना। इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पर आई थी फ्रॉम लाइन पर मुरादाबाद से हरिओम महेश्वरी जी का। ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं और कहते हैं, कैसी हैं आप मैम? सर, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी दुआएं हैं, हम बहुत अच्छे हैं। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी पलवली जी का। कहते हैं, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड होस्ट, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। एंड कहते हैं कि हमें ना एक गाना सुनवा दीजिएगा फ्रॉम द मूवी ये वादा रहा, किशोर कुमार और साथ में आशा भोसले जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुनवाएंगे सर। और गौरव जी का मैसेज यहाँ पर आता है, ऐसी कोई बात नहीं है खुशी जी, बस ये सॉन्ग हमें अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये बात है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज अपना पहुँचाती हैं शाबरीन जी मिलक से, हम बहुत अच्छे हैं, आई होप आप भी अच्छी होंगी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं पूजा जी विकास नगर से, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, आपको भी। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है बट गुड मॉर्निंग हमें विश किया है। ऐसा मत किया करो ना, कितनी बार मैं आपसे कहती हूँ कि एवरीवन जब भी आप मुझे मैसेज करें तो अपना नाम, अपना एड्रेस जरूर हमें बताएं। पूरा नहीं बता रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं बस वहीं का, ठीक है? टेंशन ना लो, हम आपके घर ना आएंगे भैया, अभी बहुत बिजी हैं हम। चलो, ये तो बहुत सही यू नो मस्ती हमने कर ली है, अभी फिलहाल एक गाना सुनो, उसके बाद मैं लौट कर आने वाली हूँ। एंड अभी मैंने पूछा था कि आपके घर का गोलगप्पा चैंपियन कौन है जो सबसे ज्यादा पानी पूरी खा सकते हैं या फिर खाते हैं? बिना किसी देरी के बता सकते हैं आज उनका नाम आप खुलकर, शर्माइए मत, आप खुद भी हो सकते हैं भाई। पानी पूरी का कहीं भी ठेला देखते हैं तो सबसे पहले, भैया पानी पूरी खिला दो हमको। अच्छा, सबसे बोलते हैं, फ्रेंड्स से बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो बस दो ही खाऊंगी, और बाद में जब खाना शुरू करते हैं तो कब 10 तक नंबर पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए, अभी आप, हम खाने पीने की बात कर रहे हैं ना, तो एक खाने पीने वाला गाना भी सुनवा देते हैं, बहुत ही शानदार सा गाना है।

तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही शानदार सा ट्रैक, उसके बाद लौट कर आएंगे हम, फिर करेंगे आपसे भी बहुत सारी गपशप। और मैं आपको सुनवाने वाली हूँ फ्रॉम द मूवी प्रेम रतन धन पायो से एक बेहतरीन ट्रैक। आज उनसे मिलना है हमें, और जब वो मिलने के लिए जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें लेकर जाते हैं। वैसे जब हम कहीं जाते हैं कहीं रिलेटिव के यहाँ पर रिलेशन में, तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या लेकर जाएँ क्या नहीं लेकर जाएँ, है ना। तो जो उनको पसंद है वो लेकर जाओ और खुशी खुशी जाइए। फिलहाल ये गाना सुनो।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज।

आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी। मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था आज की सुबह बहुत फनी एंड सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा चलिए आज थोड़ा सा अपने श्रोताओं से सुबह सुबह चटपटा सवाल पूछ लेते हैं। और मैंने आपसे मालूम किया था कि गोलगप्पे का नाम सुनते ही किसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एंड देखिए दोस्तों, गोलगप्पे के नाम सुनते ही तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। वैसे गोलगप्पे के शौकीन तो हमारे घर में भी कई लोग होते हैं, है ना। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके घर का असली गोलगप्पा चैंपियन कौन है? कौन है वो जो कहता है बस एक प्लेट, और फिर गोलगप्पे वाले भैया से कहते हैं भैया पानी थोड़ा सा और तीखा करना। तो जल्दी से बताइएगा कौन है आपके घर में जो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाते हैं। और हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पर मैसेज आए हैं। एंड हमारे पास ये मैसेज हमें पहुँचाती है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। और ये कहते हैं कि मैम मेरे घर में ना गोलगप्पा चैंपियन मेरा छोटा बेटा है जो अभी 4 इयर्स का कंप्लीट हुआ है। एंड उसको बेहद पसंद है गोलगप्पे, और वह अपनी मम्मा से भी ज्यादा खा लेता है। अरे वाह, क्या बात है। अमित वर्मा जी का मैसेज हमारे पास आया है, और ये कहते हैं कि वो अपनी मम्मा से भी ज्यादा गोलगप्पे खा लेता है। हाँ, नटखट बालक। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है महराजुद्दीन जी का। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं कश्मीर से, और कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रिया का, और रिया क्या कहती हैं जरा सुनिएगा एवरीवन। रिया कहती हैं हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। और ये कहते हैं कि हमारे घर का असली गोलगप्पा चैंपियन तो मेरा भाई है। गोलगप्पे देखते ही उसकी आंखों में जो चमक आती है ना, वो हमें उसकी किताबों की जो मतलब पढ़ाई करते हैं ना, उसकी किताबों में भी नहीं दिखाई देती है। जब वो किताब पढ़ते हुए उसकी आंखों में नहीं दिखाई देती वो चमक, जब वो ऐसे ही गोलगप्पे देखता है वो उसकी आंखों में चमक। हो क्या बात है। तो कितने गोलगप्पे खा लेते हैं आपके ब्रदर, आपने बताया नहीं सिस्टर। हमने आपसे मालूम किया था कि कितने गोलगप्पे खा लेते हैं आपके भाई, तो बताइएगा। देख लो, देख रहे हैं आप, मतलब पढ़ाई किताबें देख कर ना उसकी आंखों में वो चमक नहीं आती जितना गोलगप्पों को देख कर आती है। भाई क्या बोले। हाँ, आगे आप बता सकते हो जीवन कि आपके घर में कौन है वो गोलगप्पा चैंपियन जो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाते हैं। आज ना राज खोली दो आप, तो जल्दी से बताओ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। और सुनते हैं एक शानदार सा ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए खुशी के साथ, मुस्कुराते रहिए। और एक प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं। पता है दोस्तों, हमारी लाइफ में ना चाहे कितने भी नए दोस्त आ जाएं, लेकिन पुरानों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पुराने दोस्तों की बात ही अलग होती है ना। तो एक ऐसा ही ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ, हरियाणवी गाना है, एंड सुमित गोस्वामी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। तो सुनते हैं कुछ शानदार गाने, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और देखिए, हम थोड़ा सा भी नहीं ठहरे, हम फटाफट से आ गए हैं आपके पास भक्ति दौड़ते। मैंने कहा चलो अपने श्रोताओं से फिर से मुलाकात करते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ एवरीवन, वक्त हुआ है 11:40। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, खुशी है आपके साथ। और एवरीवन, यहाँ पर बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ गए हैं, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते हुए बड़े होते हैं, और उन्हीं आवाज़ों में से एक नाम आता है आदिति नारायण जी का। दोस्तों, आज 6 अगस्त को आदिति नारायण जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आरजी खुशी एंड हमारी पूरी FM फैमिली की ओर से और तमाम सुनने वाले श्रोताओं की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हमारे पास यहाँ पर और मैसेज आए हैं, वो भी हम शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, आदिति नारायण जी का जन्म 6 अगस्त 1987 को हुआ था। संगीत उनके लिए सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि बचपन से ही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। उनके पिता मशहूर गायक उदित नारायण जी, और आदिति नारायण जी बचपन में अक्सर अपने पिताजी के साथ रिकॉर्डिंग पर जाया करते थे, और शायद वही वजह थी कि शुरू से उनकी दोस्ती बहुत छोटी उम्र में ही हो गई। सोचिए दोस्तों, जब ज़्यादातर बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में आदिति स्टूडियो में जाकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते थे। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म अकेले हम अकेले तुम के लिए अपने पिता उदित नारायण जी के साथ गाना गाया। बाद में छोटा बच्चा जान के जैसे गाने ने उन्हें घर घर पहचान दिला दी। और अब सुनिएगा उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक बेहद प्यारा किस्सा। दोस्तों, आदिति नारायण जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता के साथ रिकॉर्डिंग पर जाना उनके बचपन की यादों का हिस्सा था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि बड़े होने के बाद भी उनके दिल में अपने पापा के साथ गाने की वही मासूम इच्छा बनी रही। एक इंटरव्यू में आदिति जी ने कहा था कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपना है कि उनके पिता आदिति नारायण जी उनके लिए एक बार गाएं। पिता और बेटे ने बचपन में साथ गाया ज़रूर था, लेकिन आदिति के लिए अपने पिता से अपने लिए गाना सुनना आज भी एक खास एहसास है। और कितनी खूबसूरत बात है ना एवरीवन, कि जिस बच्चे ने कभी अपने पिता के साथ स्टूडियो में खड़े होकर गाना सीखा, वही बच्चा बड़ा होकर अपने पिताजी की आवाज़ को अपने लिए सुनने का सपना देखते हैं। यही तो रिश्तों की खूबसूरती होती है। कामयाबी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, कुछ रिश्तों के सामने इंसान फिर वही छोटा सा बच्चा बन जाता है। और आदिति नारायण जी ने आगे चलकर फिल्मों में अभिनय किया, गायकी और टेलीविज़न होस्ट के तौर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने सारेगामा पा को होस्ट करना शुरू किया, और बाद में कई लोकप्रिय संगीत कार्यक्रमों का हिस्सा भी बने। तो आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से बस यही दुआएं हैं कि आदिति आपकी ज़िंदगी में सुर हमेशा बने रहें, आपकी मुस्कान हमेशा यूं ही कायम रहे, और ज़िंदगी का हर नया साल आपके लिए एक नई खूबसूरत धुन लेकर आए। हैप्पी बर्थडे आदिति नारायण जी। और सुनते हैं एक प्यारा सा गाना उन्हीं की आवाज़ में, बैक टू बैक आपकी खूबसूरत मैसेज आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। आप कहीं मत जाइए, बस यूं ही बने रहिएगा एवरीवन, खुशी के साथ मुस्कुराइए आप। और मुस्कुराते हुए आप सब बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर कंजूसी क्यों करते हो मुस्कुराने में? हाँ, कोई पैसा थोड़ी ना खर्च हो रहा है, फ्री की स्माइल है तो स्माइल किया करो यार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी बबलू सैनी जी ने मुंबई महाराष्ट्र से, तो अभी आपने ये गाना एंजॉय किया और यहाँ पर बाकी बहुत सारे मैसेज आए हैं, उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दुल्हन अंसारी जी हैं, गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और ये गाना सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी शोले और शबनम से, सुनवाएंगे सर, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ललिता कश्यप जी का और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहती हैं कि खुशियों की महक से महके आपका हर जहां, खुशियों की महक से महके आपका हर जहान, होठों पर रहे हमेशा प्यारी सी मुस्कान, हर सपना आपका हकीकत बन जाए, खुशी मैम आपका हर दिन खुशियों से भर जाए। अरे वाह, सो स्वीट, थैंक यू सो मच मैम। कहती हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, हवाएं भी चल रही हैं। कहती हैं कि ऐसा मौसम हो रहा है कि बाहर घूमने जा सकते हैं हम लोग। तो एक मैम गाना सुनवाना मेरे को, हरियाणवी गाना सुनना चाहती हैं, हीरो होंडा। ओ हो क्या बात है जी। एंड ये कहती हैं कि मैम मेरी छोटी बेटी को ना गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वे कहीं भी जाती है तो मुझसे कहती है मामा प्लीज़ मुझे पानी पूरी खिलाओ ना। ओके हाँ, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं गोलगप्पे खाने की, बट ऐसा कह सकते हैं, लेकिन लड़के भी कम नहीं होते हैं, वो भी बहुत पानी पूरी खाते हैं। क्योंकि मैं एक बार एक फंक्शन में गई थी तो वहाँ पर ना कंपटीशन रखा था कि जो ज़्यादा गोलगप्पे खाएगा उसको प्राइज मिलेगा बेस्ट। तो जो हमारी साइड से थे एंड एक सर एंड सामने एक मैम थी, तो दोनों में कंपटीशन रखा गया कि फीमेल और मेल दोनों को हमने चुना है, चूज़ किया उन्होंने कि सबसे ज़्यादा जो गोलगप्पे खाएगा चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनको मिलेगा एक ब्यूटीफुल सरप्राइज़, मतलब ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे ज़्यादा जो पानी पूरी खाए वो लड़की ने नहीं खाए, वो लड़के ने खाए, हमारी साइड वाले जीत गए थे। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं हैरान थी कि यार सब बोलते हैं कि लड़कियां पानी पूरी ज़्यादा खाती हैं, बट जब कंपटीशन की बारी आई और वहाँ पर सर जीत गए और उन्हें मिला बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ें उनको मिली थी वहाँ पर। और तब मुझे लगा कि हाँ, लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है कि वो ही पानी पूरी खाती हैं, बट ऐसा नहीं है, लड़के भी बहुत पानी पूरी खाते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज यहाँ पर आया है और ये कोमल शर्मा जी का मैसेज आया है, कहती हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग कोमल जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा आप कैसी हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सत्येंद्र कुमार जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है हर हर महादेव अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, कांट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं, थैंक यू सर। उसके अलावा एक और मैसेज मिला है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, क्या हाल है आपके, बहुत अच्छे हैं हम। ये मैसेज हमें मिला है नईमूल अकरम जी का सिरसवा दोराहा से, साथ में माई नूर है एंड शिकावत भाई है और खुशी जी जो ये साथ में है ना मेरे दोस्त, ये गोलगप्पे बहुत ज्यादा खाते हैं। ओके इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है उमेश कुमार जी का लोधीपुर मुरादाबाद से, ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज के सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है एंड आपकी बातें भी बहुत प्यारी होती हैं, थैंक यू। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आसिफ जी फ्रॉम इटली से और ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, एवरी डे हमें मैसेज करते हैं, थैंक यू। पहुंचाते हैं हमें हरिओम महेश्वरी जी मुरादाबाद से, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है गौरव जी का और गौरव टेलर जी कहते हैं नवीन नगर मुरादाबाद से कि पानी पूरी तो खुशी जी मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मगर मैं सूजी वाले पानी पूरी और अच्छा सूजी वाले पानी पूरी खाते हैं आप,
दही वाले ओके दही डालकर ये खाते हैं वो ठीक है वेरी गुड। मुझे भी सूजी वाले पानी पूरी पसंद है, आटे वाले तो मैं बहुत कम खाती हूँ ना के बराबर, बट सूजी वाले एक दो चलते हैं खा लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है नहीं खाती।

हाँ देखिए, आपने बोला कि हमारे स्वास्थ्य के लिए पानी पूरी ठीक नहीं है, पर मुझे लगता है कि देखिए कभी कभी अगर कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो हार्मफुल नहीं है। अगर कोई भी चीज़ हम रेगुलर खा रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो वो चीज़ें हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, बट अगर कभी कभी आप खा रहे हैं तो खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी पानी पूरी का नाम सुनते ही ना आज आपके जहन में आ रहा है कि चलो आज पानी पूरी ही खा के आएंगे, है ना। बहुत सारे श्रोता तो सोच रहे हैं कि चलो घर में ही पानी पूरी बना लेते हैं, और कुछ सोच रहे हैं कि चलो आज शाम को बाहर चलते हैं अपने दोस्तों के साथ, खाते हैं गोलगप्पे। तो खाइए, खाओ पियो, ऐश करो मित्रा। और चलो एक गाना सुनो। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है ललिता कश्यप जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से। हीरो होंडा पर घूमना चाहती हैं मैडम जी, तो चलिए सुनवा देते हैं प्यारा गाना।

तो दोस्तों अभी फिलहाल मुझे भी जाना पड़ेगा, जाने का वक्त हो गया है। जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, तभी तो मुलाकात करूंगी ना मैं आपसे 3 से 5। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपको 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए और हर दिन को थोड़ा सा और शाइन कीजिए। मैं मिलूंगी फिर एक नई बातों के साथ, नई मुस्कान के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइन एवरीवन। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। बाय बाय, टेक केयर। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: स्वागत है साथियों आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने दोस्त RJ खुशी। स्मार्ट के सौजन्य से चलाई जा रही श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के आज इस प्रोग्राम में हम कुछ बहुत ही ज्यादा खास लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर, हर परिवार, हर बच्चे और हर आने वाली पीढ़ी से जुड़ा है। जी हाँ, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। लेकिन आज की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे, एक सच्ची कहानी।
1: नमस्कार RJ खुशी, ये कहानी मैं बहुत करीब से जानता हूँ, हमारे ही गांव की है। एक समय था जब यूपी के एक गांव में एक छोटी सी बच्ची थी, नाम था कमला। बहुत हस्ती खेलती चंचल बच्ची, लेकिन उस समय गांव में टीकाकरण को लेकर इतनी जानकारी नहीं थी। लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों को सुई क्यों लगवाएं, बुखार आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। कमला के माता पिता भी यही सोचते रहे और धीरे धीरे समय निकल गया। एक दिन गांव में खसरे मेलेसिस का प्रकोप फैल गया और वही बीमारी कमला को भी लग गई। पहले बुखार, फिर दाने और फिर हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमला बच तो गई, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसे हमेशा सांस की दिक्कत रहती थी, पढ़ाई भी छूट गई, और आज भी जब वो बड़ी हो चुकी है तो कहती है, काश मेरे माँ बाप ने मुझे समय पर टीका लगवा दिया होता।
0: कमला जी को अपनी जिंदगी मुश्किलों से काटते हुए देखकर दिल भारी हो जाता है। सिहतिया जी, क्या सच में सिर्फ एक टीका ना लगवाने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है, और यही वजह है कि हर साल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक हफ्ता होता है, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इस दौरान पूरी दुनिया एक साथ मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार किसी भी बीमारी से सिर्फ इसलिए ना पीड़ित हो क्योंकि उसे समय पर टीका नहीं मिला।
0: तो ये एक वैश्विक अभियान है?
1: हाँ बिल्कुल, इसे विश्व संस्था संगठन WHO चलाता है, और इसका मकसद है लोगों को समझाना कि टीके सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए इस साल का थीम है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क, यानी हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते हैं और सुरक्षा देते हैं।
0: बहुत ही सुंदर संदेश है, लेकिन सिहतिया जी, हमारे भारत में इसका क्या महत्व है, खासकर गांव में?
1: भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। इसके तहत हर साल लगभग 2.7 करोड़ नवजात बच्चों को मुफ्त में टीके दिए जाते हैं। आज की तारीख में भारत में 93.5% तक बच्चों को पूरा टीकाकरण मिल रहा है, जो पहले 76% के आसपास था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: ये तो सच में बहुत बड़ी प्रगति की बात है। सिहतिया जी, आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीकाकरण से छूट जाते हैं?
1: देखिए RJ खुशी, सच्चाई यह है कि हाँ, आज भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं, और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे बच्चों को हम जीरो डोज बच्चे कहते हैं, यानी वे बच्चे जिन्हें अभी तक एक भी टीका नहीं लगा है। ये स्थिति ज्यादातर उन इलाकों में देखने को मिलती है जहाँ जागरूकता कम है या पहुँच में दिक्कत है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से।
0: मतलब अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है।
1: बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इस चुनौती को समझते हुए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है, मिशन इंद्रधनुष।
0: अरे हाँ, मिशन इंद्रधनुष का नाम तो मैंने भी कई बार सुना है, लेकिन ये करता क्या है?
1: देखिए, मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा अभियान है जिसका मकसद साफ है, जो बच्चे अब तक टीकाकरण से छूट गए हैं पूरा टीकाकरण देना। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक अभियान है जो गांव-गांव जाकर काम करता है। इसने हजारों गांव तक अपनी पहुंच बनाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 16,000 से ज्यादा गांव में और 48,000 से ज्यादा आकांक्षी जिलों में इसका काम किया है।
0: वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा काम है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, इतने बड़े देश में इतने सारे गाँव और लोग, ये सब कैसे संभाले जाते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल आज के समय में तकनीक ने इस काम को काफी आसान बना दिया है। जैसे हमारे पास ईविन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि टीके सही तापमान पर सुरक्षित रहें और जहां जरूरत हो वहां समय तक पहुंच जाए।
0: मतलब टीके खराब ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है?
1: बिल्कुल सही समझे आप। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है UWIN। ये एक डिजिटल सिस्टम है जो हर बच्चे और हर गर्भवती महिला का रिकॉर्ड रखता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्चा या महिला टीकाकरण से छूट ना जाए।
0: यानी अब पूरा सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना आसान हो रहा है।
1: जी हाँ बिल्कुल, अब हम डेटा के आधार पे काम करते हैं जिससे निगरानी भी आसान हो जाती है और छूटे हुए लोगों को पहचानना भी।
0: बहुत बढ़िया, लेकिन सेहतिया जी एक बात अभी भी समझ नहीं आई आती, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग टीके से डरते क्यों हैं?
1: देखिए आरजे खुशी जी, की ही सबसे बड़ी वजह है अधूरी जानकारी और अफवाहें। कई बार लोग बिना सही जानकारी के ही बातें फैलाने लगते हैं और कह देते हैं कि टीका लगवाने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो कोई कहता है इससे बुखार आता है।
0: हाँ, ये बातें तो मैंने भी कई बार सुनी है,
1: लेकिन सच्चाई कुछ और है। हल्का बुखार या सूजन आना बिल्कुल सामान्य बात है, इसका मतलब है कि शरीर उस बीमारी के खिलाफ लड़ना सीख रहा है और यह एक अच्छी प्रक्रिया है, ना कि डरने वाली बात।
0: तो असली खतरा क्या है?
1: असली खतरा है टीका ना लगवाना, क्योंकि अगर बच्चा टीकाकरण से वंचित रह गया तो वह गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे खसरा, पोलियो, टिटनेस या निमोनिया। ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो सेहतिया जी, क्या आप हमें पूरा टीकाकरण थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं?
1: जरूर, यह जानना हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसे 3 महत्वपूर्ण टीके लगाए जाते हैं, BCG जो टीबी से बचाव करता है, OPV जो पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस बी का टीका।
0: ठीक है, यानी शुरुआत जन्म से ही हो जाती है?
1: बिल्कुल, इसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में बच्चे को कई टीके दिए जाते हैं। इनमें ओपीवी की खुराक, पेंटावेलेट वैक्सीन जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और HIV से बचाव करता है, साथ ही रोटावायरस और कुछ जगहों पर PCV भी शामिल होते हैं।
0: ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है।
1: जी हाँ, और यह यहीं खत्म नहीं होती। 9 महीने की उम्र में बच्चे को खसरा, रूबेला का टीका दिया जाता है। इसके बाद 16 से 24 महीने के बीच बूस्टर डोज दी जाती है, ताकि पहले लगे टीकों का असर और मजबूत हो सके।
0: और बड़े होने पर?
1: जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तब TPT का बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद 10 साल और 16 साल की उम्र में TD यानी टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके लगाए जाते हैं।
0: और गर्भवती महिलाओं के लिए?
1: गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीकाकरण बहुत जरूरी है। उन्हें TD का टीका दिया जाता है, जिससे माँ और होने वाले बच्चे दोनों को सुरक्षा मिलती है। यह समय पर लेना बहुत जरूरी होता है।
0: सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सच में अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए, कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं।
1: बिल्कुल आरजे खुशी, और यही हमारा लक्ष्य भी है, हर बच्चे तक, हर परिवार तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि कोई भी जीव सिर्फ जानकारी की कमी के कारण खतरे में ना पड़े।
0: सेहतिया जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है टीकाकरण सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या हम इसे एक तरह का पूरा जीवन चक्र मान सकते हैं?
1: बिल्कुल आरजे खुशी, आपने बिल्कुल सही समझा। टीकाकरण को हम लाइफ साइकिल इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान के जन्म से लेकर किशोर अवस्था और आगे तक अलग अलग उम्र में शरीर को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए टीके दिए जाते हैं। यानी यह कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि समय समय पर जरूरी सुरक्षा देने की पूरी प्रक्रिया है।
0: सेहतिया जी, अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, ये टीके आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? लोग क्यों कहते हैं टीकाकरण जिंदगी बचाता है?
1: देखिए आरजे खुशी, अगर हम पिछले 50 सालों का इतिहास देखें तो टीकों ने दुनिया भर में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई है। जरा सोचिए, हर मिनट में लगभग 6 लोगों की जान सिर्फ टीकों की वजह से बच रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है।
0: मतलब हर मिनट 6 जिंदगी बच रही है, ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: और सिर्फ इतना ही नहीं, टीकाकरण ने बच्चों की मृत्यु दर को लगभग 40% तक कम कर दिया है। पहले जहां छोटी छोटी बीमारियों से बच्चों की जान चली जाती थी, आज वही बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। यही वजह है कि टीकाकरण को दुनिया का सबसे सफल और किफायती स्वास्थ्य उपायों में से गिना जाता है।
0: सच में ये सुनकर एहसास होता है कि टीकाकरण सिर्फ एक स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि जीवन बचाने का सबसे बड़ा साधन है।
1: बिल्कुल आरजे खुशी, और यही कारण है कि यह सिर्फ सरकार या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं तो हम सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित बना रहे होते हैं।
0: तो सेहतिया जी, जरा ये भी बताइए कि गांव में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कैसे मनाया जाता है, वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं?
1: देखिए, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान गांव में काफी सक्रियता देखने को मिलती है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिलती हैं, उन्हें टीकाकरण के बारे में समझाती हैं, बच्चों के टीकाकरण कार्ड चेक करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए।
0: मतलब ये पूरी प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित तरीके से चलती है।
1: जी बिल्कुल। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, PHC और आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जाते हैं, जहां बच्चे और गर्भवती महिलाएं आकर अपने टीके लगवाती हैं। गांव में माइक से घोषणाएं की जाती हैं, लोगों को तारीख और स्थान की जानकारी दी जाती है, पूरे समुदाय को इसमें शामिल किया जाता है ताकि कोई भी परिवार पीछे ना रह जाए।
0: सिहतिया जी, आपने शुरुआत में कमला की कहानी सुनाई थी जिसने टीका ना मिलने की वजह से बहुत दर्द झेले, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां टीकाकरण ने किसी का जीवन पूरी तरह बदल दिया है?
1: हाँ आरजे खुशी, और ये कहानी भी हमारे ही गांव की है। कमला वही लड़की जिसने बचपन में टीका ना मिलने के कारण इतनी मुश्किलें झेली थी, जब बड़ी हुई तो उसने एक ठान ली, उसने निश्चय किया कि उसकी बेटी के साथ कभी भी ऐसा नहीं हो।
0: फिर क्या हुआ सिहतिया जी?
1: उसकी बेटी का नाम है सुजाता कुमारी। कमला ने उसके जन्म के दिन से ही हर टीके का पूरा ध्यान रखा, आशा दीदी के साथ खुद जाती थी, हर एक डोज समय पर लगवाती थी, एक भी टीका छूटने नहीं दिया।
0: और आज सुजाता कैसी है?
1: आज सुजाता एकदम स्वस्थ है, वह स्कूल जाती है, खेलती है, दौड़ती है और एक खुशहाल बचपन जी रही है। कमला अक्सर कहती है कि मेरी बेटी को वह दर्द कभी नहीं झेलना पड़ेगा जो मैंने झेला था।
0: वाह, यही तो है असली बदलाव, यही तो है जीत।
1: और यही इस साल का संदेश भी है, हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते हैं, टीकाकरण सिर्फ आज की नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा है।
0: तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा और महसूस भी किया है कि टीकाकरण कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक सुई नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो आपके बच्चों को बीमारियों से बचाता है और उसका भविष्य सुरक्षित बनाता है।
1: और याद रखिए, टीका लगवाना सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। जब आप अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं तो पूरे समाज को सुरक्षित बनाने में योगदान देते हैं।
0: तो दोस्तों, इस वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं, अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
1: स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, टीकाकरण से ही संभव है।
0: तो इसी के साथ आज हम शो को समाप्त करते हैं और जाने से पहले लेते हैं सब मिलकर अपनी सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही
0: तो लाभ गई। नमस्कार श्रोताओं, अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति, तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।
2: आज हम बात कर रहे हैं अपने FM रेडियो पर, FM रेडियो के माध्यम से वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट है ये वीक और क्यों मनाया जाता है। 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हम इसको मनाते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर से हम CMO ऑफिस में मौजूद हैं।
3: पर्ट्यूसरी टिटनेस, तीनों ही बीमारियां काफी खतरनाक होती हैं, डिप्थीरिया भी, पर्ट्यूसरी टिटनेस। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की डेट में टिटनेस के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि इसका इम्यूनाइजेशन टिटनेस, क्योंकि फीमेल में पहले से ही इसको लगाया जाता है, तो पहले बहुत केसेस मिला करते थे, डिप्थीरिया के भी बहुत मिलते थे, पर्ट्यूसिस के। लेकिन डिप्थीरिया, अब जो हम किसी भी बच्चे को डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस ना हो, इस वीक में हम सभी बच्चों को कवर अप करेंगे। लगभग मुरादाबाद में हमारा टारगेट 65,000 से 70,000 बच्चों को लगाने का।
2: ओके सर, मतलब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं क्या?
3: हमारे 252 उपकेंद्र मुरादाबाद में, उनमें सभी में ही हमारी ANM पोस्टेड है और वहां पर हमारा टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 26 अर्बन PHCs मुरादाबाद में है, उन पर प्रतिदिन टीकाकरण होता है और डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल में प्रतिदिन टीकाकरण हमारा यहाँ होता है। सब सेंटर के अलावा जो स्पेस बच जाते हैं उसमें हम एक प्लान बनाते हैं, एक माइक्रो प्लान के तहत करते हैं, तो फिर हम उनको वेडनेसडे सैटरडे हमारे जो फिक्स डे होते हैं अगर कोई एरिया छूट जाता है तो हम दूसरे डेज में भी उसको कवर अप करते हैं। तो हम बहुत सारी, अगर आप लोगों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बहुत ही कॉस्टली वैक्सीन्स होती हैं, ओपीबी, हेपेटाइटिस बी, है ना, दूसरा हमारा बीसीजी हो गया, जो मेनिनजाइटिस कॉज करती थी, निमोनिया कॉज करती थी, तो उसके लिए भी हमारे पास आज की डेट में वैक्सीन्स अवेलेबल है, हिप हमारे पास आती है। दूसरा, पहले बच्चों को बहुत डायरिया हुआ करता था, अब डायरिया के केसेस कम होने लगे हैं। अगर आप पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे, आईएमए के डॉक्टर से बात करेंगे, तो केसेस कम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारे उसको प्रिवेंट करने के लिए रोटा वायरस की वैक्सीन उपलब्ध है, और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो अब केसेस हमारे पास बहुत कम आते हैं डायरिया के देखने के भी। तो सभी लोगों को अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
2: एब्सोल्युटली सर। अच्छा सर, कई लोगों में इस चीज को लेकर, टीकाकरण को लेकर स्पेशली डर होता है, कि लोगों को बड़ा भ्रम होता है, कुछ लोग टीकाकरण अवॉइड करते हैं, बच्चों को भी नहीं लगवाते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज कन्वे करोगे? आई डोंट नो कि लोगों में एक डर और एक भ्रांति फैली हुई है, पता नहीं।
3: देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है,
2: हाँ जी,
3: आपने पहले पोलियो,
2: बिल्कुल,
3: एक बीमारी का नाम सुना होगा, अक्सर आप लोगों के देखने को मिल जाते होंगे रोड पे, सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे, लेकिन क्या अब आपको मिलता है?
2: नहीं सर,
3: नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसको पोलियो का वैक्सीन दिया गया
2: है ना,
3: और आज भी हम इंजेक्टेबल वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन के रूप में देते हैं। तो हमारे यहाँ से, देश से ये पोलियो खत्म हो चुका है। जो बच्चे खेल नहीं सकते थे, कूद नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, और उनको डिफॉर्मिटी हो जाती थी, अपने आप को एसएस महसूस करते थे, तो वैक्सीन का जब सभी लोगों ने अडॉप्ट किया तो बीमारी यहाँ से चली गई। दूसरा, स्मॉल पॉक्स आपने, आप इस समय नहीं देखा होगा, लेकिन आपने कभी पुराने लोगों को देखा जरूर होगा, चेहरे पे दान चकत्ते से पड़े हुए होंगे,
2: बिल्कुल,
3: तो फेस लगता है वो पुराने लोग हैं कि जिनको ये स्मॉल पॉक्स हुआ
2: जी,
3: लेकिन
2: जी।
3: जब वैक्सीन का कवरेज हुआ, सबने वैक्सीन अडॉप्ट की, बीमारी चली गई। तो ऐसे ही हमारे देश में हमें मीजल्स एंड रूबेला का टारगेट है 2030 तक हमें इसे खत्म करना
2: है।
3: मीजल्स जिन्होंने अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे, तो हम मीजल्स के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, रूबेला के केसेस देखने को कम मिलते हैं। इसी प्रकार से जो वैक्सीन बीसीजी होती है वो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करती है। तो ये चीजें जो हैं, अगर हम सारी 12-13 वैक्सीन जो गवर्नमेंट इसमें उपलब्ध करा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप इनकी सारी कॉस्ट अगर लगाएंगे तो लगभग 40,000-45,000 रुपए की टोटल वैक्सीन का शेड्यूल बनता है बच्चे का, और सरकार इसको बिल्कुल फ्री में दे रही है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस इतना हो सकता है, अगर बच्चे को लगा तो हल्का फुल्का बुखार आएगा, तो उसके लिए पैरासीटामोल की टैबलेट हमारी एनएम जो होती है स्वास्थ्य कर्मी, वो उनको बताती है और उनकी काउंसलिंग प्रॉपर करती है। तो एक पूरा टीकाकरण कार्ड होता है, उसको बताया जाता है कि कब आपको लगना टीका है, किस समय आपको आना है, इसके मेरिट्स क्या है, इस वैक्सीन के डीमेरिट्स, किन बच्चों में नहीं लगनी चाहिए, है ना। अगर कोई बहुत लंबे समय से लॉन्ग स्ट्रॉयड ट्रीटमेंट पर चल रहा हो
2: जी,
3: उसमें कुछ वैक्सीन अवॉइडेबल है, या फिर कोई एलर्जिक हो उस चीज से, या फिर उसको कभी पहले किसी वैक्सीन से रिएक्शन हुई हो, तो ये चीज, अदरवाइज इसका कोई भी एडवर्स रिएक्शन है नहीं, और बहुत ज्यादा इसके लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बहुत इजी वैक्सीन होती हैं, एक्सेप्टेबल हैं, और सभी जगह हमारी पूरे जनपद मुरादाबाद के पूरे देश में सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये, और इम्यूनाइजेशन सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और इम्यूनाइजेशन से ही ये जो बीमारियां प्रिवेंटेबल डिजीज है इसको खत्म कर सकते हैं।
2: आई होप श्रोताओं आपको भी ये मैसेज बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और हमारा भी आपसे यही संदेश है कि आप ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाएं, घबराएं नहीं, जैसे कि सर ने बताया डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाएगा, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जरूर टीकाकरण करवाएंगे। सर, जाते जाते तमाम सुनने वालों को क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे?
3: बस मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों के, पड़ोसियों के बच्चों के, रिश्तेदारों के बच्चों को सब में ही आप लोग अपना अवेयर करें, उन्हें बताएं, समझाएं टीकाकरण की महत्ता क्या है। अगर हम नहीं लगवाते हैं तो हमारे बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं, उनसे बीमारियां ना हो। अगर किसी को भी बीमारी होती है तो उसको इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली हर प्रकार से हर्ट्स होता है, उससे बचने के लिए वैक्सीन को अडॉप्ट करें और उन बीमारियों से बचें।
2: बहुत
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ का प्रोग्राम और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है श्रोताओं। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्ना मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी सी गलती भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी मदद करेंगी टीकन भाभी, वो हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए और साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे को जन्म के बाद शहद, घुट्टी या फिर गाय बकरी का दूध पिलाया जाता है, कुछ लोग तो पानी भी दे देते हैं। भाभी, असल में सही है क्या ये?
1: सच तो ये है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध ही देना चाहिए। इसे कोलोस्टोम कहते हैं, यानी बच्चे की पहली दवा है। इसमें इतनी ताकत होती है कि बच्चा बीमारियों से बचा रहता है और उसका शरीर मजबूत होता है। हमारे गांव की गीता ने अभी कुछ ही महीने पहले बेटे को जन्म दिया। घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले शहद चटा दो, घुट्टी दे दो, लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर साहब की सलाह मानी। उसने बच्चे को तुरंत अपना पहला गाढ़ा दूध पिलाया। आज उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ना उसे बार बार सर्दी जुकाम होता है, ना ही पेट की कोई दिक्कत। याद रखिए कि ना शहद, ना घुटी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी, बच्चे की असली ताकत तो उसकी माँ के दूध में होती है।
0: भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है, ऐसे में माँ को होश आने में समय लग सकता है, उस वक्त नवजात को डब्बे बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है क्या?
1: बिल्कुल नहीं। अगर माँ को होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं तो उस दौरान माँ के साथ आए हुए किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को चाहिए कि शिशु को माँ की छाती से लगाकर जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करवाए। शिशु को तो ना डिब्बे बंद दूध देना चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी और का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित दूध सिर्फ उसकी माँ का ही होता है। और एक बात खास याद रखे, बच्चे को कभी भी बोतल से दूध ना दे। बोतल से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना।
0: भाभी, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर ही दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है?
1: देखिए, बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कोलोस्टम मिलता है, इसे बच्चे का पहला टीकाकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। दूसरा फायदा कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटा रहता है तो उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती है, इससे वो आराम और सुरक्षित महसूस करता है। तीसरा, माँ को भी इसका फायदा होता है, प्रसव के बाद उसका रक्तचाप कम हो जाता है और सेहत जल्दी ही संभल जाती है। साथ ही साबित हुआ है कि अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए तो नवजात शिशु की कुछ मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है।
0: भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं?
1: इसमें वो सब कुछ है जिसके नवजात को शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे की शरीर को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए तो उसमें प्रोटीन है, दिमाग को तेज और शरीर को गर्म रखने के लिए फैट है, ताकत देने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियां मजबूत बनाने और खून बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स है। माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है, मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा तो उसे बाहर से दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए खाना भी है और दवा भी है।
0: भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: बच्चा जब भी चाहे दिन में या रात, माँ को बार बार दूध पिलाना चाहिए। बच्चा रोकर या इशारा करके बता दे कि उसे भूख लगी है, ऐसे समय पर दूध रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा कम वजन का है, यानी 2.5 किलो से कम, तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को हर हर दो दो घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं पी पा रहा है तो माँ अपना दूध निकाल कर कप या छोटे साफ चम्मच से उसे पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ था। शुरू में सबको चिंता थी कि बच्चा कमजोर रह गया है, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी। उसने बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया।
0: भाभी, कैसे समझे कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर रहा है?
1: देखिए, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझे कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जागने पर खेल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा है तो ये भी अच्छी निशानी है। और कुछ और सबसे पक्की बात ये है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता है।
0: भाभी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता, ऐसे में माँ को अपना दूध निकालकर बच्चे को पिलाना पड़ता है, लेकिन ये काम कैसे किया जाएगा? कई बार इसे लेकर माँ बहुत घबराती है।
1: देखिए, दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठना चाहिए ताकि थकान ना हो। बच्चे को भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ना चाहिए। बच्चे की पोजीशन बहुत जरूरी है, उसका पूरा शरीर और चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरह से दूध पी रहा हो तो उसे गटकने की हकी सी आवाज भी सुनाई देती है। माँ और बच्चे दोनों आराम में हो तभी स्तनपान सही तरह से हो पाता है।
0: भाभी, कई बार मैं सुना है कि नई माओं को दूध पिलाते समय स्तन में सूजन, दर्द या सख्त जैसी परेशानियाँ हो जाती है, ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की परेशानी आम है। अगर माँ को ऐसा लगे तो सबसे पहले स्तन की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिए से सेकने से भी आराम मिलता है।
0: अच्छा, मतलब मालिश और गर्म से काम आता है, लेकिन शिशु को दूध पिलाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए माँ को आरामदायक अवस्था में बैठना चाहिए, शिशु को सही ढंग से स्तन से जोड़ना चाहिए। अगर स्तन ज्यादा भरा हुआ हो तो थोड़ा सा दूध पहले निकाल ले, इससे स्तन नरम हो जाएगा और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ पाएगा।
0: दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है?
1: माँ के लिए भी बड़े फायदे हैं। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है तो माँ का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है, इससे पेसेटा भी जल्द बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने का खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाए और वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी जरूरी है।
0: अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए?
1: हर दिन कम से 5 तरह की चीजें जरूर खानी चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और अनाज, तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेंगे।
0: दोस्तों, आज की बातों से साफ है, माँ का दूध न सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ढेर सारे फायदे लेकर आता है। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और माँ और बच्चे की सेहत पर फिर हम अहम बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
2: हेलो अनन, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
1: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
2: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
1: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो लेकिन जैसे माइक ऑन बटन ऑन आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए, करेक्ट?
2: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
1: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में सोच बदलो प्रोग्राम में मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका। मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों, जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दोस्तों, आज हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है? घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी?
1: कुमकुम, आप सभी की प्यारी दोस्त
0: जी। तो कुमकुम बताओ जरा, अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना, हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं, उसका रीजन मोबाइल ही है क्या?
1: हाँ जी। राइट, हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है। सास बैठी हैं, ससुर बैठे हैं, या मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिससे लोग देखते हैं कि हाँ, एक साथ होने के बाद भी, एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, सही कहा कुमकुम जी ने, और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल। मोबाइल जब से आया है ना, बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के, बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी, जो अपनेपन का एक एहसास था, वो भी कम हुआ है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल के आने की वजह से। क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है? क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं? इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, आप सुनते हैं जिसे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक परिवार था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे, बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी। दादी ने कहा, अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली, देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है। जी हाँ श्रोताओं, तो ये कहानी नहीं है, दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है। और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर। साथियों, आप क्या सोचते हैं इन बातों से, आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से, आप मुझे ढूंढ सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल आईडी आप फॉलो करें FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। श्रोताओं, आगे और भी बातचीत हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी कि एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद मैं और कुमकुम पुनः आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
0: वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने सुना, सैयारा, बहुत प्यारा गाना है। और इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बता दें प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा सोच बदलो। इस प्रोग्राम में मैं और कुमकुम आपके साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल और रिश्तों की दूरियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और ये आने से चीजें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अच्छी हुई हैं, नो डाउट टेक्नोलॉजी हमारी यूज के लिए बनी है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग। बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तों में गर्माहट थी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कम होती जा रही है। और उसकी वजह क्या मोबाइल है? मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, अगर मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
3: हाँ जी, जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके, आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं, तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद, आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
0: अच्छा, ओके, मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट। देखिए मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफकोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना, सब मोबाइल पे हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीजें डिजिटली प्लांट हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज, हर बंदा मोबाइल से ही सर्वाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी, अगर हम परिवार के साथ, हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, फिर हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने परिवार के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना, वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम। बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें। अगर आप मोबाइल चला रहे तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप देख भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी चीजों पर आप बात कर सकते हो। बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और आजकल मोबाइल के आने से एक चीज तो है यार, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना, मतलब एक ही फैमिली में 10 लोग हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, मम्मी को अगर आवाज लगानी है तो वो अब व्हाट्सएप करके बोलती हैं, बेटा नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा लंच रेडी है, नीचे आ जाओ। एक टाइम था जब हमारी माँ किचन से आवाजें मारा करती थी और हम भागे चले आते थे। मान लीजिए श्रोताओं, अब कुमकुम आप ही मान लो, अगर एक दिन के लिए फोन बंद हो जाए तो आप अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? क्या करना चाहोगी अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा फोन बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैश बैक में चले जाएं, एकदम पुराने जमाने में, तो आप क्या करोगी अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
3: पहले कुछ टाइम के लिए तो सोचूंगी कि ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है,
1: क्योंकि एक तो एक्चुअली ना हमारी हैबिट हो गई है,
3: हैबिट हो गई है। और ऊपर से हमारी छोटी छोटी चीजें, सुबह को उठ के सबसे पहले फोन देखना और बाकी चीजें कॉन्टेक्ट करना, आज किस काम में क्या है, सारी डिटेल्स हम फोन में रखने लगे हैं।
1: करेक्ट। और दूसरों की लाइफ भी ताका झांकी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू,
3: राइट
1: ना, कहीं है ना,
3: तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
1: 100%। अगर एक दिन के लिए फिर भी फोन बंद हो जाए, सो प्लीज टेल अस, आप अपने दिन को कैसे बताओगे, मतलब क्या करना चाहोगे?
3: जैसे कि पुराने दिनों में कहा जाता था कि हाँ, खेत के पास जाना चाहिए, पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
1: बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर तो अब कोई जाना ही नहीं चाहता, सबको दिल्ली, मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती है, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है। सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों, भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूं लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में, ये चीज नोटिस करता हूँ मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में, ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं, तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पे वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फैमिली को, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, उन्हें करने दो। मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाएं और बच्चे जो देखने देखने दो। तो भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा कि इवन कई बार हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना कर दे, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में, और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलती है, प्लीज फॉलो कीजिए। वहां पर आके आप बताइए आपको हमारे स्टेशन्स के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। चलिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लेकर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफकोर्स, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है, तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में, जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल। याद रखिए रील्स कुछ सेकंड की खुशियां देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं।
0: तो क्या क्या बात है। हाँ तो आगे बोलो,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे।
0: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं, थैंक यू सो मच। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐसी लगता है कि रील्स सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है। दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज निकलती है, अभी बिजी हूं बाद में आऊंगा। ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती होगी। मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम, पापा फोन पर, मम्मी रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है ना। कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है। उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें। अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है। और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं, थोड़ी सी देर में बात हुई उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई, अभी पता चला अभी नाराजगी थी अभी ब्लॉक हो गई चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है। ये स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सब चीजें जो है ना मत करो भाई, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार एक समय सीमा बना लो हर चीज की। सबसे जरूरी चीज है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना। क्यों कुमकुम, सही कहा मैंने? हाँ, तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाजत, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये वही शहर है जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी चलें फिर कुमकुम?
1: जी हाँ चलते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ। तो सोच बदलो, क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं आसपास होने चाहिए। याद रखिए कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे। तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए। अभी के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बजाते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए सफर पर।

0: आजा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं। और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं। और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों किया जा रहा है?
3: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान दे। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
2: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
3: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
2: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
3: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है।

0: समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
1: भाभी ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
0: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तिल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तिल कम खाएं, सब्जी दाल हरी सब्जियां हरी पत्तीदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
1: भाभी पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
0: देखिए छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध फल सब्जियां दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी दूध अंडा दाल सब्जियां, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहां बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहां उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
1: भाभी इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
0: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
1: तो भाभी सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
0: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं, ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
1: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
0: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी ना शहद ना दाल ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
1: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
0: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल मैश करके खिचड़ी दलिया सब्जी फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
1: यानी भाभी IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
0: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
1: भाभी इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
0: देखिए बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
1: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
0: बहुत आसान है, बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें, इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
1: भाभी इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
0: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
1: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
0: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर हैं। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
1: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
0: फायदा सीधा है, स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गांव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र किया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
0: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
1: और डिजिटलकरण क्या होता है?
0: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
0: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
1: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
1: दोस्तों, आज के सेहत से लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
1: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
0: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा

0: कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
1: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
2: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
3: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
2: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित, पोषित, कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। जी हाँ, कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस कलाकार के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है गुलशन कुमार मेहता, जो अपने उपनाम गुलशन बावरा से लोकप्रिय थे। ये हिंदी सिनेमा के एक जाने माने गीतकार और अभिनेता थे। 42 वर्षों के अपने करियर में उन्होंने लगभग 240 गीतों की रचना की और एक चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया। गुलशन बावरा जी ने कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन और आरडी बर्मन जैसे प्रख्यात संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। तो चलिए श्रोताओं, बातें तो और भी होंगी, उससे पहले आइए सुनते
6: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। और देखिए, मैं कहीं नहीं आती हूं महिला मंच शो में, मेरे साथ आरजे खुशी भी आती है। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो इस महिला मंच शो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना भी कहना जरूरी होता है। अक्सर हम यही करते हैं ना कि हम दूसरे को खुशियों के लिए हमेशा जब भी वो कुछ काम बोलता है हम हाँ कर देते हैं। लेकिन देखिए, हाँ करना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी ना आपको जब लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वहाँ पे मुझे ना बोलना है, तो वहाँ पे ना बोलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छे आप बनोगे ना, तो उतने अच्छे तरीके से चक्की में पीसे भी जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा भी बनना जरूरी नहीं है। उनके साथ अच्छे रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप जब भी बोलते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके लिए तो भैया देखिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनके साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को दुखी कर बैठते हैं। किसी ने मदद मांगी, हमने हाँ कह दी। किसी ने अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे। मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली। थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया। और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए, काम करना जरूरी है हर किसी के लिए। जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए। क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं, वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है। लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
1: साथियों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की। बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने सम्मान की और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे, क्या खुशी, क्या तू खुश है? एक बार आपका जो भी नाम है आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा। और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए? और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
0: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ, जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करें जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं, तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी और बाहर के नजारे हैं, जो बाहर की देश दुनिया है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी, क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ, एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए,

क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी। शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं हो किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही

0: होता जाता है। आप उसको खुद से भी अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है तो वो आपसे आराम मांगती है, तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम? बातें सुन रही है भैया, लड़के चुप चुप के। अरे बोलो भाई, तुम भी कुछ?
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी, बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है, शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना,
0: मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: और
1: चाहिए।
0: वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता
1: रहता
0: है। सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा महिला मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलोगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने बहुत प्यार से कहा बेटा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम खुद के लिए बुरी बन गई हो। मीरा चौंक गई। माँ ने कहा तुमने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुरा कर कहा माफ कीजिएगा आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस बंद नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इम्पोर्टेंस दी, खुद को भी महत्व देना शुरू किया। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए, लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो मेल्स होती है ना, जैसे रीना ने भी आपको बताया दोस्तों कि वो कभी लड़कियां भी ना बोलती ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आगे क्या हुआ है सब आपको बताऊंगी अभी एक प्यारे से गाने के साथ।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाए, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आजकल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेकर ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेकर तो दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार वालों को आप खुश नहीं रख पाएंगी। और जब आपकी लग रहा है कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। आप जितना अच्छा बन के दिखाएंगे आपसे उतना ही काम कराया जाएगा और आप उतने ही बेवकूफ बनते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए। देखिए हर किसी के साथ काम करिए, लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बच्चों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बच्चों को भी ना कहना सिखाइए, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं हमें कि हर किसी के साथ रहो, हर किसी की बात मानो, जो भी तुम्हें कोई कहे मतलब जो तुमसे बड़ा है उनकी बातों का सम्मान करें, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ना कहना भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपनी सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है, और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो रास्ते में अकेले भी आते हैं। तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो, अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है। तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जो अब आपके साथ अनजान व्यक्ति आता है तो उसे कम बात करें, और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोलें। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते हैं दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ, लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है। वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है रीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है, तो उनसे कोई चीज ना ले और उनके साथ कहीं भी ना जाए, क्योंकि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी होता है। बच्चे बड़े मासूम होते हैं। और बच्चों को ना ये भी बताइए, आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपने घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें बच्चों को याद करवाइए, ताकि बच्चा कभी ऐसे सिचुएशन में अगर फंस जाए, कभी ऐसी कंडीशन, मैं तो कहूँ कि ना आए, लेकिन कभी ऐसा हो तो बच्चों को अगर सारी चीजें याद रहे तो वो अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड अपने सही अपने डायरेक्शन पर वो पहुँच सकता है।
0: और साथ ही साथ बच्चों को ये भी सिखाइए बैड टच और गुड टच।
1: हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत मोस्ट था, क्योंकि चलो हमने बहुत सारे बच्चों के ऊपर बातें की है और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम थोड़ा सा ना फन भी करने वाले हैं, थोड़ी सी मस्ती भी करने वाले हैं, थोड़ा फन एक्टिविटीज हो जाए ना एवरीवन। तो चलो रीना, मैं तुम्हारे साथ एक मजेदार गेम खेलती हूँ, ठीक है? चलो रीना, हमने एक मजेदार गेम खेलते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूंगी जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है,
0: ठीक है?
1: और वो भी प्यार से, ठीक है? तो पहला सवाल मेरा ये है, आप बहुत थकी हुई हो और दोस्त आपसे कहें कि चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: अगर वो मेरे खास होंगे तो हाँ, अदरवाइज ना।
1: चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास पहले से ही बहुत काम है और कोई अपना आपको भी अपना काम दे दे, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: ना।
1: चलो तीसरा सवाल, कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा लेकिन आप सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए चुपचाप हैं, क्या यहाँ हमेशा हाँ सोचेंगी या आपने जवाब ना? ओके, इन्होंने सवाल से पहले ही जवाब दे दिया।
0: तुम क्या कहना चाह रही हो?
1: ठीक है,
0: आगे पूछो।
1: अरे वाह, क्या बात है, रीना तो हर सवाल का राइट आंसर दे दिया है, राइट आंसर दिया है। और ये तो हमारे आज महिला मंच की बन गई है क्वीन, तो उनके लिए जोरदार तालियां। बड़ी खुशी होती है ना जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है।
0: हाँ।
1: ना कैसे कहें ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों? अब सबसे जरूरी बात, अगर ना कहना है तो कैसे कहें, क्योंकि ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को अपमानित करें। आप प्यार से कह सकते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी ये नहीं

0: नमस्कार श्रोताओं, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 3:04 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आज मुरादाबाद का जो मौसम है ना, बड़ा ही अलग है। लाइक कभी बादल हो जाते हैं, तो कभी बारिश हो जाती है, तो कभी अचानक से धूप निकल जाती है और ठंडी हवाएं भी चलती हैं। और इस मौसम में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। कनेक्ट होने के लिए आपको मुझे कॉल करना होगा, तो आप जल्दी से कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और इस प्यारे से दोपहर में आप क्या कर रहे हैं, वो तो आप मुझे तभी पता चलेगा ना जब आप मुझे कॉल करेंगे, है ना। आप मुझे बताएंगे। वैसे मुझे लगता है जहाँ तक कि अभी कुछ श्रोता तो हमारे ऑन द वे कार में हैं, हमें सुन रहे हैं, अपनी सफर पर जा रहे हैं, और कुछ अभी आराम से घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ लंच कर रहे हैं, और कुछ बस ऐसे ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और खुशी का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए, आपका इंतजार कंप्लीट होता है और अभी बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मालती है, मैं गोपीनगर मुरादाबाद से बोल रही हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: बस बाहर अच्छे हैं, आप बताइए।
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा बाहर का मौसम कैसा है?
1: वहाँ पे बहुत सारा बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है।
0: हाँ, कभी बारिश हो जाती है तो कभी रुक भी जाती है ना। जी तो बताइएगा वासु, आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: वो पिक्चर आ रहा है, हम साथ साथ हैं, और गाने के छोटे छोटे भाइयों के पड़े हुए हैं।
0: ओके, तो ये ट्रैक आप अपने ब्रदर के लिए सुनना चाहते हो?
1: नहीं, शादी वादी तो नहीं है, मगर अच्छा लगता है।
0: नहीं, मैंने कहा आप अपने ब्रदर के लिए सुनना चाहते हो या फिर ऐसे ही नॉर्मल अच्छा लगता है ट्रैक, इसलिए? ओके, आप घर में बड़े हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा अच्छा, चलिए सुनवाते हैं फिर ये गाना, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू कॉल करने के लिए वासु।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। बहुत अच्छा गाना है एंड फिल्म भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी बहुत सारी बातें। तो जल्दी से कॉल लगाइएगा आप।

0: गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी. और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ से, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथ में उदित नारायण जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज. तो बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश. हेलो फरमाइश.
1: नमस्ते मैम.
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर. बताइएगा अपना शुभ नाम.
1: रणबीर से.
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: जी
0: बताइएगा.
1: मौसम कैसा है मैम?
0: मौसम तो अच्छा है. कभी बारिश हो रही है तो कभी बादल आ रहे हैं तो कभी धूप निकल जाती है हल्की फुल्की सी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एग्जैक्टली राइट. आप बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: बेटा फिल्म का गाना है मैम.
0: हाँ जी.
1: अरे मेरे पास बेटा फिल्म का गाना है वो वाला, अपने दिल को जला के रोशनी की, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की.
0: ओके ठीक है सर, ये गाना आपको सुनवा देते हैं.
1: नमस्ते मैम.
0: आपको भी नमस्कार. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं रणवीर जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक. और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं ना अपने पसंद का, तो बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगा सकते हैं. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस सतरंगी मौसम का लुत्फ़ उठाते रहिए.

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए दोस्ती तो आप भी हमसे करते हैं और निभाते भी हैं बहुत अच्छे से। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और श्रोताओं, आप भी इस सेशन में मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, इंतजार कर रही हूँ मैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैडम हमारा नाम मोहम्मद कामिल है, हम मुरादाबाद जनपुर से बोल रहे हैं।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप कामिल जी?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, आज मुरादाबाद का मौसम बहुत प्यारा हो गया है।
0: मौसम सुहाना है तो बताइएगा कौन सा गीत आपको सुनना है आज?
1: मुझे मौसम मौसम के ऊपर ही गाना सुनना है, रामचरित मैली का।
0: अच्छा, हुस्न पहाड़ों का।
1: हुस्न है पहाड़ों का जी।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत लत मंगेशकर जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में, प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी राम तेरी गंगा मेली से। और इसके बाद मैं लौट कर आने वाली हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना लता मंगेशकर जी साथ में सुरेश वाडेकर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे रविंद्र जैन जी और लिरिक्स भी रविंद्र जैन जी के थे, फ्रॉम द मूवी राम तेरी गंगा मेली से। और इसमें बड़ी खूबसूरत सी लाइनें थी कि प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है। और दोस्तों देखिए ना, ये 2 घंटे का लाइव हमारा फोन इन कार्यक्रम कैसे 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और अभी वक्त की बात करें तो समय हुआ है 3:27 और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, आपको भी नमस्ते। क्या नाम है आपका?
1: मैम मैं जिला मुरादाबाद जिला मोहम्मदपुर बस स्टोर से आकांक्षा बात कर रही हूँ।
0: बताइएगा आकांक्षा, कैसे हैं आप?
1: मैम मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप और आपके एफएम में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं आकांक्षा, आप बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है ना?
1: जी मैम अच्छे हैं सब।
0: कैसा लगता है आपको हमारा एफएम मुरादाबाद सुनना बताइए हमें?
1: मैम बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो कितने टाइम आपके घर रेडियो ऑन रहता है, कितने बजे से कितने बजे तक ऑन रहता है?
1: मैम क्या कहते हैं 7 बजे से सुनते हैं।
0: अच्छा, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ऑन हो जाता है आपका रेडियो?
1: मैम कभी कभी नहीं सुनते हैं पर डेली सुनते हैं।
0: अच्छा, रेगुलर सुनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा काम की वजह से नहीं सुन पाते हैं, लेकिन एवरी डे आप सुनते हैं है ना?
1: जी मैम फिलहाल तो सुनते ही हैं।
0: फिलहाल सुनते ही हैं, तभी तो आपने कॉल भी किया है। बताइए।
1: पापा तो डेली सुनते हैं फोन पर।
0: हाँ जी, आपके फादर साहब का कॉल भी आता है हमारे पास, अच्छा लगता है सर भी हमें कॉल करते हैं।
1: शायद इस वक्त सुन भी रहे हो
0: और मुस्कुरा भी रहे हैं। सुनते हैं। तो बताएगा आप क्या सुनोगे आज?
1: मैम सलाम देवा का मूवी से सॉन्ग सुनवाती
0: ना। अच्छा ओके, सुनवाते हैं फिर एक आपको बहुत ही प्यारा सा गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए डियर। मोस्ट वेलकम। तो चलिए सुनते हैं आकांक्षा की रिक्वेस्ट पर बहुत ही प्यारा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सनम बेवफा से लता मंगेशकर जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गाना। और मैं बस वापस आती हूँ लौटकर, आपको कहीं नहीं है जाना, मुझे जल्दी से कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और साथियों, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप किसी को कोई भी ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है या फिर आपके फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा पसंद है, उनको डेडिकेट करना चाहते हैं आप उनका फेवरेट गाना, तो कर सकते हैं। बहुत इजी सा आपको काम करना है उसके लिए। आपका जो मोबाइल आपके हाथों में है ना, इसी पर आपको कॉल लगाना है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, नाम बताइएगा।
1: जी गुडवाली बोल रहे हैं।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं शेफनी से बात कर रहा हूँ, जिला रामपुर से।
0: जी बताइएगा, क्या सुनना है आपको आज?
1: जी मैडम गाना सुनना, हरियाणा सॉन्ग।
0: जी ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये शानदार से गाना। और आप कॉल लगाइएगा, तब तक शायद आपका कॉल लग जाए, नेक्स्ट कॉलर आप ही हमारे शो के बन जाए, है ना? कुछ भी हो सकता है, ट्राई कीजिएगा।

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना, हरियाणवी गाना। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है। मैम, क्या उनका नाम है, उनसे जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। मैम प्लीज, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा या फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए ताकि आवाज रिपीट ना हो।
1: हेलो,
0: हाँ जी बताइएगा मैम, योर गुड नेम, क्या नाम है आपको मैम, बताइएगा।
1: नेहा बोल रही हूँ।
0: नेहा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मुरादाबाद से बोल रही हूँ।
0: मुरादाबाद से, बताइए नेहा मैम, क्या करते हैं आप?
1: बस कुछ नहीं करते,
0: कुछ नहीं करते हैं, घर की जिम्मेदारियां
1: घर में रहते हैं, जिम्मेदारियां संभालते हैं घर की।
0: हाँ, तो जिम्मेदारियां संभालना अपनी
1: ये भी बहुत बड़ा काम है।
0: हाँ, यू नो, मुझे लगता है बिग रिस्पांसिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं। तो बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बड़ा बेटा होता तो बहुत खुश होता।
0: ओके, तो वो कहाँ पर है आपके बड़े बेटे?
1: वो इस वक्त पढ़ने गए हैं ट्यूशन।
0: अच्छा, ट्यूशन गए हैं। ओके,
1: तो लास्ट टाइम कम से कम 100 कॉल करी उसने।
0: हाय रब्बा, मेरे को
1: कॉल नहीं लगी, कब उठाएंगी मैम, कॉल कब उठाएंगी, हमारी कॉल कब लगेगी।
0: अरे, क्या नाम है आपकी बड़े बेटी का?
1: नोमान।
0: नोमान।

0: ओके कोई बात नहीं, नुमान को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। और बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप मैम?
1: हमारे छोटे बेटे की फरमाइश पे सुना दीजिए। बाला बाला।
0: ओके तो छोटी वाली आज घर पर है, वो ट्यूशन नहीं गए?
1: हाँ अभी वो छोटे हैं, पढ़ने नहीं जा सकते।
0: ओके वो घर में ही पढ़ाते हैं सबको? हाँ
1: घर में ही सबको पढ़ाते हैं।
0: बहुत नटखट होते हैं छोटे बीबी।
1: हाँ छोटे बच्चे सबको पढ़ा देते हैं।
0: हाँ जी भाई हम कह रहे हैं मैम। तो ठीक है नेहा मैम सुनवाते हैं प्यारा गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए नेहा मैम की छोटी बेटी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना बाला बाला। वो सुनना चाहते हैं तो हम सुनवा देते हैं और वापस आने वाले हैं हम लौट कर। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा एवरीवन। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: तक लिया।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी हाउसफुल 4 से बाला। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम जवाद है
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मजोला मंडी के पास से।
0: जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाना सुनना है याराना फिल्म का।
0: याराना फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: बोले वो बोले।
0: ओके, तो सुनवा देते हैं आप एक कोई प्यारा सा गाना, आप एंजॉय कीजिएगा सर, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बताइएगा।
1: और बात करो थोड़ी सी।
0: हाँ जी बोली सो।
1: हाँ जी
0: कुछ बोलेंगे आप? ठीक है सर, याराना मूवी का गाना सुनवा देते हैं आपको और लौट कर आने वाले हैं हम एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल्स लें एंड अपने श्रोताओं से बातें करें, क्योंकि सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कॉल लगा रहे हैं कि काश मेरा भी कॉल लग जाए। तो एवरीवन आप प्रयास कीजिएगा, कंटिन्यू कीप ट्राइंग एवरीवन। ये प्यारा से गाना सुनो, बस मैं आती हूँ अभी।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी याराना जो 1981 में आई थी, बहुत ही फैंसी फिल्म। और ये गीत आपने सुना अभी किशोर कुमार जी की आवाज में। म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन जी एंड लिरिक्स थे अनजान जी की। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं असम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: जी आज तो अच्छा है, काफी गर्मी चल रहा है आज।
0: अच्छा, असम में गर्मी है?
1: हाँ अभी गर्मी, आज से बहुत गर्मी चल रहा है। कल पर तो बारिश दे रहे थे और कहीं कहीं जगह में तो बाढ़ का भी स्थितियां बनते रहे थे।
0: जी जी जी।
1: कई लोगों का जान भी चले गए, बहुत दर्द भरी कहानी चले गई असम में।
0: जी जी हाँ, वो हमने भी देखा था सोशल मीडिया पर ना, असम में बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह आ गई है। तो आप असम में किधर रहते हैं सर, किस साइड रहते हैं?
1: हम तो सोनितपुर में रहते हैं, सोनितपुर असम में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके साइड की कैसी व्यवस्था है, उधर कैसा है?
1: हमारी साइड में तो थोड़ा ऊंचा जगह है, इसलिए बाढ़ होने का काफी चांस नहीं है।
0: अच्छा, ऊंचाई पर है ना जहाँ पर?
1: हाँ ऊंचा। हाँ जो बाढ़ हुई थी इसे शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में और नाजीरा में, गुलाघाट में और ये चराइडियो में हुआ था।
0: जी जी जी,
1: हमारे इधर नहीं हो रहा है।
0: ओके चलिए, हम तो बस प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि सभी स्वस्थ रहें एंड अच्छे से रहें। जी तो बाकी
1: और यहाँ का मौसम कैसे बताइए थोड़ा सा मुरादाबाद के बारे में।
0: मुरादाबाद का मौसम सो अच्छा है, कभी बादल होते हैं तो कभी बारिश भी हो जाती है। जी तो आप असम में हमारा रेडियो कैसे सुनते हैं, मतलब एप्लीकेशन के माध्यम से? किसने आपको इन्फॉर्मेशन दी?
1: एप्लीकेशन के माध्यम से चलता है।
0: अच्छा अच्छा, तो आपके दोस्तों ने आपको बताया?
1: हाँ हाँ दोस्तों ने बताया था, जैसे कि शिवा लोहर जी बताया है और ये राकेश शिमला से, राकेश ने बताया है।
0: हाँ जी हाँ जी, ओके। आप सब रेडियो मित्र हैं तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, है ना?
1: हाँ, हम तो इस रेडियो के साथ सारे दोस्त उधर से, कश्मीर से भी वो दोस्त है हमारा और ये महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से।
0: ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत दूर दूर दोस्त हैं। कैसा लगता है ये दोस्ती का रिश्ता, मतलब इतनी दूर दूर आपके फ्रेंड्स हैं?
1: बहुत अच्छा लगता है, जो हर रोज बातचीत होते रहते हैं हमारा, जैसे प्रोग्राम के बारे में और ऐसे खाने पीने के बारे में, ऐसे मौसम की जानकारियां लेते रहते उधर से उधर तक।
0: जी असम का चाय पत्ती बहुत फेमस है ना सर, पॉपुलर है?
1: जी जी असम में चाय पत्ती है, मेरा घर पे भी है चाय पत्ती।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो ओरिजिनल आप लुफ्त उठाते हैं। जी,
1: जी
0: तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: घूमने के लिए आ जाना तो हम घर वालों की चाय पिला सकता है।
0: बिल्कुल सर, हम जाएंगे असम घूमने के लिए कामाख्या देवी के मंदिर।
1: असम में जो गुवाहाटी शहर है ना, गुवाहाटी शहर में कामाख्या मंदिर में देख सकते हैं और उधर काजीरंगा भी देख सकते हैं, काजीरंगा पर।
0: बहुत ही खूबसूरत नजारा है उधर का।
1: जी जी, और ब्रह्मपुत्र नदी भी है।
0: हाँ जी,
1: और हमारे असम में तो बहुत फेमस सिंगर भी थे, अभी जान चले गए, जिसका जुबिन गार था और भूपेन हाजरिका जी, तो बहुत फेमस था असम के लिए,
0: पॉपुलर आर्टिस्ट थे ना।
1: जी जी
0: जी, तो आप बताइएगा सर आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: आज मैं जाल फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, हम सफर के लिए, हम सफर मिल गया, ये गाना को सुनना है मैम।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवा देते हैं, आपने हमें कॉल किया।
1: और मैं दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा, मेरे दोस्त राकेश है, शिवा लोहार, पूरन वर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, पुष्करनाथ शर्मा और अविनाश टैली, और भी हमारे इस चलने वाले दोस्तों को डेडिकेट कर रहा हूँ। और असम से सुन रहा हूँ विमल बसुमतारी भी अभी सुन रहे प्रोग्राम को, और कोई भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन लाइन नहीं मिला है उनको।
0: ओके,
1: और भाईकुन मुंडा सुन रहा है
0: जी,
1: रमेश पत्र भी सुन रहा है।
0: ठीक है सर, धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया और हम तो चाहेंगे कि आपके दोस्तों को भी कॉल जल्दी से लग जाए। आप ट्राई कीजिएगा एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
5: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और वक्त हुआ है अब स्टूडियो की घड़ी में 4:01। और अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी जाल से प्यारा सा गाना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं अपना नाम ऋतिक है।
0: ऋतिक, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैम मुरादाबाद खुशहालपुर से।
0: खुशहालपुर से बात कर रहे हैं, तभी इतना खुश हैं आप। हाँ
1: जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरा कॉल उठा लिया और मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था।
0: जी देखिए, आपने कोशिश की और आपकी कोशिश रंग लेकर आई, आपका कॉल भी लग गया है। तो बताइएगा ऋतिक, क्या करते हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, क्या स्टडी कर रहे हैं आप?
1: मैंने इंटर पास कराया
0: अभी। अच्छा, 12th पास किया है, तो आगे क्या डिसाइड किया है आपने?
1: मैम वकील LLB।
0: ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।

0: मुरादाबाद 89.6 पर किशोर जी की आवाज में, किशोरदास जी की आवाज में। और अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी फरमाइश क्या है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका सर?
1: मेरा नाम इकरार अहमद।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: से।
0: जी बताइएगा, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: बढ़िया है।
0: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: बारिश हो रही है हमारी साइड।
0: अच्छा, बारिश हो रही है, तभी आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप?
1: गाना सुना देंगे।
0: जी बताइएगा, कौन सा ट्रैक आपको सुनना है?
1: वो गाना है नाम तेरा रखते रखते हम भूल गए अपना।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं प्यारा से गाना आपको। जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गाना, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। आप भी कॉल लगाइए जल्दी से, अभी अच्छा मौका है। हमारा मोबाइल नंबर है 98। ये भगवान, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता है आपको, इतना ज्यादा यू नो मैं भी एक्साइटमेंट रहता है मेरे अंदर भी आपसे बातचीत करने का। तो मैं अगेन आपको नंबर बता देती हूँ एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीतों का आनंद उठाते रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ।

0: दोस्तों प्रेम दीवाने तो आप भी हैं फिर मुरादाबाद 89.6 के, तभी तो इतने सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं ना। और बहुत सारे श्रोता तो अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि काश मेरा कॉल बस एक बार लग जाए। तो जितने शिद्दत से आप प्रार्थना कर रहे हैं ना उतनी शिद्दत से ही आपका कॉल लग जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, बस ट्राई करना मत बंद कीजिएगा। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार, मैं श्याम सुंदर बोल रहा हूँ बंगलाव से।
0: श्याम सुंदर जी?
1: जी
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: बस बढ़िया हूँ।
0: जी बताइएगा आज क्या सुनना है आपको?
1: मुझे एक भजन सुनना है।
0: जी बताइए।
1: मुझे बचन दो फिल्म का भजन है ये।
0: हाँ जी।
1: राम कहो या श्याम कहो ईश्वर कहो या लाइफ तरीके से है।
0: ओके ठीक है सर, सुनवा देते हैं फिर आपको ये प्यारा सा गीत। जी तो चलिए एवरीवन सुनवा देते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा गीत। एंड उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत, आप भी ट्राई कीजिएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगेन 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, बाहर झमाझम बारिश हो रही है, तो इस बारिश में क्या करना है, गर्मा गर्म चाय बनानी है, उसका लुफ्त उठाइए अपनों के साथ। और वक्त हुआ है 4:21, 421 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ टाइमिंग हो गई है एवरीवन। और हमारे पास नेक्स्ट कॉलर का भी कॉल आया है, वो भी कनेक्ट हो चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? कामिंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा, क्या सुनना चाहते हैं आज आप? ठीक है सर, सुनवा देते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है और आपने रिक्वेस्ट की है, तो एक प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक हंस राज रघुवंशी की आवाज में, क्योंकि उनकी आवाज में शुभ भजन बहुत ही प्यारे लगते हैं। और सुनवा देते हैं आपको भी। बस मैं आती हूँ अभी इस ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पार, आप कहीं मर जाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा और इस मौसम का लुत्फ उठाइए, लेकिन हाँ ज्यादा भीगेगा नहीं।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuning to FM Muradabad, 89.6 FM.
0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों अभी वक्त हुआ है 4:27 एंड हमारे साथ में हमारी कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं ना इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना कि हमारा भी कोई भी ट्रैक प्ले हो जाए जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉल लगाना होगा। और कॉल लगाने के लिए नंबर तो मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है, आप टेंशन ना लें। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
6: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
6: नमस्कार मैम
0: जी, बताइएगा अपना शुभ नाम।
6: मैं तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी बोल रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब।
6: बहुत अच्छे मैम, आप सुनाइए आपके यहाँ कैसे हैं सब लोग।
0: हाँ जी सब बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा आज आपने कॉल किया है लॉन्ग टाइम में, कैसा लग रहा है आपको।
6: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आज काफी दिनों के बाद कॉल किया था मैंने और लग भी गया।
0: जी जी जी, आप इतनी शिद्दत के साथ नंबर लगाते हैं तो आपका कॉल जल्दी लग जाता है।
6: जी
0: जी बताइए,
6: बात करने का तो लग ही जाता हमारा कॉल।
0: हाँ जी सर बताइए, आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
6: आज अगर हम अगर तुम ना होते, ये मूवी का नाम है, इस मूवी का गीत सुनवा दीजिएगा।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं। ठीक है, थैंक यू कॉल करने के लिए।
6: ओके मैम,
0: तो चलिए एवरीवन सुनते हैं विजय जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक, अगर तुम ना होते। बहुत ही प्यारा गाना है, ये टाइटल ट्रैक है। और हम बस अभी आते हैं वापस, आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए।

0: दोस्तों, देखिए सावन भी चल रहा है और बाहर बारिश भी हो रही है और खुशी भी आ चुकी है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों हमारे साथ में जुड़ी है हमारी एक प्यारी सी लिसनर, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका मैम?
1: मेरा नाम सुहाना है।
0: सुहाना, अरे वाह, सुहाना मौसम भी है और सुहाना भी हमसे बात कर रही है। कहाँ से बात कर रही है सुहाना?
1: मुरादाबाद
0: से बात कर रही हूँ। बताइए सुहाना, कैसे हैं आप? ओके, बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहती हैं सुहाना?
1: मुझे गाना सुनाना
0: है तेरा मेरा प्यार अमर फ्रॉम अपनी निकली। ओके, तो सुनवा देते हैं प्यारा गाना आपको। कॉल करने के लिए शुक्रिया। तो चलिए एवरीवन, सुहाना की पसंद पर सुनते हैं ये सुहाना सा गाना। बड़ा प्यारा सा नाम है ना सुहाना, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलो सुनते हैं शानदार सा ट्रैक, उसकी बाद बातचीत करेंगे आपसे भी। जल्दी से कॉल लगाइए आप मुझे एवरीवन, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जल्दी से कॉल लगाओ। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896 ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है और खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। चलो अभी सुनो ये प्यारा सा गाना, बस मैं आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हाई एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल एवरी लिसनर्स। वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना सत्विन साथ में श्री घोषाल जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। दोस्तों, बाहर का जो मौसम है बड़ा ही औसम है। बाहर बारिश हो रही है और जब हम अंधवी कार में होते हैं, बाहर बारिश को निहार रहे होते हैं, कितना खूबसूरत नजारा होता है ना। और अपना फेवरेट ट्रैक, ओहो हो, तो सफर हमारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और कब हमारी मंजिल आ जाती है हमें भी नहीं पता चलता है ना। ऐसा ही होते हैं कुछ खास मोमेंट। और चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, बताइएगा
1: जी। मैंने वो मुझे गाना सुनना था।
0: बताइए कौन से गाना सुनने हैं आपको।
1: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो वो काम, वो फिर नहीं आते।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवा देते हैं गीत आपको।
1: थैंक यू मैडम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गाना और लौट कर आते हैं हम किशोर कुमार जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। गाना फिल्माया गया है राजेश खन्ना जी पर। और बस मैं आती हूँ अभी वापस, आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए।

क्या बात है दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना है फिल्म मुरादाबाद 89.6 पर। और समय की अगर बात करें ना एवरीवन, तो वक्त हुआ है 4:55, 4:45 हो चुके हैं, 4:55। और अभी हमारे जाने का भी वक्त हो गए हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, जाते जाते एक प्यारा सा गीत मैं आपको यहाँ पर सुनवा कर जाऊंगी। और बस अभी दिल कर रहा है ना कि गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर कोई हमारे लिए लेकर आ जाए। देखिए, कोई लेकर आए या ना लेकर आए, आप इंतजार मत करो, आप खुद भी जाकर चाय बना सकते हैं ना गर्मा गर्म। तो फिर सोच क्यों रहे हैं, जल्दी से जाइए किचन में और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीजिए, लुफ्त उठाइए उसका इस सुहाने से मौसम में। और अपनों के लिए भी चाय बनाइए, ये नहीं कि अकेले अकेले खुद के लिए ही चाय बना ली हो, ठीक है। चलिए अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 से 12। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, यूं ही सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए। और इस मानसून अपना विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, बेवजह पानी में नहीं भीगना। और अगर बाहर जाना है ना तो छाता लेकर जरूर जाइएगा, ताकि आप बारिश में बिल्कुल ना भीगें।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोटल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई हो गई। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर

हेलो जी, गर्द वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 5:09 हो गए हैं, आर्जरीना कनेक्ट हो गई हैं आप सभी के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और आज का मौसम और वेदर आए यानी कि जो जमकर बारिश हुई है ना भैया, मजा ही आ गया। क्योंकि दो तीन दिन से ना भाई सबको बड़ा इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि कब बारिश आए, लेकिन आज की बारिश ने तो मजा ही दिला दिया सच में। ये मौसम सिर्फ भीगने का नहीं, किसी की यादों में खो जाने का मौसम है। जब ठंडी हवाएं चेहरे को छूती हैं, तो लगता है जैसे किसी की मोहब्बत चुपके से दिल को छू गई। कभी कभी बारिश सिर्फ जमीन को नहीं, दिल के सूखे कोने को भिगो देती है। और ये काले बादल ये गवाह है कि इश्क हमेशा धूप से नहीं होते, कभी कभी बरसात की खामोशी से भी खिलता है। तो श्रोताओं, आरजे रीना आप सभी के साथ देखिए 2 घंटे के लिए हैं, ढेर सारी अपडेट लेकर आप सभी के बीच आ गई। फिलहाल बारिश हल्की हल्की सी बंद हो गई है, लेकिन बादल है जो काले काले बादल आए हैं, काले काले बादल छाए हुए श्रोताओं। तो बस ढेर सारी बातें करेंगे आरजे रीना के साथ, कनेक्ट रही ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी।

और आज की तारीख यानी कि 6 अगस्त, जैसे कि मैंने आप सभी को कल ही बताया था कि भैया बारिश तो ताबड़तोड़ वाली होने वाली है मुरादाबाद में, तो मजे लीजिए। और इसके बाद बात करेंगे, देखिए हर भी बरसता हुआ दिन यानी कि हर किसी के लिए चाय पकौड़े का नहीं होता है, किसी के लिए क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल सुनते एक बहुत ही प्यारा गाना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं तो 5:19 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में, और यानी कि आज का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस। देखिए बारिश जब आती है ना तो हर कोई कहता है कि बस चाय पकौड़े चाहिए, लेकिन उनके लिए हर बरसात में चाय पकौड़े नहीं चाहिए होते हैं जो सड़कों पर रहते हैं, भीगते हुए घर पहुंचते हैं। उनके लिए वो चाय पकौड़े वाला आनंद नहीं लेते हैं वो, बल्कि वो ये सोचते हैं, पूरे भीगे हुए होते हैं, कांप रहे होते हैं होठ हाथ, और मन में एक ही ख्याल कि बस घर पहुंच जाए। और ये समय होता है यानी कि ऑफिस से घर के लिए निकल गए होंगे आप, राइट। लेकिन इस टाइम आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा अपनी खुद की सुरक्षा करनी है, और साथ ही साथ आप ट्रैफिक में हैं तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप गाड़ी में हैं या फिर बाइक पर है, जो गाड़ी में है वो तो आसानी से बच सकते हैं, लेकिन जो बाइक पर है वो भीगते हुए घर जाएंगे, छींकते हुए घर जाएंगे। तो जो गाड़ी में है थोड़ा सा गाड़ी आराम से चलाइएगा, ज्यादा तेज रफ्तार में आपने गाड़ी नहीं चलानी है, अदरवाइज जो आपके साइड में चल रहे हैं ना उनके ऊपर जो छींटे पड़ने वाली, और ऊपर से जो चार बातें आपको सुनने को मिलेंगी, आप सुन तो नहीं पाएंगे लेकिन वो बोल देते हैं भैया कि आराम से नहीं चला सकते, मतलब दिखता नहीं है इसको, इस तरीके की लैंग्वेज आपको सुनने को मिल जाएगी। तो इसीलिए गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं, होले होले चलानी है, बारिश का आनंद लेते हुए गाड़ी चलानी है आपने, और अपने घर आराम से पहुंचिए और अदरक वाली चाय पीजिए ताकि पता चले कि रात को अच्छी की वजह से आप अच्छे से सो पाए, वरना झंडू वाम लगाना पड़ जाएगा आपको, देख लीजिए। तो चलिए श्रोताओं, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और आज की तारीख 6 अगस्त, और जानेंगे और भी वेदर के बारे में कि कल का वेदर कैसा रहने वाला है, कैसा नहीं रहने वाला है, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल एक बहुत ही शानदार गाना

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोता। ए आर रहमान की आवाज में बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, ओ रे छोरी आय हाय। साथ में अलका याग्निक जी और यानी कि ए आर रहमान जी ने ये जो गाना है वो लिखा है और गाया है, यानी कि अलका याग्निक और उदित नारायण जी ने, यानी कि खूबसूरत ये गाना। सच में गाना सुनने के बाद ना इस मौसम का भी आनंद एकदम मजे वाला आ रहा होगा आपको, है ना। गाड़ी में बैठे हुए हैं और होले होले और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं और गाड़ी की रफ्तार धीमी। देखिए इस मौसम में ना गाड़ी की रफ्तार धीमी रखेंगे तभी मजा आएगा, तभी आप नेचर का आनंद भी ले पाएंगे। अदरवाइज फिर तो आप जल्दी घर पहुंच जाएंगे और फिर यही एक ही बात कहेंगे, धत तेरी की जल्दी से घर पहुंच गए यार, थोड़े होले होले गाड़ी चलाना था, इसीलिए होले होले गाड़ी चलाइए और अपने घर पहुंचिए। और साथ ही साथ यानी कि वेदर की बात कर लेते हैं। आज तो भैया झमाझम बारिश हो ही गई है और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। साथ ही साथ अगर मैं कल की बात करूं, 7 अगस्त की बात करूं, तो कल भी यानी कि 10 जिलों में सबसे अधिक आंधी तूफान और बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि यूपी के 10 जिलों में बारिश आ सकती है और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी इलाकों में भी, साथ ही साथ बिहार में भी बारिश बताया जा रहा है। तो देखिए काफी टाइम से इंतजार था, वो इंतजार की पल वो खत्म हो गई है क्योंकि मानसून का मौसम है और साथ ही साथ सावन का महीना यानी कि पावन सावन का महीना, और इसमें देखिए बारिश तो आने ही आनी है ना। थोड़े बस मुझे लगता है कि ना पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि जब भी थोड़ी सी गर्मी हो जाती है ना परेशान हो जाते हैं, यार बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है। अब देखिए जैसी बारिश आई हर किसी के चेहरे पर यानी कि एक अलग ही मुस्कान, ऊपर से जो पेड़ पौधे हैं उनकी चहचहाट और चिड़ियों की चहचहाट एक सी, यानी कि जैसी बारिश की बूंद धरती पर आती है, पेड़ के पत्तियों पर गिरती है ना, तो सोंधी सोंधी खुशबू हमें ये एहसास कराती है कि नेचर जो है यानी कि प्रकृति की जो खूबसूरती है वो एक्चुअल में इस टाइम देखने का अलग ही मजा होता है। चलिए हम भी बात करते रहेंगे, ढेर सारी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ, लेकिन फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोता, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

देखिए जी, दिल विल तो नहीं देने वाले, लेकिन आप सभी से एक क्वेश्चन तो हम जरूर पूछने वाले, क्योंकि देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुतों घर में ना भैया पकौड़ियां बन चुकी होंगी, है ना, और बहुत से खा रहे होंगे मजे लेकर, और बहुत से सोच रहे होंगे कि बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, और बहुत बना रहे होंगे किचन में कि चलो यार गर्मा गर्म पकौड़ी बनाते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी पकौड़ी पसंद है? आलू, प्याज और पनीर, और मतलब जिस चीज का भी आपको पकौड़ी सबसे ज्यादा पसंद है पकौड़े, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। श्रोताओं, नंबर है 9823789689। साथ ही साथ गोभी के भी पकौड़े होते हैं, हाँ, और पालक के पत्ते होते हैं उनके भी पकौड़े बहुत क्रिस्पी लगते हैं, बहुत ही शानदार वाले, मजा आ जाता है सच बताओ तो आपको बताने की सबसे ज्यादा कौन सी पकौड़ी पसंद है जी। चलिए मैसेज करें, फिलहाल के लिए एक और गाना, बहुत ही शानदार।

0: हाँ जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोता, हो आरजे रीना के साथ कनेक्ट है आप इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 5 यानी कि 43 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 6 अगस्त यानी कि इतिहास के पन्ने में बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। 6 अगस्त एक ऐसा तारीख है जो दुनिया को यह याद दिलाता है कि युद्ध कभी किसी की जीत नहीं होती। साल 1945 में आज ही के दिन जापान और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था जिसने पल भर में लाखों जिंदगियों को बदल दिया था। हिरोशिमा दिवस हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता बल्कि यह संदेश देता है कि शांति, इंसानियत और आपसी समझ ही सबसे बड़ी ताकत है। नफरत और हिंसा की जगह अगर प्यार और संवाद हो तो दुनिया कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो आज का दिन बेहद इम्पोर्टेंट है। आज उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उस त्रादशी में अपनी जान गवाई और एक ऐसे विषय का संकल्प लिया जाए। जो देखिए, कोई भी काम होता है तो उसको मतलब गुस्से से और नफरत से नहीं, हथियार से नहीं, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ जगह पर ऐसी होती है जो इंसानियत और प्यार बहुत मायने रखता है, समझौते बहुत मायने रखते हैं। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो गुस्सा हर किसी के अंदर बहुत ज्यादा है। बस इसको कंट्रोल करना है और जैसे ये बारिश की बूंदें धरती को छूती है ना, हर धरती सुगंधित हो जाता है, वैसे ही आपको बनना चाहिए। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओं, उसके बाद बात करेंगे यानी कि तेल घी आप खरीदते हैं तो अब आपको ध्यान देने की जरूरत है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

चांद लाऊंगा। फिलहाल चांद तो भैया छुप गए हैं, रात को चांद देखिएगा और फिर दीदार करिएगा उसका। फिलहाल आरजे रीना के साथ अब दीदार करिए, एंजॉय करिए शो को। समय की बात करूं तो 5:52 हो चुके हैं। और देखिए, रामायण मूवी का ना बेसब्री से इंतजार था कि आखिर ये कहा गया था कि दिवाली के टाइम ये मूवी रिलीज की जाएगी, लेकिन अब डेट फिक्स हो गई है, यानी कि ये मूवी रिलीज होने वाली है दिवाली के 2 दिन पहले, यानी कि 6 नवंबर को जो रामायण मूवी है वो रिलीज होने वाली है और दिवाली है 9 नवंबर की। तो देखिए, बहुतों का इस मूवी के ऊपर सवाल भी उठ रहा है कि जो रावण है उसको राम होना चाहिए या जो राम है उसको रावण होना चाहिए। फिलहाल इसी पर ना बहस बहुत अच्छे से छिड़ गई है, लेकिन इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि भैया अब तो इस मूवी के देखने की जिद है ना वो बढ़ती जा रही है कि सबसे ज्यादा किसका जो एक्टिंग है वो अच्छा लगने वाला है या कौन है जो सबसे बेस्ट कर पाता है इस रामायण मूवी में। तो आप जरूर देखिएगा ये रामायण मूवी, यानी कि 6 नवंबर को रिलीज होने वाली है श्रोताओं। और अभी तक ये रिव्यू है बहुत अच्छे भी है और बहुत थोड़ा ऐसा भी है कि कोई कह रहा कि रणवीर कपूर को यानी कि राम नहीं बनना चाहिए, उसको रावण बनना चाहिए, यानी कि राम के अवतार में भी यानी कि राम के रूप में भी वो एक्टर ही लग रहा है, राम वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, अभी सिर्फ पिक्चर देखकर कुछ नहीं हो पाएगा, जब आप मूवी देखने जाएंगे तब आपको पता चलेगा असलियत क्या है। और यहाँ पर एक और ही प्यार प्यारा सा गाना और उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

हे करू यो भोलेनाथ, न्यू तो भंगिया पीने छोड़े नहीं। आज मैं भी भांग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोलेनाथ ने परेशान करूंगी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
3: जिसे राज्य के साहसिक खेलों और वैश्विक पर्यटन की पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ
4: संचित जैन
3: को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
4: नमस्कार सभी को।
5: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय

0: की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रूपये कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

एक बार सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि पावन सावन का महीना शुरू हो गया है, यानी कि हम बात करेंगे योगी जी की पाती। सावन का महीना भी अद्भुत है। रिमझिम फुहारे, शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता, जहाँ नजर डालो हरियाली, प्रकृति की सुरमयता क्या होती, सावन में ही पता चलता है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सावन स्पेशल पाती में है विशेष संदेश। योगी जी कहते हैं, यहाँ पवित्र माह सेवा, प्राकृतिक और साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रतीक है। प्राकृतिक से जितना ले उतना ही उसे लौटाने का संकल्प भी होना चाहिए। सेवा वाटर, सेवा अर्थ, पानी की एक भी बूंद नहीं हो व्यर्थ। तो इस मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मैसेज के लिए आज जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, सभी मेरे साथ बोलिए थैंक यू योगी जी। और सुनते रहे एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बचाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरक अछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल।

0: जी गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:20 हो चुके हैं। और अभी आपने सुना फसल बीमा के बारे में, यानी कि खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करता है, मौसम पर डिपेंड करता है। कभी तेज बारिश, कभी सूखा और कभी बाढ़ आंधी जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों को मेहनत पर एकदम पानी फेर देता है, उसे यानी कि नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचती है। ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन चुका है। तो आपने देखिए फसल बीमा करवाना बहुत जरूरी है, इससे आपको बहुत से फायदे मिल सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता मिलती है, किसान को पूरा नुकसान अकेले नहीं उठाना पड़ता है। और अगली बात यानी कि फसल की बुआई के लिए आर्थिक सहारा मिलता है, खेत में आत्मविश्वास बढ़ता है और कर्ज का बोझ कम होने में मदद मिलता है। तो अभी तक आपने खेती का यानी कि फसल बीमा नहीं कराया श्रोताओं, तो देखिए जो भी किसान भाई मुझे सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, फसल बीमा जरूर कराइए ताकि आपको सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल सके। देखिए जो सुविधाएं मिलती हैं, मुझे लगता है कि उसका लुप्त उठाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप खेती करते हैं और मेहनत कितना ज्यादा लगता है, जितना मेहनत जरूरी है उतना ही मेहनत है, यानी कि फसल बीमा बनवा लेंगे तो आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। दूसरे से बजाय यानी कि आप किसी और से कर्ज लेंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उससे डबल आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए फसल बीमा जब आप करवाते हैं तो सरकार की तरफ से आपको हेल्प मिल जाती है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं। और कांवड़ यात्रियों के लिए यानी कि इस टाइम भाई हरिद्वार में देखा जाए तो बताएंगे बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास अपडेट है श्रोताओं। अभी के लिए थोड़ा सा क्रेज मनाना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आप सभी के लिए लेकर आएंगे कड़क सवाल भी तो लेकर आना है मुझे। चलिए फिलहाल कुछ मैसेज है उनको शामिल कर लेते हैं।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
2: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क में चूर चूर रहता हूँ।
0: बादल भी बोले कोयल भी गाए, रीना मैम को लिख दिया इन्होंने लेना मैम। अरे अरे क्या बात है जी। रीना मैम भी मुस्कुराए तो सब मुस्कुराए, भोले बाबा का आशीर्वाद रहे हरदम साथ, हंसी खुशी और सफलता से जगमगाए आपका हर दिन। जय भोले की, जय भोले की। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है जी, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। बिंदास यानी कि गाने सुना रहे हैं, देखिए जो मेरे पास अखिल भैया है ना, हंसे जा रहे भैया रीना मैम के नाम से सुन के, तो आप रीना मैम बोला करिए। मेरा नाम ही चेंज कर देते रीना टीना, पता नहीं क्या क्या लिख देते भैया, कोई बात नहीं, बट अच्छा लगता है आप सभी के मैसेज है, और मेरा नाम भी चेंज कर देते आप तो मजा आता है, मेरे पता चलता है कि मेरे और भी नाम है। और इनका कहना है कि मैम चाय पी लीजिए, अरे भिजवा दीजिए, यानी कि बारिश फिर से हल्की हल्की बारिश से स्टार्ट हो गई है, तो आप ऑफिस में भिजवा दीजिए। आज तो भोले बाबा जमकर बरस गए हैं, हां जी उनकी जो कृपा है ना वो जमकर बरस गई है। और इनका कहना है कि आज आदित्य नारायण जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हमारे रेडियो की टीम की तरफ से भैया हैप्पी वाला बर्थडे आदित्य नारायण जी को।
1: जान से
0: अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त है परम मित्र है सैयद शारिक अली, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। रीना जी आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो हम सुन रहे हैं, इवनिंग मस्ती शो बहुत अच्छा लगता है, और आप बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रोग्राम पेश करती हैं, आपकी पेशकश काबिल के तारीफ है। आय क्या बात है जी, सुकून मिल गया थोड़ा। बहुत सी अपडेट आप शो में लेकर आती है, शो के माध्यम से हमारे तक पहुंचाती है, और साथ ही साथ मनोरंजन भी बहुत अच्छे से होता है, और गाने भी बहुत अच्छे प्ले करती है, बट आप जो सवाल पूछती हैं उसमें दिमाग लगाकर यानी कि दिमाग लगाना पड़ जाता है जी। ओए होए क्या बात है, यही तो मतलब कड़क सवाल का जवाब भी कड़क होना चाहिए ना सर, उसमें तो दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। देखिए अगर आप दिमाग की बत्ती नहीं जलाएंगे तो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि अंधेरे कमरे में भी उजाला के लिए दिया जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आंसर देने के लिए दिमाग लगाया जाता है आपको। चलिए अगले मैसेज की बात करूँ तो ये मैसेज आता है हमारे पास पूजा जी का, और इनका कहने कि मैडम आपने पूछा था कि बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी पकौड़ी आपको अच्छी लगती है, तो मुझे दो पकौड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पहला है पनीर, सेकेंड नंबर है गोभी। क्या बात है जी, इनको गोभी और पनीर के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं जी। मुझे लगता है कि ऑफिस भिजवा देना चाहिए, देखिए अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, गलत बात है।

अगले मैसेज की बात करूं श्रोताओं, तो ये अंसार हुसैन जी कनेक्ट हो गए हैं दौलत बाग मुरादाबाद से। कितना अच्छा नाम है दौलत बाग, दौलत भी है और बाग भी है, यानी कि दौलत के साथ साथ वेदर का भी आनंद लीजिए। और इनका कहना है कि रीना जी प्रोग्राम में आपने आपका जो प्रोग्राम है और गाने के साथ साथ रोचक यानी कि जानकारियां भी देती है, गुड शो। आय हाय, आज तो मुझे लगता है गुड़ खाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, इतना ही प्यार आप सभी के लिए जो देते हैं हमें, बहुत अच्छा लगता है और दिल से धन्यवाद। फिलहाल एक गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं और फिर लेकर आएंगे कड़क सवाल भी और कावड़ के बारे में। हाँ जी, नचले नाचिए, मैं कहती हूँ झूम कर नाचिए, जिनका वेट ज्यादा है वो कम हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेट अच्छे से काम करेगा।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

कल्याण की कुरी आपके साथ ये श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 6:33 हो चुके हैं, और इसी बीच रीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क म्यूजिक। देखिए बरसात का मौसम है और जो म्यूजिक मैं प्ले करने वाली हूँ वो भी बरसात से रिलेटेड है, तो आपने गाने का नाम बताने भैया कि जो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ यानी कि कौन से गाने का है ये, सोचिएगा और मैसेज करिएगा, और आप इस मूवी का नाम भी बता सकते हैं। अगर आप इस गाने और प्लस मूवी का नाम बताते हैं तो आप बनते हैं इवनिंग मस्ती शो के विनर। तो चलिए मैं कहती हूँ एक बार रेडियो का वॉल्यूम है ना बढ़ा लीजिए, अगर आप घर पे सुन रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं, हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं, तो मैं क्या कहती हूँ जी, मैं क्या जी, रेडियो का वॉल्यूम है ना बढ़ा लीजिएगा, यानी कि अपने कान के पास फोन को ले आइए, तभी आप सुन पाएंगे म्यूजिक अच्छे से। चलिए जी हम प्ले करते हैं।

0: yarayı.
1: चलिए जी, सोचिए और बताइए कि गाने का क्या नाम है. एक्चुअली जो गाना था वो प्ले तो हो ही गया है, हल्का सा प्ले हो गया है, बट कोई बात नहीं, अभी भी आप बता सकते हैं. मुझे लगता है कि अभी भी आपने नहीं सुना है ना, तो चलिए एक बार और मैं प्ले करती हूँ.

बस भैया इतना ही इनफ है, सोचिए और मैसेज करिए और साथ ही साथ गाने का नाम बताना है और मूवी का भी नाम आपने बताना है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं बहुत ही शानदार वाला।

अंदाज में गाना। ओ भाई साहब, डांस न करो तो क्या ही करा चाहिए आपने आज की शाम। समय की बात करूं तो 6:42 हो चुके हैं। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट हैं इवनिंग मस्ती शो में। और यानी कि देखिए, कावड़ की बात कर लेते हैं, यानी कि हरी के द्वार में बहुतों ने गंगा जल भैया भरकर यानी कि वापस के लिए प्रस्थान हो चुके हैं। सो उनके देखिए, जो कावड़ यात्रा के लिए गए हैं उनके ऊपर हरिद्वार में हेलीकॉप्टर से यानी कि फूलों की बरसात हुई, फूलों से स्वागत किया गया उनका। और जगह जगह पर आप देखेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हर कोई अपने घर से बोतल की पानी लेकर जा रहा है, फ्रूट्स लेकर जा रहा है और साथ ही साथ मेडिसिन स्प्रे, ताकि उनको पैरों पर उनके स्प्रे लगा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत दूर से पैदल चलकर आते हैं तो पैरों में दर्द भी हो जाता है। और साथ ही साथ पानी की बोतल, हर कोई उनकी सेवा में लगा हुआ है। अगर अभी तक आप उनकी सेवा में नहीं लगे हुए हैं तो भाई, ये सावन का महीना है, पुण्य कमाना है तो कमा लीजिए, सच बता रहे हैं हम। क्योंकि पानी पिलाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कहते हैं प्यासे को पानी पिला दो तो आपको 1000 पुण्य का, मतलब जितने आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई, दान करते हैं, उससे ज्यादा आपको फल मिलता है। तो इस सावन के महीने में बड़ा अच्छा मौका है आप सभी को, मतलब जो आप उनकी सेवा करें और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। और साथ ही साथ पुलिस कर्मी जो हैं और सरकार ने जगह जगह पर शिविर लगा रखे हैं उनके लिए तो सुरक्षा है ही। और साथ ही साथ आप सभी से एक और बात कहना चाहेंगे, जहां पर लाउड वाले जो डीजे बजाए जा रहे उससे बचिएगा जरूर, अदरवाइज कान की है ना जो डमाडोल हो जाएगी, नैया यानी कि डमाडोल हो जाएगी, फिर उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए ज्यादा लाउड वाले डीजे के पास आपने नहीं जाना है, जितना हो सके उतना बचना है आपने। चलिए श्रोताओं, मैसेज तो बहुत सारे आ रहे हैं भैया मेरे पास कि राइट आंसर ये है। चलिए एक बार और हम म्यूजिक प्ले करते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि अगली बारी शायद आपकी मैसेज की हो जाए।

0: सोचिए सोचिए कि इस गाने का जो मैंने गाना म्यूजिक अभी प्ले किया है, गाने का क्या नाम है और ये किस मूवी से ये गाना है। अगर आप दोनों बताते हैं तो आज बनते हैं आप विनर। और मैसेज आपको करना है, नंबर है 9837896896 पर अपने मैसेज करना है श्रोताओं, क्योंकि ये रेडियो आप सभी के लिए हर तरह का प्यार लेकर जो आता है। चलिए एक बार और म्यूजिक प्ले करते हैं, वंस अगेन एक बार और ध्यान से सुनिए, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अगर आपने ध्यान से सुना हो भैया तो मैंने गाना भी थोड़ा प्ले कर दिया था क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। चलिए फिलहाल गाने सुनते हैं।
1: मित्रां दे जंक्शन ते
0: हाय हाय बारिश और मित्रा दी जंक्शन।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बचाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:48 हो चुके श्रोताओं। और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि हम बात करने वाले हैं यानी कि पनीर, तेल और घी के बारे में, जो कि हम मोस्टली दुकान से लेकर आते हैं और हमें पता नहीं होता कि

कौन से तेल में मिलावट है और कौन सी घी शुद्ध है और शुद्ध नहीं है। देखिए हम हर चीज पर ना आज के टाइम में क्या हो गया कि हर कोई जो भी खरीदता है वो चमक धमक बहुत ज्यादा देखता है। उनको लगती है ये बातें कि जो चमक धमक वाली चीजें हैं वो बहुत शुद्ध होगी, बहुत अच्छी होगी, तो हम इसको ही खरीद लेते हैं। पनीर की बात कर लीजिए, जो कि मोस्टली हर घर में दूसरे तीसरे दिन, और जो प्रोटीन भाई जो डाइट पर वो तो खाते ही खाते हैं, तो उनके लिए भी आप पनीर लेने जाते हैं तो जो चमचमाता हुआ पनीर आप देखते हैं ना भैया, हर चमचमाती चीज सोना नहीं होती है। इसीलिए जो भी आप खरीदने जा रहे हैं सोच समझ कर खरीदिए। और सबसे बड़ी बात है देखिए, सब तेल जो कि हर सब्जी उसके बिना अधूरी मानी जाती है, तो जब भी आप जितने पैसे के आप मुझे लगता है कि ऑयल खरीद कर लाते हैं, अगर उतने ही पैसे के आप सरसों लेकर आए खरीद के घर में, खुद उसका तेल निकलवाए फिर इस्तेमाल करें, तो कितना अच्छा होगा ना। आप भी हेल्दी, फैमिली भी हेल्दी, और आप भी ऐसी हेल्दी खुश तो फैमिली भी खुश। तो इसीलिए अपने खाने का जरूर ध्यान रखिए, और क्योंकि आज के टाइम में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि शुद्ध है, चाहे हरी सब्जी से लेकर सोच लीजिए खेत की भी जो चीजें वो भी अब शुद्ध नहीं रही है, हर चीज खाद के ऊपर है। जो भी आप सब्जी बाहर से भी लेकर आ रहे हैं ना, हरी सब्जी आप लेकर आ रहे हैं तो उसको पानी में डिप कर 5 से 10 मिनट के लिए रखिए, ताकि आप पानी में डिप कर उसको रखते हैं तो उसके एक तो उसके ऊपर की जो भी डस्ट वगैरह है वो साफ हो जाती है, और जो भी खाद वगैरह होता है वो डिप करने से माना जाता है कि वो हल मतलब थोड़ा सा जो उसकी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो जो भी आप सब्जी बाहर से लेकर आते हैं उसको वॉश करिए, डिप करके रखिए, तभी उसको निकाल कर अपने फ्रिज में रखिए, क्योंकि बिना धोए वॉश करे आप फ्रिज में उसको मत रखिए। और इस चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और एक बार और म्यूजिक प्ले करती हूँ श्रोताओं, क्योंकि अगली बारी आपकी मैसेज की है, मैसेज शामिल करेंगे, लेंगे यहां से जाने की इजाजत।

हेलो जी, गज वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, देखिए आप सभी के साथ आरजे रीना कनेक्ट हो गई है। समय की बात करूं तो 6:55 हो चुके हैं इवनिंग नमस्ते शो में, और एक खास अपडेट आप सभी तक पहुंचानी है जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख है 6 अगस्त, और 16 जून तक अगर आपने ये 16 अगस्त तक आपने ये काम नहीं कराया तो आपको दिक्कत का सामना तो करना पड़ सकता है मरचान। यानी कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए ये खास जरूरी खबर है कि 16 अगस्त तक अगर आपने ईकेवाईसी पूरा नहीं कराया तो गैस सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी का जो पैसा मिलता है उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ईकेवाईसी जरूर करवाइए ताकि आप बुकिंग भी आसानी से कर पाए और सब्सिडी का जो पैसा आता है उसका भी आप लुफ्त आसानी से उठा पाए। देखिए, लास्ट डेट यानी कि जारी कर दी गई है 16 अगस्त। ठीक है जी, 16 अगस्त से पहले पहले करवा लीजिए, मैं तो ये कहती हूँ। यानी कि शुभ काम में देरी क्यों करना है, जल्दी कराइए। चलिए, फिलहाल आज का जो कड़क सवाल है, कड़क म्यूजिक मैंने आप सभी के लिए प्ले किया है, उसका आंसर बताना था। एक बार और मैं प्ले करती हूँ और

आएगा मजा बरसात का। ललिता कश्यप जी का कहना है। ओके अगले मैसेज की बात करूं तो आएगा मजा बरसात का और गाना भी आपने सुनवा दिया। रीना जी कमाल करती हो जी। विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं लेकिन अभी भी पूरा अधूरा आंसर नहीं। अगले मैसेज की बात करूं तो आएगा मजा बरसात का और मूवी का नाम है अंदाज। ओके अगले मैसेज की बात करूं तो आएगा मजा बरसात का और तेरी मेरी मुलाकात। मूवी की बात करूं तो अंदाज। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं आकाश चौधरी मुरादाबाद से। अंसार हुसैन जी कनेक्ट हो गए हैं दौलतबाग मुरादाबाद से। आएगा मजा बरसात का और साथ ही साथ मूवी का नाम बताते हैं अंदाज। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी। हेलो मैडम जी गुड इवनिंग आपको। वेरी गुड इवनिंग जी आपको भी। आएगा मजा बरसात का। हमारे साथ कनेक्ट होती हैं बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी। दिल तो पागल है फिल्म गाना चला दीजिए। अच्छा जी ये तो गलत बात है जी। पहले आंसर बताइए फिर आपको मिलेगा क्या, यानी कि आपको गाना भी सुनने को मिल जाएगा। आएगा मजा बरसात का और फिल्म का नाम है अंदाज, जो कि मैसेज पहले आया है मैंने लेट शामिल करा है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी और ये विनर बनते हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया था मुझे लेकिन मैंने सीन कर लिया था, अभी मैं लेट शामिल कर रही हूँ। आप बनते हैं इस शो के विनर क्योंकि इन्होंने गाना भी बताया है प्लस मूवी का नाम भी बताया है। तो सर आप एंजॉय करिए चाय पकौड़ी और मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और बरसात में एंजॉय करते रहिए लेकिन अगर भीगने के बाद आपने घर आकर तुरंत कपड़े चेंज करने हैं अदरवाइज जुकाम खांसी अच्छी फीवर वाला हालत हो जाएगा जी।

0: और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता को सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के

0: है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की है। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वली शेट्टी को हराया। अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज भी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रबड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़ या चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना आई है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वादों की नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारी को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज़ सहायता देती है, चीज़ करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंसी की ओर जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज़ है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्य स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज़ से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज़ मिल गई, तो उससे बहुत फ़ायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ ना कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद हैं, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी बातें करती हैं, और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्क्ड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी हूँ, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा? हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली। और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने
0: दाई जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड। तो क्योंकि वी आर फीमेल, तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी, वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं। बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती हैं, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभालनी करनी है पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते हैं।
1: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज, वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्होंने कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
0: ठीक है
1: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग
0: की एब्सोल्युटली
1: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता है, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 से 4 हजार रुपए की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल,
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं। डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे, और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स, आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा ले प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
0: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है, आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
1: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए।
0: Absolutely.
1: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
1: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि एक सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज HPV का वैक्सीन आप जरूर कराएं, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना,
0: इसके
1: पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी, मंदिर ऊपर हुआ करते थे तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
0: बिल्कुल,
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती हैं तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल,
0: तो
1: यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते। थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
0: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं।
1: Exactly.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं।
1: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज, आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है, विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
0: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज़ से कहीं ना कहीं.
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार. आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681.
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद.

0: नहीं।
1: जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल,
2: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
1: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
3: श्री जोशी ने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के बारे में कहा कि देश वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के सतत ऊर्जा भविष्य के लिए तकनीकी रोडमैप भारत के ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकल्प 2030-2047 को जारी किया गया। श्री जोशी ने अत्याधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने इस अवसर पर कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
4: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
3: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि SAF एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विमानन ईंधन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीतमपुरा स्थित सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
5: इस लैब के माध्यम से स्कूली छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी आधुनिक तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का हर विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करे, यही दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे प्रत्येक छात्र भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह इनोवेशन लैब सार्वजनिक निजी भागीदारी जन भागीदारी की उस शक्ति का उदाहरण है जो सरकारी विद्यालयों में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रही है। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
3: दिल्ली शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज सचिवालय में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। श्री सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान शहर में बिजली की तैयारियों का जायजा लिया गया और बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली के हर निवासी के लिए बिना रुकावट, भरोसेमंद और कुशल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कला तथा संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज आगामी पंजाबी साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस आयोजन के माध्यम से पंजाबी भाषा, साहित्य, संगीत और समृद्ध विरासत को और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी भी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर सके। श्री सिरसा ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में हर भाषा, संस्कृति और परंपरा को पूरा सम्मान मिले। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने आज नजफगढ़ जोन के अंतर्गत द्वारका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्वच्छता और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री खेरवार ने अधिकारियों को नियमित रूप से कूड़े को हटाने और उच्च स्तर की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। वस्त्र मंत्रालय कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
0: वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। मंत्रालय के अनुसार समारोह का प्रमुख आकर्षण संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों का वितरण होगा। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। समारोह के दौरान अर्थ रूट थ्रेड, ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ही पुरस्कार विजेता हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
6: AI is creating new ways of working or running a business. And like any new technology, it can be intimidating to know where to start or how to keep up. Don't worry though. We're here to help. This is the Google AI Professional Certificate. In this course, you'll get AI skills employers are looking for. This includes important fundamentals about AI, how to apply AI to your own work, and how to be a responsible AI user. So let's get started.
7: Enroll today and get 3 months of Google AI Pro on us.
3: साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये मामला टेलीग्राम आधारित पार्ट टाइम रोजगार और निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रोजगार धोखाधड़ी के नाम पर लोगों से लगभग 3 लाख की ठगी की। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 7वीं पुण्यतिथि पर बसंत उद्यान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि सुषमा स्वराज का स्नेह, आत्मीयता और प्रत्येक कार्यकर्ता पर उनका अटूट विश्वास आज भी सभी की स्मृतियों में जीवित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा की। इस दौरान श्री यादव ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम की बेहतरीन सेवाओं की सराहना की और स्वच्छ सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रीवा सोलर प्लांट के साथ इसके जुड़ाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जुड़ाव टिकाऊ शहरी परिवहन के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ जिसमें देश के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक और पुरस्कार जीते। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को मौके, सुविधाएं और साथ मिले तो वे काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस 1.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को बेहतर बनाने और सरकार स्कूलों में अच्छी सुविधाएं देने के लिए काम किया है।
8: हमारा देश जो एक युवाओं का देश है, यहाँ के बच्चों को अगर मौका मिले, सुविधाएं मिले, प्लेटफॉर्म मिले तो वो बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचने की ताकत रखते हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने सभी इन स्टूडेंट्स को, 1000 स्कूल जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत चलते हैं, इस 1.5 ईयर ऑफ अवर टेन्योर हमने ये कोशिश की है कि दिल्ली में एजुकेशन को एक अलग जगह लेके जाया जाए, जहां पर हमारे इन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हम बेहतर सुविधाएं दे सके।
3: दिल्ली में इस वर्ष 4 अगस्त तक 137 दिन स्वच्छ वायु वाले दर्ज किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
9: दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए विभिन्न उपाय लगातार किए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार 2,243 मीट्रिक टन निर्माण और अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह और निपटान किया गया है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए हैं। सरकार ने बताया कि 81 सड़क सफाई वाहनों ने 2,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों की सफाई की है और 169 मीट्रिक टन सड़क की धूल हटाई है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र कल से शुरू होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टीम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कहा, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इस वर्ष 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए। और दिल्ली पुलिस ने रोजगार और निवेश धोखाधड़ी मामले में राजस्थान से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहां हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
4: लोग मुझसे कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, जाहिर सी बात है अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छा ही लगेगा ना। हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं एक और खूबसूरत से माहौल में, और ये माहौल आज का और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, और भी ज्यादा शायराना वाला जो ये माहौल है अब होने वाला है। और आज की जो ये अमेजिंग सी वाइब है, इसमें हम सिर्फ शायरी नहीं, बहुत सारी चीजें आज आपके लिए लेकर आए हैं। और एक बहुत ही कमाल के शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। गीत संगीत का सिलसिला भी चलेगा और प्रोग्राम जो है ये और भी खूबसूरत हो ही जाता है जब ये जनाब हमारे बीच में आते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ, जरूर मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको इनकी बात या मेरी बात कुछ भी पसंद आए तो आप इस बीच हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। सर, FM मुरादाबाद के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप?
5: धन्यवाद आनंद, मुझे बहुत खुशी हो रही है
4: जी,
5: कि जैसा कि ये माहौल भी है, मौसम भी है।
4: हाँ जी, हाँ जी,
5: तो इसमें आपने मुझे याद किया, आपने मुझे अपना समय दिया, श्रोताओं के लिए मैं उनसे रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है।
4: क्या बात है, और आपने अपना नाम तो बता ही दिया होगा।
5: नाम तो कोई नया नहीं है,
4: लेकिन हमारे लिस्नर को, हमारे जो लिस्नर है ना, वो हर बार नए नए होते हैं
5: जी, तो मेरा
4: पता तो होना चाहिए।
5: जी जी, मैं बता दूं, खाकसार को मनोज वर्मा मनु कहते हैं, आपके ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, और जैसा कि पहले भी ये बात हो चुकी है, शायरी में और कविता में दोनों में ही कुछ कहने की, कुछ सीखने रहना प्रयास रहता है।
4: बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है हर शायर के अंदर, हर कलाकार के अंदर ये खूबसूरत प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए, है ना?
5: जी,
4: जिस फील्ड में है, यहाँ पर हर दिन एक नई चीज, हर घंटे एक नई चीज जन्म लेती है।
5: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये सृजन की बात है।
4: हाँ।
5: जैसे प्रकृति, जैसे नेचर अपने आप को क्षण क्षण चेंज करती है, वैसे ही जैसे जैसे प्लॉट मिलते हैं, वैसे वैसे एक कलाकार या एक लेखक या एक शायर या एक गीतकार, वहां से उसे उस ऊपर वाले की नियामत से, जो माँ सरस्वती का वरद हस्त उसे प्राप्त होता है, उसके अनुकंपा जो उसे प्राप्त होती है, तो उससे वो बनाता है।
4: क्या बात है, इतनी शुद्ध हिंदी ये अगर बोलेंगे तो आज मैं अच्छा अनाउंसर बन ही जाऊंगा। मतलब इतनी अच्छी हिंदी तो मैंने पढ़ी नहीं, जितनी आज मैं सीख रहा हूँ।
5: ऑलरेडी बहुत अच्छे अनाउंसर हैं।
4: आपसे बात करके मुझे एक चीज लगती है साहब, कि मतलब ऐसे लगता है मैं किसी प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ साक्षात, कोई मेरे साथ मेरा रेडियो साथी बैठा है, क्योंकि आप इतने अच्छे से शब्दों का उच्चारण करते हैं, इतनी बढ़िया वॉइस क्वालिटी है, तो वो थोड़ा सा एक फील हो जाता है मुझे। चलिए आज आपको बताइए
5: आनंद जी, आपकी ये जर्रा नवाजी है,
4: ये तो सर
5: ना, हम इस काबिल कहां
4: सर, ये तो आपका प्यार है,
5: लेकिन ये है कि चूंकि मामला चाहे आपका है या हमारा है,
4: जी जी,
5: उसमें शब्दों से जुड़ा है
4: बिल्कुल,
5: तो अधिकतर ये कोशिश रहती है कि प्रोनाउंसिएशन उसका सही हो सके, जहां हम अपने उस शब्द को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उस एनवायरमेंट में बैठने लायक हो, उस बात को अपनी अदा करने लायक हो, तो बस यही हमारी सफलता होती है।
4: यही चीजें सीखने सिखाने में बहुत आनंद आता है आनंद को, और जब ऐसे अच्छे लोग आते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लिसनर, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुन के वापस आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए,

0: तो वेलकम बैक एक बार फिर से मनु जी, मैं आपकी तरफ सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी आप स्टूडियो में आते हैं तो आपको यहाँ का वातावरण कैसे लगता है? बाहर निकलने के बाद एक अलग माहौल होता है, स्टूडियो में आने के बाद, माइक के पास करीब आने के बाद आपको कैसा लगता है?
1: जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी एग्जाम हॉल में कोई विद्यार्थी परीक्षाएं देने जाता है।
0: अरे वाह क्या बात है, लेकिन आपके दिल के करीब है ना, क्योंकि इन सब चीजों से तो आपका जुड़ाव पहले से ही रहा होगा, आई एम श्योर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल क्या है कि यही तो हमारी जान भी होती है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये जो माइक है, ये जो श्रोता है, तो इसके बिना तो कोई रचनाकार कुछ नहीं है, कोई कलाकार कुछ नहीं है।
0: क्या बात है,
1: उसकी जो जान बसती है वो उसके श्रोताओं में बसती है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो डर भी कि हम अपने श्रोताओं को अच्छे से अच्छा दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें, बस यही चीज है।
0: कई मर्तबा हमने इनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया कनेक्शन। फाइनली जैसे तैसे बातचीत करके आज हमने इनको बुला ही लिया। उपस्थिति तो कल ही थी लेकिन किसी कारणवश कल हो नहीं पाए, कल ये बारिश में कहीं भीग गए, क्योंकि आजकल मौसम भी सुहाना हो रहा है। मुरादाबाद की बारिश ऐसी है पता ही नहीं चलता है कब आ जाती है साहब।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: सुबह में धूप है तो शाम में बारिश है।
1: आजकल मौसम इसीलिए इसी तरह से मेहरबान है।
0: मैंने आज आपको बुलाया, आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा, आज हम अपने श्रोताओं को कुछ नया देने वाले हैं। मौसम इतना खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है और मतलब बारिश की जो बूंदे है वो कहीं ना कहीं एक शायर के मन के हिसाब से देखा जाए तो कैसी होनी चाहिए, क्या कहता है एक शायर इस मौसम में, क्योंकि हर एक मौसम का अपना एक लहजा होता है सर, है ना, अपना एक मजा होता है हर एक मौसम का।
1: बिल्कुल तो बिल्कुल सही,
0: देखते हैं मनु जी क्या इस पे आपको बताने वाले हैं आज।
1: नहीं बात सही है आपकी, देखिए बारिश का जो मौसम है ये अपने आप में क्या क्या समेटे हुए है, अब मैं क्या बताऊं। दरअसल क्या होता है कि बारिश के इस मौसम में जिसके साथ जो बीती होती है वो वही अनुभव करता है।
0: बिल्कुल सही बात,
1: अगर बात नायक और नायिका से कही जाए तो जिनको अपने साथी की कुर्बत, जिनको सानिध्य हासिल होता है, वो उसी तरह से यहाँ पर प्रफुल्लित होते हैं, और जो जुदाई में होते हैं वो वैसे ही बेचैन हो जाते हैं। और अगर हम सोचें कि इसका जो वास्तविक मतलब है तो एक किसान आंख उठा के ऊपर देखता है कि कब ऊपर से बारिश बरसेगी और कब मेरी धरती सोना उगलेगी। तो ये मौसम हर किसी के लिए अपने अलग अलग मानी रखता है, हम शायरों के लिए भी, हम रचनाकारों के लिए भी ये उसी तरह से है।
0: क्या बात है, और उन्हीं में से एक रचनाकार मनु जी हैं, इनके जो शब्द हैं वैसे सर करके बाहर निकल रहे हैं मोतियों की माला की तरह, एकदम एकदम सही फ्लो में और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यही खूबसूरती होनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, गाने का हो, सुनाने का हो, चाहे बोलने का हो, क्योंकि हर किसी में हर एक कला नहीं होती सर, राइट?
1: बिल्कुल,
0: हर किसी की कला बहुत अलग है, हम किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं। हर किसी के बोलने का तरीका अलग है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप पूरी एक पूरी डायरी लेकर आए हैं और बड़ी खूबसूरत लाइनों में आपने कुछ लिखे हुआ है, तो ये आप खुदते हैं?
1: हाँ,
0: राइटिंग तो बड़ी प्यारी है सर आपकी, सर की मैं डायरी देख रहा हूँ, बड़ी सुंदर सी क्यूट सी लिख के लेकर आए हैं और काफी पुरानी भी लग रही है मुझे।
1: माँ सरस्वती की कृपा है जो शब्द उतरते हैं,
0: ये पुरानी डायरी है, जरा ये बताएं आप लिसनर को।
1: ये सिलसिला तो चलता रहता है असल से।
0: क्या, अरे क्या बात है दोस्तों, आपको हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन करा सकते हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे हमारी इन बातों से कि हम अभी डायरी खोल रहे हैं और डायरी में जो लिखावट है वो शायद आप महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि एक शायर की कलम से जब बातें निकलती है ना तो वो सिर्फ बातें नहीं होती है, उसमें जज्बात होते हैं, राइट? उसमें इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती है।
1: बेशक, अगर ये इमोशंस ना होते तो शायद शायर ना होते।
0: क्या बात, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं। और अभी तो सिर्फ हमारी बातें हुई है, अब सिलसिला शुरू होगा, तो सिलसिले से पहले एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे और कुछ मनु जी से बेहतर सुनेंगे। आज मौसम इतना अच्छा है, मौका इतना बढ़िया है, सब कुछ तो हमारे आसपास है, तो इसको और ज्यादा इंजॉय करेंगे। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही जुड़े रहिए, सुन रहिए FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो, आपका अपना फेवरेट देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद। और हमारे साथ मनु जी स्टूडियो में उपस्थित हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। शायद मैं इनका नाम थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि शॉर्ट नाम मुझे भी अच्छा लगता है। सर का भी शायद ये प्यारा सा शॉर्ट वाला नेम है, इसको हम ले सकते हैं ना? इजाजत है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये मेरा उपनाम है, इसी से मेरे रचनाकार होने का पता चलता है।
0: तो बहुत सारे ऐसे आपके श्रोता और साथी हैं जो आपकी आवाज सुन के आपका चेहरा इमेजिन कर रहे होंगे, अच्छा ये वही मनु जी हैं जो हमेशा मुस्कान लिए घूमते रहते हैं। जब भी इन्हें मिलो मुस्कुराते हुए मिलते हैं,
1: आप कह सकते हैं।
0: तो अभी जो है हम चाहेंगे सर, अभी आप मुझे ऑफ एयर कोई गीत सुना रहे थे, उसकी दो लाइनें अगर हमारे श्रोताओं के लिए हो जाएं। मौसम इतना अच्छा है, मॉनसून भी कहीं ना कहीं दस्तक दे ही चुका है अब।
1: बिल्कुल, बल्कि अपने शबाब पर है इस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: आपने गीत की बात रखी है तो मौसम से ही मुतालिक मैं एक गीत रखता हूं आपके सामने।
0: जरूर, जरूर।
1: और बल्कि उसे अपने श्रोताओं के लिए गुनगुनाने की भी कोशिश करता हूं। ये एक देखना है कि मैं कहां तक सफल हो सकता हूं।
0: अरे वाह।
1: मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ के उसके करीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मौसम में बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ। अब गीत अपने अंतरों में चलता है।
0: जी।
1: मैंने जिसे प्यार किया प्यार का इजहार किया, उसने भी प्यार से मेरे प्यार का इकरार किया।
0: वाह।
1: मैंने जिसे प्यार किया प्यार का इजहार किया, उसने भी प्यार से इस प्यार का इकरार किया। आज मैं उसके दिल के कितना करीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि उसके करीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ।
0: क्या बात है, ये चंग पंक्तियां थी लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत थी। मैं कितना खुश नसीब हूँ, वाह, और हम भी बड़े खुश नसीब हैं कि आपके साथ बैठे हैं साहब। बहुत ही खूबसूरत,
1: अनवरत सिलसिला चलता रहेगा।
0: बहुत बढ़िया। तो ये आपको कैसे दिमाग में आया कि मुझे ये लिखना चाहिए, कलमों से उतारना चाहिए? ये रात में आया या दिन में आया या किसी को देखकर आया, पहले तो आप ये बताइए।
1: जाहिर सी बात है कि
0: भाभी जी रेडियो सुन तो रही होंगी ना पक्का?
1: हाँ,
0: जरा सोच समझ के पूछ लेते हैं भाई, कैसे ना और रॉन्ग दिशा में सवाल चला जाए, तो इसलिए पूछना जरूरी है। लेकिन
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या बात है कि देखिए, एक रचनाकार किसी का नहीं होता,
0: ये तो बिल्कुल सही,
1: वो सबका होता,
0: सबका होता है, बिल्कुल
1: ठीक है ना। और ये जो पंक्तियां मेरी है,
0: हाँ जी,
1: जो ऊपर वाले के कर्म से जो उतरी, जो ये एहसास जो जहन में थे वो जब कागज पर उतरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे जो भी सुन रहा है वो इसे अपने ही परिवेश में अपने ही तरीके से इसका आस्वादन करे, इसको महसूस करे, इसे फील करे, तब उसका एक मजा अलग होता है और वो गीत सार्थक होता है। जाहिर सी बात है, मौसम है, बरसात है, बरसात का जो मौसम है तो इसमें नायक और नायिकाओं की जो स्थिति होती है उसके दो ही पहलू होते हैं, या तो संयोग या वियोग, या तो मिलन या जुदाई।
0: जुदाई
1: तो सबका अपना अपना मजा भी है, और ये गीत भी उन्हीं कड़ियों को लेकर के चलता है। आप ये समझिए कि बस ये आगे चलता रहेगा और चीजें खुलती रहेगी।
0: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन सर एक चीज तो आपने बड़ी अच्छी बोली इस पूरे में, जो मुझे भी मैंने नोट करी कि जैसे आपने बताया ना कि जो एक रचनाकार होता है वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है।
1: बिल्कुल,
0: वैसे
1: बिल्कुल
0: ही कोई अनाउंसर है, उद्घोषक है, कोई एक्टर है, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबके लिए होता है। क्योंकि वो कोई भी बात अगर बोल रहा है तो वो किसी एक के लिए नहीं बोल रहा, वो सबके लिए बोल रहा है। कोई रचनाकार अगर कोई रचना लिख रहा है तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो हर एक सुनने वालों को लगेगा कि वो मेरे लिए है, है ना?
1: बिल्कुल,
0: वो
1: बिल्कुल।
0: फील और वो मैजिक आपकी उस शब्दों में होना चाहिए, उस रचना में होना चाहिए कि जो उसे पढ़े सुने उसको ऐसा महसूस हो कि तो मेरे लिए लिखा है मनु जी ने, तभी वो सक्सेसफुल भी हो,
1: तभी उसके सार्थकता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि ये हर कला के क्षेत्र में ऐसा है।
0: जी जी।
1: क्योंकि जब ऊपर वाला किसी बंदे को किसी कला से किसी हुनर से नवाजता है
0: जी जी,
1: तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपना अपने लिए नहीं रह जाता।
0: ये बिल्कुल सही बात है,
1: है ना, जैसे कि साहित्य की बात है, आप मुझे याद आता है मेरा नाम जोकर, आपने पिक्चर देखी होगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारी,
1: उसमें जो आदरणीय राज साहब ने, राज कपूर साहब ने जो अभिनय किया था, उस अभिनय में एक आपने देखा होगा कि उनकी अपनी माँ उस समय उस दुनिया में नहीं रही है और उन्हें अगला शो करना है जो पब्लिक के लिए करना है, तो उन्होंने उस अपनी उन भावनाओं को भी दरकिनार करते हुए जो उनके श्रोता थे, जो उनके दर्शक थे, उसके लिए अपना समर्पित हो करके पूरा अपना प्रोग्राम दिया,
0: प्रोग्राम दिया। ये तो खैर मैं यहाँ पे तो इस चीज को तो मैं भी अग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में भी चल रही होती है लेकिन हम सब वो गेट के बाहर ही छोड़ के अंदर आते हैं, ये बिल्कुल सच है। अभी भी मेरी लाइफ में, मैं हर इंसान अगर जीवन में आए तो उसकी जिंदगी में परेशानियां आना स्व जेन्युइन है, बहुत नेचुरल सी बात है, इंसान है हम यार, यही तो है नहीं, है ना, हम कंप्यूटर तो है नहीं, जो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन जब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, जब हमारे सर पे एक ठेकरा होता है कि भाई उसे अब हमें निभाना है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं।
1: नहीं सर, आप कह रहे हैं सही बात है, लेकिन बात यह है कि जो AI का आपने देखा होगा आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी इंसानों की तरह सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, वो फील कर रहा है कि वो अपनी बात को उन भावों के साथ रख सके जो उसका ओनर है,
0: लेकिन फिर भी सर इंसान तो इंसान ही होता है,
1: इंसान तो इंसान है,
0: जिसको ऊपर वाले ने बनाया है वो इंसान है, और जिस इंसान ने AI बनाया है भले वो इंसान का रूप ले ले, लेकिन बनाया तो उसे भी इंसान ही है।
1: जी जी, इंसान बनाया और अशरफुल मखलूक कहा, यानी कि सभी जातियों में सबसे ऊपर बताया गया है उसे।
0: तो बस, तो यही तो हम आपसे सुनना चाह रहे थे। तो मनु जी की और मेरी बातों की जो ये चैन है वो लगातार जारी रहेगी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा नाम जोकर मूवी का नाम इन्होंने जिक्र किया, उस मूवी के बारे में राज कपूर साहब का जिक्र हुआ है, तो उन्हीं की फिल्म का एक बढ़िया सा गाना, कोई गाना जो आपके जहन में हो मेरा नाम जोकर, ठीक है, मनु साहब कह रहे हैं सारे गाने अच्छे हैं, तो उसी फिल्म का एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं और आप भी थोड़ा सा फ्लैश बैक में पहुंचे, हम भी पहुंचते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, बजते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: 21 की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप आनंद के साथ जुड़े हुए प्रोग्राम में, मनु जी हमारे साथ हैं और आज की ये जो महफिल है वो और भी खूबसूरत हो रही है सर की बातों से, सर के अल्फाजों से, और कुछ न कुछ हम भी बीच बीच में तड़का लगाते ही रहते हैं तभी माहौल और अच्छा बन जाता है। बड़ी खूबसूरत एक लाइन मेरे जहन में आई तो मुझे लगा आपके साथ साझा करनी चाहिए कि पहली बारिश का नशा ही कुछ अलग होता है, पहली बारिश का नशा ही कुछ अलग होता है, पलकों को छूते ही सीधा दिल पे असर होता है।
1: क्या बात है,
0: मतलब मजा आ गया। हालांकि मेरी आवाज में आपको कशिक नहीं महसूस हो रही होगी, फील नहीं हो रही होगी, हमारा जोनर नहीं है, लेकिन मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी। और मैं कभी कभी गुलजार साहब को भी पढ़ता रहता हूँ, उनकी भी मुझे बहुत चीजें बहुत प्यारी लगती है और
1: बहुत अच्छा,
0: ऐसे मतलब उसमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें पढ़ने को मिलती है, कई बार गजलों से इतनी अच्छी निकल जाती है पंक्तियाँ की, उन्हें पढ़कर ही मतलब सुकून मिलता है, ऐसे लगता है हमारे लिए लिखी है सच में। नो डाउट,
1: एक शेर के दो मिसरे मैं आपको, शोख बरसात का मौसम है ये आ भी जाओ,
0: वाह
1: शोख बरसात का मौसम है ये आ भी जाओ,
0: आ भी जाओ
1: मेरे जज्बात का मौसम है ये आ भी जाओ।
0: अरे वाह क्या बात है, मेरे जज्बात का मौसम है आ भी जाओ, मजा आ गया। क्या बात है, इस माहौल को जो है ऐसे ही बरकरार रखेंगे मैं आप और आप लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपको मजा आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए या इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, एफ एम मुरादाबाद 89.6 का हमारा ऑफिशियल आईडी है, आप वहां आके फॉलो कीजिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छा शायर है या आप खुद एक अच्छे शायर है, लिखते हैं बोलते हैं पढ़ते हैं, आपको लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, तो ये मंच आपके लिए भी है। आप हमें इंस्टेंट डीएम करें, रजिस्टर कराएं और अगले दिन हो सकता है आप भी हमारे साथ हों स्टूडियो में। फिलहाल मनु जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, उनसे ढेर सारी बात कर रहे हैं हम और इस माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं आपकी बातों से। तो सर अभी हम जो है जिक्र कर रहे थे, जैसे कि आपने कुछ अल्फाज सुनाए, कुछ बातें कही, मैं चाहूंगा कि उन्हीं को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
1: हाँ सही कहा आनंद जी, दरअसल ये गीत का एक मुखड़ा चल रहा था
0: जी जी,
1: और गीत का एक अपना जो मजा है वो ये है कि जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए
0: 100%
1: तब तक उसकी बात पहुंच नहीं पाती है। तो फिर हम इस बारिश के गीत में थे, इसे मैं कंटिन्यू करूंगा जैसा कि आपका आदेश है, और आप देखें कि किस किस तरह से किस मोड़ से चीज कहाँ पहुंचती है।
0: क्या बात है,
1: और अपने श्रोताओं के लिए भी ये क्यूरियोसिटी हम बना के रखते हैं।
0: आपके पास सब कुछ होता है यहाँ, हर हर मर्ज की दवा है आपके पास।
1: अरे जरा नवाजी
0: ले आते हैं पकड़ के।
1: मैं कंटिन्यू करता हूँ
0: जी।

0: खुश नसीब हूँ, मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। देखें और एहसास करें
1: क्या
0: कि जब बारिश मुसलसल पड़ जाती है
1: जी जी,
0: तो आपने देखा होगा कि बच्चों के भी होठ कांपने से लगते हैं। कोई भी बारिश में जब ज्यादा देर तक टिक जाता है तो होठ बस वो कैफियत आप नजर में रखें और ये संतरे का
1: आप लुत्फ करिएगा। आप सोचिए कि आप बारिश में है, इमेजिन करिए खुद को।
0: उसके कांपते लब पे मेरे दिलो जा कुर्बान, भीगती जुल्फ

0: खुश नसीब हूँ, और खुश नसीबी का क्या आलम है
1: जी,
0: देखें अगला अंतरा। वो संग मरमर है, कोहिनूर हीरा है,
1: वाह,
0: उसकी हुस्न अदा और दिल पे हक मेरा है।
1: क्या बात,
0: वो संग मरमर है, कोहिनूर हीरा है, उसकी हुस्न अदा और दिल पे हक मेरा है। कौन ये कहता है कि अब मैं गरीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मौसम में बरसात है, वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। और अब इसका अंतिम अंतरा आ रहा है
1: जी,
0: और लौट के हम फिर वापस अपने इस जहान में आ जाते हैं।
1: अरे वाह, बिल्कुल।

0: मौसम बरसात है, वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुशनसीब हूँ।
1: क्या बात है, मजा आ गया सर। मतलब मुझे इतना मजा आया है तो सोचिए हमारे सुनने वालों को कितना मजा आएगा। ये तो आपने नो अपने टैलेंट को छुपा के रखा था ना ये गाने वाले को, अब अगली बार हम आपसे पहले गाना ही सुनेंगे। मतलब सच में अमेजिंग यार, इतना बढ़िया आपने गाया। पहले तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है,
2: थोड़ा सा
1: नहीं नहीं सच में यार, मेरे को सुनने में बहुत मजा आया। मुझे पता है हमारे लिसनर को भी बहुत आनंद आ रहा होगा, इतना अच्छा आपने गाया और इतनी गहराइयों से आपने सुनाया, हमें बिल्कुल हमारे सामने पिक्चर चल रही थी। आपने गा रहे वो इमेजिन करना
2: है
1: सच में, लेकिन बहुत
2: हमारे श्रोता तक बात ये पहुंच पाई है।
1: जी बिल्कुल।
2: दरअसल क्या है कि इसे तहत में भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन जो इसका रोमानी अंदाज है, जो फील है वो इन गुनगुनाहट के साथ है।
1: क्या बात है,
2: ये एक अलग बात है कि हम रफी साहब के
1: लेकिन नहीं। बट सर आपने जिस तरीके से अपने शब्दों को रखा ना गुनगुनाहट में भी, तो वो एक था उसके अंदर एक चाम किया है, मजा आ रहा है सुनने में। वो वाइब मिल रही थी आपके शब्दों की और आपके गाने की, जो सुर तालमेल थे एकदम बढ़िया वाले थे, तो वो अच्छा लगा मुझे।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर, आपका भी शुक्रिया। आप इतनी बार आए लेकिन आपने कभी हमें सुनाया नहीं, ये बड़ी गलत बात है, लेकिन आज लगे हाथ आपने सुनाई डाला, बहुत बढ़िया।
2: हाँ दरअसल क्योंकि मौसम है और मौसम में बात है कि मैंने अभी जिक्र किया कि जब महबूब के साथ होता है तो उसका साथ जिंदगी की सबसे बड़ी नियामत होती है।
1: शायर होते ही महबूबा की बात क्यों करते हैं, मैं सवाल पूछ सकता हूँ क्या? मतलब मैं यहाँ मोस्टली जितने भी इंटरव्यूज कर चुका हूँ, हर कोई महबूबा और मतलब मैं क्या बताऊँ, पहली मोहब्बत, ये सब पे बात होती है ज्यादातर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार क्या चल क्या रहा है देश दुनिया में, हर किसी ने प्यार किया, मैंने नहीं किया शायद, इसीलिए मेरे को समझ नहीं आता क्या जरूरी है ये सब समझने के लिए प्यार करना।
2: नहीं नहीं, आप चाहें आप चाहें तो छुपा सकते हैं, कोई बात नहीं है
1: सर। आप कहना क्या चाह रहे हैं आप देख रहे हैं दोस्तों,
2: लेकिन
1: सर निशाना कहाँ मार रहे हैं,
2: सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, ये रूह से महसूस करने की चीज होती है। और एक बात और होती है, मैं ये बिल्कुल पुख्तगी के साथ बता सकता हूँ,
1: हाँ जी हाँ जी,
2: वो बताना चाहता हूँ और ये रखता हूँ कि इश्क नहीं दुनियावी यारो,
1: क्या बात है,
2: इल्हाम ही है रास मियां, रूह से रूहों का रिश्ता है दिल ने जिसे पिरोया है।
1: क्या बात है।
2: तो ऐसी कंडीशन में कि जब व्यक्ति दुनियादारी के बारे में सोचता है तो वो उस प्रेम को, उस इश्क को, इस जज्बे को फील करना उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है, और जो इसे डीपली सेंटीमेंट्स के साथ फील करता है इस रूहानी एहसास को, वो दुनिया उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है।
1: नहीं, सर बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में, ऐसे सारे लिसनर भी खो गए हैं, मैं भी खो गया हूँ, मुझे जागना पड़ेगा कि मैं रेडियो में बैठा हूँ। तो अभी काम करते हैं कि अच्छे से गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे, क्योंकि दोबारा के लिए भी सर को दोबारा बुलाना है ना, तो पिटारे को थोड़ा संभाल के रखना है, इनके पास बहुत बड़ी पोटली है, तो उस पोटली में से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी रखी जाए, क्यों मनु जी?
2: अरे बस ये आपकी मोहब्बत है जो
1: अभी अभी हम थोड़ा सा,
2: और हमें भी उस जिंदगी को, उस पास्ट को जीने के लिए
1: बहुत अच्छी बात है, और
2: मजबूर नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मामले में कि
1: ये शुक्राना जो है एक कप चाय से होगा, ऐसे नहीं होगा, खाली खाली शुक्राने से काम नहीं चलता मनु जी, है ना?
2: क्या बात है, हाँ मौसम भी इजाजत दे रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम बिल्कुल आपसे अभी इजाजत नहीं ले रहे, लेकिन एक गाने की इजाजत जरूर चाहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप फरमा सकते हैं साहब, अपने दिल की बात हम तक रख सकते हैं हमारे मैसेजेस के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं, जाइए अपने मैसेज बॉक्स में, टाइप कीजिए अपना नाम और अपना प्यारा संदेश, उसको छोड़िए ना हमारे नंबर पे 9837896896 9837896896 पर।

0: याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता।

0: रक्षिता और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल। अब समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,721 करोड़ रुपए के भू परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव भू परियोजना दो वर्षों को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अर्जुन बैठक ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना।
1: दूसरा बड़ा फैसला है आसाम में एक हाईवे के बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली गुवाहाटी की जस्ट बाहर निकलने के बाद वहाँ से लेके ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और 8,970 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को स्वच्छ ऊर्जा

0: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
1: लोकसभा की कार्यवाही दो बार और राज्यसभा की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर लिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के आज विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षा रेंज से आज परीक्षण से मिसाइल के सभी मंत्रालय और तकनीकी मामलों को ये सफल परीक्षण देश की सामने प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन इंजन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
3: 19 लाख हाउस होल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
4: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 431 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
3: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
2: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हुए।
5: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
2: दो दिन का ब्रिक्स रेट्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शरार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। इशारा ने आकाशवाणी समाचार मुंबई।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com.in। और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई।
7: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चार मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महेश रहमान।
2: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की लोअर बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नागरिकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹0.10 कमजोर होकर ₹95.22 पर बंद हुआ।
2: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता की है। 27 जुलाई को ईओजेके ने तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में 3 सेट जीते। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और दक्षिता रामदास ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी प्रताप अग्रवाल और प्रताप प्रसाद राणा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशक्ति को हराया। अंत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कल राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन इंजन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामदास कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: Jerry.
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप ए दिल तक अखिल सर। अब ये समय हो गया है एक घंटे का कि करेंगे कुछ बातें, कुछ दिल से जुड़ी, कहते हैं ना जो आ जाती हैं जुबान पे खुद ब खुद। तो अब होगी एक घंटे दिल से दिल की बात आपके और हमारे बीच में, जहाँ पे होंगी खूब सारी कहानी, खूब सारे किस्से जो आप सुनाएंगे हमें और हम भी बताएंगे कुछ नई नई बातें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो यही रहेगा कि क्या आपके सीक्रेट्स किसी से शेयर करने चाहिए या कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए। तो अपने हमें मैसेजेस भेजिए, अपने विचार भेजिए, हमें कॉल कीजिए 9837896896 पे और शेयर कीजिए कुछ मस्ती भरी बातें कि कौन से सीक्रेट्स हैं जो कभी कभी हमें शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और हाँ अगर करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए और किससे करने चाहिए। चलिए हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं अभी और करते हैं उनसे कुछ बातें। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? अरे धैर्य, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं इस समय?
2: बस अभी थोड़ा सा पूरा काम कर रहे
1: थे। बहुत बढ़िया। तो आज बारिश स्कूल में थे तो बारिश हो गई या कुछ भीग भाग गए? चौपट कोई बात नहीं, तो भीगे तो नहीं सारे बच्चे, सब सही थे, बच गए? तो आज तो मन कर रहा होगा छम छम करके नाचने का स्कूल में फिर।
2: लेकिन एकदम से
1: अच्छा। तो कभी कभी ऐसा हुआ है धैर्य कि स्कूल के बाहर थोड़ा सा पानी भर गया हो और छुट्टी होते समय जैसे ही बाहर निकले तो मन करता है उस पानी में एक बार छपाक तो मारनी चाहिए?
2: नहीं मेरा तो मतलब मन करता नहीं है, लेकिन जब साइकिल हो तो तब मन करता
1: है। मतलब साइकिल हो अगर पानी भरा हुआ हो तो मन करता है कि उस पानी पे से कम से कम साइकिल निकाल दो। है और जो इधर उधर छींटे पहुंचती है ना किसी के ऊपर तो वो ऐसे घूर के लुक देता है कि भाई क्या कर दिया तूने, मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। कोशिश तो पूरी की जाती है बचाने की मगर यार बचा नहीं पाते। तो आज बताओ हमें कि कुछ तुम अपने सीक्रेट शेयर करते हो किसी के साथ या नहीं?
2: मैंने बोल दिया बस कहीं ना कहीं
1: छोटी छोटी क्या बात। तो तुम थोड़े से सीक्रेट अपने शेयर कर लेते हो दोस्तों के साथ, है ना? चलो ये तो अच्छी बात है, कुछ सीक्रेट्स तो शेयर करने चाहिए और कुछ सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रहना चाहिए, है ना? तो धैर्य आप लो अब मजा करो डिनर और खूब सारी मस्ती करके सो जाओ क्योंकि कल जाना फिर से स्कूल, सुबह टाइम से उठ के पहुंच जाना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट,
2: बाय।
1: तो साहब हमारे साथ जुड़े थे धैर्य जो आज बारिश का आनंद ले रहे थे पूरा, और कह रहे थे कि हाँ मैं भी अपने सीक्रेट्स जो है ना थोड़े से शेयर कर लेता हूँ जो मुझे लगते हैं। तो आप भी अगर थोड़े से सीक्रेट्स अपने शेयर कर लेते हैं तो ज़रूर बताएं कि हाँ हमें सीक्रेट्स शेयर करने चाहिए, और अगर नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करने चाहिए। 9837896 पे आप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, और अपनी फरमाइश का कोई सीक्रेट वाला सॉन्ग भी हमें बता सकते हैं जिसे हम सीक्रेटली प्ले कर लेंगे। मगर यहाँ सीक्रेट तो रहेगा नहीं, मगर हम अपने पास उसे सीक्रेट बना लेंगे। हमारे पास मैसेज आया है रोहित कुमार हनुमान मूर्ति मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? और FM मुरादाबाद में सब कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। कभी बेपनाह बरस पड़ी, कभी गुम सी है, ये बारिश भी कुछ कुछ तुम सी है। बरस रही थी बारिश बाहर और वो भीग रहा था मुझ में, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। बारिश की हर एक बूंद में तेरा ही नाम है, तू साथ नहीं फिर भी हर मौसम खास है। हमारे शहर आ जाओ, सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती हैं। क्या बात है रोहित जी, बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है आपने। और हमारे पास मैसेज आया हुआ है एक और, जिंदगी ने हर मोड़ पर मुझे आजमाया है, जिसे सबसे ज़्यादा अपना समझा उसी ने मेरे को रुलाया है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्ले, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। इतना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप लिखोगे तो मुझे लगता है करना ही पड़ेगा भैया, कहीं पुलिस ना आ जाए ये प्लीज़ प्लीज़ समझ के। मूवी का नाम है लैला मजनू, नेम शंकर लाल यादव जी, नमन निरांशी रितु यादव अमित यादव, लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चुराया, चुराया नहीं चौराया। तो प्लीज़ सर हमारा गाना प्ले कर दीजिएगा, आज हमारे दादाजी ने मैसेज करवाया, तो दादाजी को प्रणाम, और बहुत ही बढ़िया गाना उन्होंने चूज़ किया, ज़रूर हम ये गाना आपके लिए प्ले करते हैं। तो दोस्तों आते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, सीक्रेट कुछ शेयर करते हैं, कहीं ना जाएं, चिपके रहें FM पे, गाने आएंगे बैक टू बैक।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ये जो गाने की फरमाइश थी ये थी नरेंद्र सिंह जी की, जो इस समय स्टेशन पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जी हम तो जा रहे हैं सफ़र पे, वो भी लुधियाना। तो सर आपका सफ़र रहे बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, और जल्दी आप अपना काम निपटा के वापस मुरादाबाद पहुँचे। तो हमारे साथ हमारी शायरी आई है, एक आबिद जी हैं बॉम्बे से, उन्होंने शायरी भेजी है। हर बात जुबां पर लाना ज़रूरी नहीं होता, कुछ राज दिल में छुपाना भी ज़रूरी होता है। हर अपना अपना नहीं होता इस दुनिया में, इसलिए हर सच बताना भी ज़रूरी नहीं होता है। क्या बात है आबिद जी, और आप तो जिस नगरी तो ये तो नगरी है ही, वहाँ पे पूरी तो खूब आर्टिस्ट, और एक आर्टिस्टली आपने शायरी इतनी अच्छी पेश की है, बहुत ही बढ़िया। हमारे पास एक मैसेज और है नेहा जी का, नेहा जी बरेली से। अखिल जी, मैंने अपने सबसे अच्छी दोस्त को अपनी फैमिली की एक बात बताई, बाद में वही बात पूरे ऑफिस में फैल गई। तब समझ में आया कि हर दोस्त भरोसे के लायक नहीं होता। क्या बात नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, दर्द ना तब ज़्यादा होता है जब चोट किसी अपने से मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में भरोसेमंद लोग नहीं हैं, बस पहचानने में थोड़ा सा वक्त लगता है। चलिए हम अपने नए लिसनर से बात करते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: ये मैं मजीद करेली से इंतजार भाई अंसारी बात कर रहा हूं।
0: अंसारी जी कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: हम जरी का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप सब लोग कैसे हो? मुरादाबाद बहुत टाइम बाद मेरी कॉल लगी है।
0: बहुत टाइम बाद आपकी कॉल लगी है, तो इसका मतलब टाइम इस समय अच्छा है।
1: बिल्कुल अच्छा।
0: तो अंसारी जी आप बताइए, इस समय आप इस समय भी काम कर रहे हैं, इस समय तो मौसम कैसा है आपकी तरफ?
1: हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, मौसम ऐसा ही है कि मतलब बारिश रात में हो सकती है।
0: बादल गरज रहे हैं कहीं आसपास?
1: नहीं बादल नहीं गरज रहे हैं, वैसे बादल काफी तेज है, बारिश का मौसम
0: है। बारिश का मौसम है। तो अंसारी जी आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ जो राज होते ना, राज हमें लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या राज को राज ही बने रहना चाहिए, क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे इस बारे में?
1: इसके बारे में
0: कि राज अपने जो है सीक्रेट्स शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए?
1: नहीं नहीं नहीं,
0: नहीं करने चाहिए।
1: बिल्कुल
0: क्यों नहीं करने चाहिए?
1: अरे वो गाने की आवाज आ रही ना, तो इसकी आवाज नहीं आ पाई। आपने क्या बोला?
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो आ गई आपके पास आवाज।
1: बिल्कुल आ गई।
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: आज फिल्म का नाम है धड़कन।
0: धड़कन?
1: हाँ, कोई सा भी किस नंबर के सारे अच्छे।
0: ठीक है ठीक है, जरूर जरूर आपको धड़कन मूवी का एक गाना सुनाएंगे जाने से पहले।
1: और
0: आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: ये हम सब लोग जितने सुनने वाले हैं सभी को बनना चाहते हैं भाई साहब।
0: कोई खास कोई ऐसा बंदा? सीख
1: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: जो था नहीं कोई सीक्रेट आपके साथ, कोई सीक्रेट नहीं है, मतलब कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है भैया कि हम किसी सीक्रेटली बंदे को शेयर करना चाहते हैं। आपने तो सबके लिए कह दिया, ये बहुत अच्छी बात रही।
1: पता है क्या, अब वो बात ही नहीं है भाई।
0: हाँ ये
1: लफ्जों में तो जैसी चीज होती है जैसे आ जाती है, और बहुत से सुनते हैं, बहुत से नहीं सुनते हैं, और सुनने वाले आज भी रेडियो के चाहने वाले हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई शायरी वायरी आप सुनाते हैं, सुनाने का शौक है शायरी?
1: नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं भाई,
0: ऐसा कुछ भी नहीं। तो अंसारी साहब बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और आपने अपनी बात भी हमारे साथ रखी। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ अंसारी साहब, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, अपने सीक्रेट्स, अपनी कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सीक्रेट शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन सही इंसान चुनना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन कुछ बातें अगर गलत इंसान तक पहुंच जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। क्या कहेंगे आप, सही लगा या नहीं लगा? अगर कुछ लगा तो ज़रूर अपनी बात रखें, हमें मैसेज करें हमें, या फिर कॉल करें 9837896896 पे। तब तक के लिए आते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेके। हमारे पास हमारी एक लिसनर रजनी जी का फ़ोन आया था और उन्होंने अपनी गाने की फरमाइश करी थी, अब शादी के दिन दूर नहीं है। हाँ जी, शादी के दिन तो अभी दूर नहीं है, बिल्कुल इस सावन के बाद शादियों का सीज़न चालू हो जाएगा, तो ज़रूर कोई ना कोई कार्ड आपके पास भी आ जाएगा। तो सुनते हैं कि ये गाना बैक टू बैक और फिर आते हैं कुछ सीक्रेटली बात करने। एक पहेली भी है जो आप लोगों का इंतज़ार कर रही है, देखते हैं क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ये जो गाना था इसकी फरमाइश थी रामपुर से शबनम जी की। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सर जी? और एक गाना हमारा ये प्ले कर दीजिएगा। तो हमने आपका एक गाना प्ले कर दिया है और शबनम जी पूरी पूरी उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे इस समय। हम पे मैसेज आया है, हाय अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी, गुड वाला इवनिंग है जी। ललिता जी पहचान गए आपको, आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं ललिता जी। सर आपकी आवाज़, बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा है, शो बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। और उससे प्यारी हैं आपकी बातें जो आप ये करते हैं, धन्यवाद ललिता जी। हमें, हम आपका शो सुन रहे हैं और हम सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो अच्छे से खाइए, खूब मुस्कुराइए और खूब सारे गाने सुनिए जिससे अच्छी भी नींद आ जाए। हमारे साथ एक मैसेज और आया है हमारे पास, फूल बनकर मुस्कुराना हम जानते हैं, मुस्कुरा कर गम भुलाना हम जानते हैं, मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या बिन मिले रिश्ता निभाना हम जानते हैं। सिद्धि यादव, विनायक यादव, काशीराम सम्राट अशोक नगर से इन्होंने हमें मैसेज किया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बढ़िया आपने मैसेज में लिखा, जितने भी शायरी लिखी बहुत ही बढ़िया लिखी है। तो हमारे साथ चलिए कनेक्ट हैं, उनसे बात करते हैं आज क्या बात करेंगे सीक्रेटली हमसे भी। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: हेलो सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: सर आपको भी मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार। कैसे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: सर बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है। आप जो प्रोग्राम पेश करते हो सर, रहा नहीं जाता, काफी अच्छा प्रोग्राम पेश करते हो और हम कॉल लगाई देते हैं।
0: धन्यवाद धन्यवाद जी। तो इस
1: सब काफी सहमत हो गए, मतलब आप लिखने से काफी अच्छी बातचीत करते हो।
0: धन्यवाद जी, लिसनर्स से बातचीत करना ही तो इस शो का पूरा मकसद है कि दिल से बातें निकले लिसनर्स की और हम उनके दिल तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। और मौसम कैसा है सर मुरादाबाद का? ठंडा
0: मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम, कभी रुक जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है।
1: हाँ सर, यहाँ पे भी मतलब सुबह बारिश हुई थी और मौसम तो फिलहाल अभी भी बारिश का हो रहा, हो सकता हो जाए किसी टाइम।
0: तो बिल्कुल सही है साहब, छाता लेके घूमना, वैसे तो अब सोते समय भी छाता लेके अगर सो जाओगे तो नहीं भीगोगे।
1: सर चार पाई कभी अंदर है कभी बाहर है। ये सर रात में सोने का टाइम होता तो फिर अच्छा ही लगता है, नींद में उठो।
0: ये तो है, ये थोड़ा सा तो ऐसे मौसम में अंदर की तरफ ही सोना चाहिए, बाहर की तरफ सोगे कब कब बाबा, चार पाई अपनी बिछाओगे और अंदर लेके जाओगे।
1: वही तो है सर।
0: तो कोई शायरी सुनाएंगे अभी आप, या आज की बात के ऊपर कुछ बात बताएंगे कि हम कह रहे हैं क्या सीक्रेट बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पे?
1: सर कुछ राज ऐसे होते हैं वो दूसरे से शेयर करने को होते हैं, कुछ राज ऐसे होते हैं इंसान खुद ही खुद खुट जाता है मन ही मन में, और मतलब कुछ राज ऐसे होते हैं दूसरे को बता के वो कम हो जाते हैं।
0: क्या बात,
1: कई तरह के राज होते हैं।
0: तो राज मूवी देखी है आपने? नहीं देखी है
1: सर। राज मूवी मैंने देखी, काफी सुहानी मूवी है, इसमें जो सॉन्ग है काफी हिट है।
0: तो वैसे वाली राज मूवी वाले भी सीक्रेट बताने चाहिए नहीं बताने चाहिए?
1: सर बहुत बड़ी डरावनी मूवी थी।
0: डर तो नहीं है ऐसा डर, हाँ मतलब कह सकते हैं कि हॉरर मूवी में है वो, मगर उसे मूवी को इतना इंटरेस्टिंग है कि कभी डर लगता है कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो होता ही है लाइफ में, ऐसा तो चलता ही है।
1: सर ऐसा ना अंदर से चीखों की आवाज है उससे डर लगता है थोड़ा सा।
0: ये बात तो है
1: सर। जो सॉन्ग है, सॉन्ग तो खैर काफी हिट हो रहे हैं आज भी उसके, मतलब काफी अच्छे हैं जितने भी हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ मतलब जो राज दूसरे से शेयर करते हैं तो मतलब जो शेयर करने का राज है वो जरूर करा जाए सर, जो इंसान अंदर अंदर घुटे दूसरा लगवाते है उसे रोक ले।
0: वो राज ही क्या जो राज ना रहा है ना
1: सर, कुछ राज ऐसे होते हैं हम किसी और को बदलाएंगे, उसकी सर को बदलाएगा, चौथे को बदलाएगा सर, ऐसे मतलब बात काफी फैल जाती है। तो राज होते हैं कुछ ना भी होते हैं सर, ये है।
0: तो आपने कभी ऐसा कुछ करा है कि आपने अपना कोई ऐसा राज जो है बताया था और बाद में पता चला

0: कि वो राज ही नहीं रहा।
1: हाँ सर, ऐसा कई मतलब हुआ, जैसे कोई राज है, मैं अपने दोस्त को बता दूँ, ये खुद दुनिया को पता चल जाएगा तो उसके साथ में ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये है आज के दौर में कोई बात रोक नहीं रहा, तुम दूसरे शेयर कर दो अभी तीसरे कान में जरूर बात पहुँच जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: उसके साथ में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ऐसा राजा ये राजा वो राजा, सर ये है किसी को बदलाने के नहीं, मैंने घर वालों को बदलाओ सर, कोई कठिन राज हो सबसे पहले घर वाले उनसे शेयर करो।
0: और जिसका नाम ही राज है उसके साथ क्या होगा, वो तो कहेगा भाई साहब मैं कहाँ छुपता फिरूं।
1: वही तो ना सर, मेरे कुछ राज ऐसे हैं, मैं अंदर अंदर घूमता रहता हूँ, किसी से शेयर नहीं करता हूँ, ना घर वालों से ना बाहर वालों से।
0: तो कर लिया करो ना, शेयर कर लिया करो, आप हमसे ही शेयर कर लिया करो फिर। तो
1: सर वो राज छुपाने के मतलब कुछ बदलाने के नहीं, कहीं से कहीं तक भी।
0: हाँ तो फिर उसे भूल जाओ राज को, क्यों उसे राज को घुटने क्यों देना है अपने आप को, ये बताओ।
1: सर ये वो राज मतलब हर टाइम ध्यान पे रहते हैं कि हमने क्या करा क्या नहीं करा, ऐसा कैसा हो गया क्यों हुआ, ये किसी को बदलाने के नहीं है, बदलाव तो चर्चे हैं, नहीं बदलाव तो घुटते रहो अंदर ही अंदर।
0: ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा फैलती है उतनी ही परेशानी बढ़ती है, बताइए ईश्वर जी।
1: जितनी बढ़ती है,
0: जो जितनी ज्यादा फैलती है उतनी ही परेशानी बढ़ती है बढ़ाती है, ऐसी कौन सी चीज है,
1: ऐसी कौन सी चीज है जितनी बढ़ती है इतनी ज्यादा परेशानी,
0: जो जितनी ज्यादा फैलाती फैलती है उतनी ही परेशानी बढ़ाती है। चलो कोई बात नहीं, आप आराम से मुझे मैसेज कर देना, बता देना, बाकी जो भी लिसनर सुन रहे हैं वो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं कि इस पहेली का जवाब क्या है। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे ईश्वर जी आप?
1: सर आज मूवी का नाम है चालवाज, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ना जाने कहां से आई है ना जाने कहां को जाएगी, सर ये वाला सॉन्ग प्ले कर देना।
0: क्या बात है साहब, आपने गाना भी ऐसे ही चुना है जो राज बन के रह जाएगा, ना कहां से आई हो ना जाने कहां को जाएगी। सही है ईश्वर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद ईश्वर जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ ईश्वर जी, जिन्होंने गाना भी ऐसा चुना है, ना जाने कहाँ से आई हो ना जाने कहाँ को जाएगी, ये भी एक राज बन के रह जाएगा साहब। पहेली तो आप सबको पता ही होगी, मगर इसका जवाब जो भी देगा उसको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट वाउचर, वो भी हम उसे डीएम कर देंगे, मगर जवाब हमें बढ़िया चाहिए, एक बार में बिल्कुल सीधा जवाब चाहिए। तब तक ये सुनते हैं गाना, इसके बाद लेंगे हम एक लास्ट कॉल, क्योंकि शो का होने वाला है द एंड, तो ज़रूर आप हमें कॉल करें 9837896896 पे। तब तक गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें और रेडियो भी बजाते रहें।

दिल तोड़ने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है, मोहब्बत में हर किसी को सफलता क्यों नहीं मिलती है, और लोग कहते हैं इश्क एक बीमारी है, तो मेडिकल स्टोर पे इसकी दवा क्यों नहीं मिलती है। क्या बात है शबनम जी, कितनी बढ़िया शायरी लिखी है, आपकी शायरी बहुत ही अच्छी थी। और दवा ज़रूर मिलेगी आपको, मेडिकल स्टोर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, होम्योपैथी की दवाई एलोपैथी वाले मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलने वाली है। तो आज हमने खूब सारी बातें करी हैं दिल से दिल की। कहते हैं ना, कुछ लोग राज जानकर बदल जाते हैं, कुछ लोग राज रख कर संभल जाते हैं, फ़र्क सिर्फ नीयत का होता है, वरना शब्द तो सबके पास होते हैं। हमारे पास मैसेज आया है रोहित जी का हरतला कॉलोनी से। मैं हर बात अपनी माँ से शेयर करता हूँ, उनसे बेहतर सलाह मुझे आज तक किसी ने नहीं दिए। क्या बात है रोहित जी, कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं जहाँ सीक्रेट नहीं सिर्फ भरोसा होता है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी बात सुनकर आपको जज नहीं करता, तो वह रिश्ता बहुत कीमती है। संभाल के रखिए, सारे राज बताते रहिए, कहीं कुछ नहीं आएंगे। क्या आपको कोई सीक्रेट डायरी में लिखने की आदत है? अगर है तो ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं, हाँ या ना। क्या कभी किसी ने अपना सीक्रेट लीक किया है, खुद ही बोल के और खुद ही लीक कर दिया हो? ऐसा भी व्यक्ति आपसे ज़रूर टकराया होगा। क्या पार्टनर ने सब कुछ शेयर करना चाहिए, क्या पार्टनर से सब कुछ शेयर करना चाहिए? तो इसका भी बात आप जवाब हाँ या ना में हमें ज़रूर मैसेज करें। अभी एक पहेली पूछी थी, शायद आपको याद होगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा फैलती है उतनी ही परेशानी बढ़ाती है? उसका सही जवाब है अफवाह, र्यूमर। मगर जिसने मेरे को जवाब भेजा है, मैंने उन्हें गिफ्ट बहुत ज़रूर भेजा है। वो जाएं और क्रिल्स तंदूरी जंक्शन MDA सेल टैक्स ऑफिस के सामने अपना कोड बताएं और डिस्काउंट पाएं।

जाते हैं कि पढ़ने में भी उन्हें टाइम लग जाता है, कभी कभी वो मिस हो जाते हैं। मगर आप बुरा मत मानिएगा साहब, क्योंकि आपको भी पता है आपकी सारी दिल की बातें पहुंच रही हैं हमारे पास। तो चलने से पहले एक अंतिम शायरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, दिल की किताब हर किसी को मत पढ़ाया करो, हर राज दुनिया को मत बताया करो, कुछ बातें मुस्कान के पीछे रहने दो, हर दर्द को लफ्ज़ों में मत सजाया करो। तो इसी के साथ आज की बातों का यही सार है सारा, कि राज शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन सही इंसान चुनना सबसे ज़रूरी है। तो मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, फिर कल मिलूँगा आपको दिल से दिल तक अखिल संग में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ निभाइए और दिल की बातें सोच समझ कर ही किसी से कहिए। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, खूब मस्ती वाली नींद लें और अपने मनपसंद गाना सुन के सोएं। बाय बाय, गुड नाइट।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.